सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्र मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर 2026। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठे और अपने शिष्य आनंद को अपने साथ लेकर उस गांव की ओर चल दिए। बुद्ध और आनंद को चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन वो गांव तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते आनंद थक गया। वो बुद्ध से बोला, बुद्ध हमें चलते हुए इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक वो गांव नहीं आया। हम आसपास किसी से पूछ लेते हैं कि गांव कितनी दूरी पर है। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। चलते चलते रास्ते में आनंद को एक किसान दिखा जो खेतों में काम कर रहा था। तभी आनंद उसके पास पहुंचा और बोला, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उस तरफ जाना है, अभी हमें कितना वक्त लगेगा? किसान बोला, बस 2 किलोमीटर है, आने ही वाला है। ऐसा सुनकर आनंद की जान में जान आई। वो सोचने लगा, चलो ठीक है, कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। वो किसान बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराए। आनंद दोनों के मुस्कुराहट के पीछे छिपे भाव को नहीं समझ पाया। बुद्ध पहले भी उस गांव में गए हुए थे, इसलिए वो जानते थे कि वो गांव अभी बहुत दूरी पर है। अब चलते चलते उन्हें और देर हो गई। रास्ते में आनंद को एक अम्मा दिखाई दी जो कि सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर चल रही थी। आनंद ने उन्हें रोका और पूछा, अम्मा हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उधर जाना है, हमें कितना वक्त लगेगा? अम्मा बोली, बेटा बस 2 किलोमीटर दूर है। अम्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराई और बुद्ध भी अम्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। आनंद को फिर समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर काफी देर चलने के बाद आनंद को एक तीसरा व्यक्ति दिखा। आनंद ने उससे भी वही सवाल किया और उसने भी यही उत्तर दिया कि गांव बस 2 किलोमीटर दूर है। आनंद अब बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उसे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोला, बुद्ध मुझे माफ करो, लेकिन अब मेरे भीतर तनिक भी चलने की हिम्मत नहीं है। जिससे भी पूछो वो यही कह रहा है कि बस 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई है। हम सुबह निकले थे, अब सांझ हो रही है, लेकिन फिर भी गांव है जो वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। बुद्ध बोले, धैर्य रखो आनंद, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत थक गया हूँ। बगल में एक पेड़ है, रात भर हम उधर विश्राम करते हैं और सुबह गांव की ओर निकल जाते हैं। ऐसा सुनकर आनंद को थोड़ा चैन मिला। आनंद बोला, बुद्ध एक बात समझ नहीं आई, जिससे भी मैंने रास्ता पूछा सभी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर कह रहे थे। यदि सच में रास्ता 2 किलोमीटर की दूरी पर होता तो हम कब का वहां पहुंच जाते? बुद्ध बोले, आनंद मैं इस गांव में पहले भी जा चुका हूं। ये गांव 2 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर दूरी पर है, जिसमें 6 किलोमीटर हम पार कर चुके हैं। आनंद बोला,

0: वैसे ही वे तुम्हें नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उन तीनों ने मिलकर हमसे 6 किलोमीटर का रास्ता तो तय करवा ही दिया। बुद्ध आगे बोले, जब मनुष्य को पता होता है कि मंजिल पास में ही है तब उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन जब मनुष्य को ये पता होता है कि रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जीवन के किसी भी मार्ग पर किसी भी व्यक्ति की गति धीमी ना हो, इसलिए उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि बस मंजिल आने ही वाली है। बुद्ध की ये बात सुनकर शिष्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आनंद बोला, बुद्ध ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे गुरु हैं, आपके साथ मुझे हमेशा ही कुछ सीखने को मिलता है। इस रास्ते की यात्रा में भी आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझ चुका हूँ, यदि मनुष्य को मंजिल से प्यार हो तो उसे अपने आप को बार बार यही समझाना होगा कि बस थोड़ी दूर है, और इस प्रकार एक दिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। बुद्ध और आनंद ने पेड़ के नीचे रात भर विश्राम किया और सुबह गांव की तरफ निकल गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि मंजिल है और बहुत पास है। वो दूरी तभी घटेगी जितना हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने कदमों को तेज करो और खुद से हमेशा यही कहो कि मंजिल दूर नहीं, मंजिल पास है।
1: जीवन सौरभ।
2: अभी आपने सुना जीवन सौरभ। आइए अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम। अब से ठीक बात सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि मंडल 2 और सूक्त 18। और अक्षय निधि के बाद सुनिएगा भक्ति संगीत। भक्ति संगीत में यूं तो भगवान गणेश हमेशा ही आगे होते हैं। हर कार्य के प्रथम देवता भगवान कृष्ण को माना गया, माफ कीजिए, भगवान गणेश को माना गया है। भगवान गणेश ही हर कार्य के प्रथम पूज्य होते हैं। आज से गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आज भक्ति संगीत का महत्व और बढ़ जाता है। भक्ति संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे गणेश वंदना और अन्य भजन। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम वतन का राग। सी विजय राघव चारियार पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। सुनीता सिंह का स्वर होगा कार्यक्रम में। भूत, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ये कहानी सुनिए कार्यक्रम सुनो कहानी के अंतर्गत सुबह 8:30 पर। स्वर है सुनीता सिंह का। सत्यदेव दुबे, आज इन पर कार्यक्रम सुनेंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में सुबह 9 बजे। कार्यक्रम में स्वर होगा दानिश का और मनीषा चतुर्वेदी का। हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए हिंदी की महिमा हिंदी दिवस पर सुबह 9:30 पर। स्वर होगा कार्यक्रम में भगवती सक्सेना का। सुबह 10 बजे सुनिए परिक्रमा मेरे यानी रत्नेश के साथ। हमारा विशेष कार्यक्रम गणेश उत्सव पर सुनिए सुबह 10:30 पर। सुबह 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हमारे शब्दों के शिल्पकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर। कार्यक्रम में स्वर होगा संयुक्त बैनर्जी और संदीप शर्मा का। सुबह 11:30 पर सुनिए युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अब से लेकर दोपहर 12 तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और अब वक्त हो चला है अक्षय निधि का, आइए सुनते हैं अक्षय निधि एक अंतराल के बाद।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 18वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र। छंद है त्रिष्टुप।
3: प्राता रथो नवो योजी सस्निश चतुर युगस्त्रिकषः सप्तरश्मिः दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः स इष्टिभिर्मतिभिः रह्यो भूत। प्रातः काल यह नया रथ नियोजित किया गया है। इसमें 4 युग 3 कोड़े 7 रश्मियां तथा 10 चक्र हैं। यह इष्ट प्रयोजनों के लिए मति के अनुरूप गतिमान हो। यह मनुष्यों को स्वर्ग तक पहुंचाने वाला है। सास्मा अरम प्रथमम स द्वितीयमुतो तृतीयम मनुषः स होता अन्यस्या गर्भमन्य उजनन्त सो अन्येभिः सचते जेन्यो वृषा। यह रथ इंद्रदेव को प्रथम द्वितीय और तृतीय अर्थात प्रातः सायं और मध्याह्न तीनों सवनों में यज्ञों में पहुंचाने में समर्थ है। यह रथ मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करने वाला है। स्तोतागण एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रह्मांड व्यापी बलशाली तथा अजेय उन इंद्रदेव के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हरि नूकम रथ इंद्रस्य योजमायै सूक्तेन वचसा नवेन मोषुत्वामत्र बहवो हि विप्रा नि रीरमन्य जमानासो अन्ये। इंद्रदेव के सुखपूर्वक आवागमन के लिए उत्तम स्तुतियों के माध्यम से उनके रथ में दोनों घोड़ों को नियोजित किया गया है। हे इंद्रदेव, हमारे अतिरिक्त अन्य कोई भी मेधावी स्तोता आपको भली भांति तृप्त नहीं कर सकता। आ द्वाभ्याम हरिभ्यामिंद्र याहिया चतुर्भिरा षड्भिर् हूयमानः अष्टाभिर् दशाभिः सोम पेयमयम् सुतः सुमख मा मृधस्कः। हे इंद्रदेव, हमारे द्वारा आवाहित आप सोमपान करने के लिए 2, 4, 6, 8, 10 घोड़ों से आए। यह सोमरस आपके लिए शोधित किया गया है, आप इसका पान करें, इसके लिए युद्ध न करें। आविंशत्या त्रिशता याहियर वाडा चत्वारिंशता हरिभिर युजानः आ पंचाशता सुरथे भिरिंद्रा षष्ट्या सप्तत्या सोमपेयम्। हे इंद्रदेव, आप सोमरस का पान करने के लिए रथ के योग्य 20, 30, 40, 50, 60 तथा 70 घोड़ों को नियोजित करके हमारे पास आए। आशीत्या नवत्या याह्यर्वाडा शतेन हरिभिर् रुह्यमानः अयम् हि ते शुनहोत्रेषु सोम इंद्र त्वाया परिशिक्तो मदाय। हे इंद्रदेव, आपको आनंदित करने के लिए सोमरस को सुंदर पात्रों में रखा गया है, अतः आप 80, 90 और 100 घोड़ों को अपने रथ में नियोजित करके हमारे पास आए। मम ब्रह्मेन्द्र याह्याच्छा विश्वा हरि धुरी धिश्वा रथस्य पुरुत्रा हि विहव्यो बभूथास्मिंछूर सवने मादयस्व। हे इंद्रदेव, आप बहुतों के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, अतः हमारे स्तोत्रों को स्वीकार करके अपने रथ में सभी घोड़ों को नियोजित करके हमारे इस यज्ञ में आकर आनंदित हों। न म इंद्रेण सख्यम वि योषदस्मभ्यमस्य दक्षिणा दुहित उपज्येष्ठे वरुथे गभस्तौ प्राये प्राये जिगीवंसः स्याम। इंद्रदेव के साथ हमारी मैत्री अटूट रहे, हम उनके उत्तम दाहिने हाथ के समीप रहे। इंद्रदेव के द्वारा हमें सदैव दान मिलता रहे, इनके संरक्षण में हम प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करें। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति धग भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे इंद्रदेव, यज्ञ के समय आपके द्वारा स्तोताओं के निमित्त दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चित रूप से धन प्रदान कराती है, अतः स्तोताओं के साथ हमें भी वह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा प्रदान करें, जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान करने वाले स्तोत्रों से स्तुतियां करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 18वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही है।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं द लॉयन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से विख्यात सी विजय राघवाचार्य का। हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाली अनगिनत विभूतियों से भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास भरा हुआ है। ऐसे ही एक महान राष्ट्रभक्त थे सी विजय राघवाचार्य, जो लॉयन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से विख्यात थे। सी विजय राघवाचार्य का जन्म 18 जून सन 1852 को मद्रास प्रेसिडेंसी के चेंगलपट्टू जिले के पोन विलेंथा कलाथुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सदगोपरचारी था, जो एक पुजारी थे। इस तरह एक आयंगर ब्राह्मण परिवार के पारंपरिक संस्कारों के साथ सी विजय राघवाचार्य का पालन पोषण हुआ। बहुत कम उम्र में ही उनकी स्कूली शिक्षा गांव में ही आरंभ हुई। उन्होंने बचपन से ही वेदों और अनेक संस्कृत धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। संस्कृत के साथ ही उन्होंने 12 वर्ष की आयु में अंग्रेजी की शिक्षा भी पचैया हाई स्कूल से आरंभ की। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की और यहीं सन 1875 में व्याख्याता नियुक्त हुए। 3 वर्ष इस पद पर काम करने के पश्चात उन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा सलेम म्यूनिसिपल कॉलेज में अंग्रेजी और गणित के व्याख्याता के रूप में कार्य करना आरंभ किया। इसी दौरान उन्होंने निजी तौर पर कानून की पढ़ाई की तथा वकालत आरंभ की। सन 1882 में जब उन्होंने वकालत आरंभ की, उसके कुछ समय बाद ही सलेम में दंगे भड़क गए, जिसका झूठा आरोप सी विजय राघवाचार्य पर लगाया गया। उन्होंने इन आरोपों के विरुद्ध अदालत में लड़ाई लड़ी और स्वयं को निर्दोष साबित किया। एक सफल वकील के रूप में उन्होंने लॉर्ड रिपन को प्रतिवेदन में उन लोगों के पक्ष में भी दलील दी जो अंडमान सेलुलर जेल में थे तथा उन पर भी दंगे भड़काने का आरोप लगा था। सन 1882 के सलेम दंगों ने सी विजय राघवाचार्य को रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। उन दिनों देश भर के समाचार पत्रों ने इस घटना की व्यापक चर्चा की थी और नागरिक स्वतंत्रता के पुरोधा के रूप में उन्हें ख्याति मिली थी। इस तरह सी विजय राघवाचार्य द लॉयन ऑफ साउथ इंडिया कहलाने लगे। अन्याय के विरुद्ध उनके बुलंद स्वर ने लोगों को जगाने का काम किया।

सी विजय राघवाचार्य ने सन 1882 में सलेम नगर परिषद के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। सन 1895 में वो मद्रास विधान परिषद के लिए चुने गए, जहां सन 1901 तक उन्होंने सेवाएं दी। सी विजय राघवाचार्य एओ ह्यूम के घनिष्ठ मित्र थे। यही कारण है कि जब सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई, तब वो उसके सत्रों में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए। सी विजय राघवाचार्य ने एक ऐसे राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया, जिसका एक स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण तो हो ही, इसके साथ ही वो भारत की जनता की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दे। उनका तर्क था कि कोई भी संगठन तभी पूरे देश को प्रभावित कर सकता है, जब राजनीति के साथ साथ वो अपने आम जन के हितों से भी जुड़ा हो। उन्होंने सन 1887 में बंबई अधिवेशन में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई। जब कांग्रेस के संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था, तब उस मसौदा समिति के सदस्य के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस तरह एक सशक्त राष्ट्रीय संगठन हेतु उनके पास अनेक रचनात्मक सुझाव थे। संगठन में उनका बड़ा प्रभाव था। इससे जुड़े शुरुआती लोगों से उनका आत्मीय संबंध था। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के वो करीबी सहयोगी थे। सन 1905 के आसपास ही संगठन में विचारधाराओं की टकराहट गूंजने लगी थी। लोग नरम और गरम दल में बंट रहे थे। इस तरह संगठन में एक दरार उभरने लगी थी। सन 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में संगठन नरम और गरम दल नामक दो दलों में बंट गया। इस विभेद की जमीन सन 1905 के बनारस अधिवेशन में ही तैयार हो गई थी, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने उदारवादियों की नीति को याचिका और याचना की नीति कहा और इसका कड़ा विरोध किया था। उनका मत था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे देश में किया जाए तथा सभी वर्गों को इसमें शामिल करके इसे राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, लेकिन उदारवादी इसके पक्षधर नहीं थे। हालांकि विभेद को देखते हुए मध्यम मार्ग अपनाया गया, लेकिन सन 1906 के कोलकाता अधिवेशन में गर्मपंथियों की लोकप्रियता काफी बढ़ी और अंततः संगठन दो धड़ों में बंट गया और सी विजय राघवाचार्य इस संगठन से अलग हो गए। हालांकि बाद में गांधी जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो पुनः इसमें शामिल

सी विजय राघवाचार्य के राजनैतिक जीवन का चरमोत्कर्ष तब आया जब उन्हें नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। ये सन 1920 का साल था। इस अधिवेशन में अहिंसक असहयोग के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग पर चर्चा हुई, जिसमें तीखी नोकझोंक हुई। साइमन कमीशन के विरोध में जो वातावरण तैयार हुआ था, उसमें भी सी विजय राघवाचार्य सहयोगी रहे। इसके पहले 1913 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुने गए थे और 1916 तक इससे जुड़े रहे। दिल्ली में उन्होंने मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान नेताओं के साथ मिलकर काम किया। सी विजय राघवाचार्य ने उचित आयु में महिलाओं के विवाह और पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकार की भी वकालत की। अस्पृश्यता विरोधी लीग से भी उनका जुड़ाव था। अपने काम में उन्होंने स्वामी शरथानंद को बहुत सहयोग किया। उनका व्यक्तित्व बहुपक्षीय था, जिसे हिंदू महासभा संगठन में भी भागीदारी मिली। उन्होंने सन 1931 में अकोला में हुए महासभा सत्र की अध्यक्षता भी की थी। वो निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन की मद्रास शाखा के दो उपाध्यक्षों में से एक थे। दूसरे उपाध्यक्ष एस कस्तूरी रंगा आयंगर थे और गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। उनका जीवन सदा साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्षशील रहा। वो लगातार आर्थिक और सामाजिक संकटों से भी जूझते रहे, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य देश की आजादी था। वो सदा मुखर रहे। मद्रास पत्रिकाओं में भी वो हमेशा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर अपने विचार रखते रहे। 19 अप्रैल सन 1944 को राष्ट्र सेवा को समर्पित इस महान देशभक्त ने अंतिम सांस ली। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: मिर्जा एहतशामुद्दीन, वह मुगल दूत जिसे लंदन एक अजूबा समझ बैठा। 1766 में मिर्जा एहतशामुद्दीन नामक एक व्यक्ति अपने साथ एक गुप्त विश्वासघात और एक पैनी पारखी नजर लेकर लंदन की सड़कों पर उतरा। वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का दूत था, जिसे राजा जॉर्ज तृतीय को सैन्य सहायता के लिए एक हताश भरी अर्जी देने के लिए भेजा गया था। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि शक्तिशाली रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही उसका पत्र रोक लिया था, जिससे उसका उच्च स्तरीय कूटनीतिक मिशन एक अकेले और अनचाहे अवकाश में बदल गया। 18वीं सदी के लंदन वासियों के लिए एहतशामुद्दीन एक चलता फिरता अजूबा थे। वे गरीब भारतीय नाविकों को देखने के अभ्यस्त थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी मुंशी पगड़ी और शॉल पहने एक परिष्कृत भारतीय विद्वान को नहीं देखा था। लोग उन्हें एक नजर देखने के लिए खिड़कियों से बाहर गर्दनें निकालते थे। बच्चे डर के मारे सुन्न हो जाते थे और चीखते हुए अपने घरों में भाग जाते थे। देखो, एक काला आदमी, या यहां तक कि उन्हें काला शैतान भी कहते थे। फिर भी वह डर क्षणभंगुर था। कुछ ही महीनों में वह शैतान एक हस्ती बन गया। एहतशामुद्दीन बाजारों में किसी अछूत की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मानित अतिथि की तरह घूमते थे, जहां वह लंदन के यांत्रिक चमत्कारों को देखकर हैरान थे। वहीं उन्हें एक चरम विडंबना का एहसास हुआ। वह यूरोप के दृश्यों का आनंद लेने आए थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे खुद वहां के सबसे बड़े दृश्य यानी तमाशा बन गए थे। उन्होंने अंततः इंग्लैंड का पहला भारतीय यात्रा वृतांत लिखा, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भले ही लंदन वासियों ने उन्हें एक अजीब नमूने के रूप में देखा, लेकिन वे वास्तव में उस व्यक्ति को देख रहे थे जो अंततः भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के बारे में लिखेगा।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम सुनो कहानी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी भूत। कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद।

0: मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहां के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वो कचहरी में 15 रुपए मासिक पर नौकर हुए, फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी, दो ही चार वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपए महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर ये कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल था, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया उसने 3 महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया, और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने अब तक न रखी थी। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वो सच्चे पत्नी परायण पुरुष थे। साधारणतः महफिलों में वैश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन, जो कुछ था कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी कार्य उन्हें व्यर्थ जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो वो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना। जैसे वेदांति को ब्रह्म के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, बस एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी, उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं, और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचले करती हैं, उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचती, लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियां पहन के ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते, कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है, जिसने ये दान न दिया उसका तो जन्म ही वृथा गया। आखिर ये लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। ये बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी ही सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती। उससे आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती, तरकारी काटने में उसे बड़ा मजा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वो उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी। और बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस तरह दीवान खाने में खूब कह कहे उठते। वकील साहब कभी इतने वात्सल्यमय न थे। जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते। बिन्नी बेटी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बिन्नी ने कहा, ना बताऊंगी। मंगला ने कहा, कह दे बेटा, जीजी की बेटी हूं। पंडित जी ने कहा, तू मेरी बेटी है बिन्नी कि इनकी? बिन्नी ने फिर जवाब दिया, ना बताऊंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा, अब हम लोग आंख बंद किए बैठे हैं। भाई बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में बैठ गई। पंडित जी ने कहा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, अब ना कहना कि मेरी बेटी है, सुन रही हो? मंगला ने कहा, अच्छा जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी न मंगा दूंगी। बिन्नी ने कहा, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वो अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई भी बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी झट से कह देती, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गया। एक महीना भी न गुजरने पाया था कि वो फिर ससुराल गए और बिन्नी को ले आए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वो चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उनमें से दो अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। दो कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुणशील वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में बिल्कुल निपुण, मधुर भाषणी, लज्जाशील, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला हो जाता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वो प्राणप्रद सुषमा और शोभा न थी। श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वतों में भी वो शीतलता नहीं थी जो बिन्नी अर्थात विंध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादी में दिल का अरमान वो निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना कठिन। नौका पर सभी यात्रा करते हैं, जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी। अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया, जन्म पत्र मिल गए, बानक बन गया, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं। पर हाय रे दुर्दैव, कहां तो विवाह की तैयारी हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे, और कहां निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए वो परलोक सिधार गई। संध्या घिर आई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे बहुएं, पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से न बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए वो उस कमरे में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूं, बुरा न मानना। बिन्नी, बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित जी ने कहा, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उसमें कुछ भी काट छाट मत करना। पंडित जी ने कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला ने कहा, सुनो, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी कभी मत भूलना उसे। पंडित जी ने जवाब दिया, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, अच्छा सुनो, इसी साल विवाह कर देना। पंडित जी ने कहा, इस साल कैसे होगा? मंगला ने जवाब दिया, ये फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित जी ने कहा, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला ने फिर कहा, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। और पंडित जी ने कहा, कर दूंगा। और इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित, बिल्कुल तितर बितर हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन कचहरी ही नहीं जाते, जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से भी अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासमय उनका दिल बहलाने की चेष्टा करती थी। वो उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वो कुछ खा न लेते वो कुछ न खाती थी। गर्मी के दिन थे ही, रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा चला करती और जब तक वो सो न जाते तब तक वो भी सोने न जाती। वो जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते और वो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहां तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़ कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का ये अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वो गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंधेश्वरी के प्रति जब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वो उनसे पिता पुत्री के भाव को सहज और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव वो भाव दिन दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वो एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदया बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वो वही पिता के तुल्य भैया थे। वो पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहां तक कि एक समय ऐसा भी आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेश भी नहीं रह जाता, किंतु पुरुषों में ये अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती होती जाती है। त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। वो तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करते हैं वो किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और अपनी इस उच्छृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीचे कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब ना समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वो विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वो चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खींचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी। बिन्नी ने कहा, आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित जी ने कहा, ले आना, अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूं। तुमने मेरे शोक को भुला दिया है, वास्तव में तुमने मुझे जिला दिया है। नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा। तुमने मुझे प्राण दान दिया है। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी ने कहा, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूं। पंडित जी ने कहा, क्यों, तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी? बिन्नी सकुचाती हुई बोली, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित जी ने कहा, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित जी ने कहा, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूं, जब तक जिंदगी है जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई, तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान किया है? मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी कोई खबर लेने वाला नहीं होगा। ये घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे ये घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहां क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह को तुमने पूरा किया, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी ने कहा, क्या इस साल रुक नहीं सकते? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित जी ने कहा, अपने बस की बात नहीं है, वो लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, बहुत जल्दी मचाएं तो आप कह दीजिएगा आप नहीं करेंगे, उन लोगों के जो जी में आए करें, यहां कोई उनका दबैल बैठा हुआ है। पंडित जी ने कहा, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी ने तुरंत जवाब दिया, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित जी ने कहा, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करूं? ये दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है, अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी ने जवाब दिया, दुख सुख में काम ना आऊंगी तो फिर मैं किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वो बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थीं। उन्हें अपने अंगों में फिर से जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वो सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वो मेरी पुत्री है तो नहीं? इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने, ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहां आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से ये संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंधेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूं और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है, मैं ना रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे और कौन जाने साधु सन्यासी न हो जाएं, घर में कैसे मन लगेगा। वो पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी, उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में न लगता था, घंटे दो घंटे बैठकर वापस चले आते। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे। सास ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी, उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आया। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा वो अपने घर को ही रहेगी, फिर चौबे जी से नाता ही टूट जाएगा। वो इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित जी ने कहा, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास ने कहा, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पंडित जी ने जवाब दिया, करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है? सास ने कहा, पूछने को तो हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर में ही लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं, कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहां पाऊंगी, तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं। अंधा क्या मांगे दो आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने घर के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी है। विंधेश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित हो होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। ये वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह लगती है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह से है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे, मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रच गया। मानो मनाते रहते हैं कि ये मरे तो नई नवेली बहू घर आए। विंधेश्वरी ने कहा, उन्हें याद करते करते बहुत रोया करते हैं, चली आई हूं ना, न जाने कैसे होंगे। माता ने कहा, मुझे भी तो यही डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा कर साधु फकीर न हो जाए। विंधेश्वरी ने जवाब दिया, मुझे भी यही डर लगता है, इसी से तो मैंने मना कर दिया कि अभी जल्दी क्या है शादी की। माता ने कहा, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख भी अधिक होगा। बेटी, सच तो ये है कि वो तुम्ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विंधेश्वरी ने जोर से कहा, ए हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला है और मैं भी उन्हें पिता। चुप रह पगली, कहने से क्या होता है, माँ ने दलील दी। विंधेश्वरी ने कहा, अरे अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता ने कहा, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नजर नहीं आता। विंधेश्वरी ने बेचैन होकर कहा, क्या कहती हो अम्मा, उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक न सकूंगी। और वो भी कभी न मानेंगे, मानने की बात भी तो हो कोई। माँ ने कहा, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूंगी, बस तू राजी हो जा। याद रख, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं है। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है, 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी जिंदगी कम से कम 70 साल की है। देखने सुनने में भी वो 100-200 के आदमी हैं। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यूह रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल न सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषण का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में विंधेश्वरी ने कहा, अम्मा मैं जानती हूं कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही माँ।
1: चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था।

विंधेश्वरी आज वधू बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले वो चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सजधज आज देखने योग्य है। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई संवरी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंधेश्वरी आभूषणों से लदी हुई, भारी जोड़े पहने, फर्श पर सिर झुकाए बैठी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल एक संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूं, उनके कंधों पर बैठी हूं, उनकी पीठ पर सवार हुई हूं, कैसे उन्हें मुंह दिखलाऊंगी। अगर मैं पिछली बातें सोचूं तो ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे जिसके लिए मैंने पुत्री बनना स्वीकार किया, वो पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंधेश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कि कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोली, मूर्ति की तरह खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वो बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की ये निर्दय लीला, ये क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी बोलती क्यों नहीं, क्या मुझसे नाराज हो? विंधेश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वो कितने दिनों से सुनती चली आ रही थी। आज वो व्यंग से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गईं और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वो दो कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी, सदेह, साकार, सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले, बिन्नी देखो, देखो वो क्या है। बिन्नी ने घबरा कर खिड़की की ओर देखा, कुछ न था, फिर कहा, क्या है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी ने कहा, अब गायब हो गई, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है, मंगला थी। बिन्नी ने कहा, बहन? चौबे जी ने जवाब दिया, हाँ वही थी, खिड़की से अंदर झांक रही थी। देख देख, मेरे तो रोई कड़े हो गए। विंधेश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहां नहीं रहूंगी। चौबे जी ने कहा, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वो इसी घर में रहती थी ना, यहीं सोती थी, इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी हो गई। ये कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह, सजीव, साकार मंगला। अब उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार भी न था, उसमें हास्य भरा हुआ था। मानो वो इस दृश्य पर हंस रही हो, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी
फिर वही बात हुई। वो देखो मंगला खड़ी है। विंध्येश्वरी चीख कर उनके गले से चिमट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते

होगा होगा, उस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है, अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों ना चले, विंधेश्वरी ने कहा। मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं करता, कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना, मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी। पंडित जी ने कहा, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है, फिर समझ में नहीं आता ये स्वरूप क्यों कर दिखाई देता है। मैं सच कहता हूं बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर ये दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों में सिर टकरा रहा होता, या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंधेश्वरी ने कहा, मंसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं, मकान भी मिलते हैं, मैं अपने एक मित्र को लिखे देता हूँ, वो कोई मकान ठीक कर रखेंगे वहां। बात पूरी भी न होने पाई थी कि न जाने कहां से जैसे आकाशवाणी हो आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, भय से थर थर कांपते हुए बोले, बिन्नी बिन्नी यहां से चलो, न जाने कहां से आवाजें आ रही हैं, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है, बिन्नी बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। ये ध्वनि सहस्रों कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे की एक एक वस्तु से यही आवाज आ रही थी। बिन्नी ने रो कर पूछा, कैसी आवाज थी। पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं, कहते हुए लज्जा आती है। बिन्नी ने कहा, जरूर जरूर बहन जी की आत्मा है, जरूर उनकी आत्मा है। बहन बहन मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चाहा था। पंडित जी ने कहा, बिन्नी फिर वही आवाज आ रही है, फिर वही आवाज आ रही है, बिन्नी हाय ईश्वर, मैं सुन नहीं सकता, मैं कहां जाऊं, मेरे तो रोम रोम से वही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी बिन्नी बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया है, कहां जाऊं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। ये कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा वो भागने लगे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वो गिर पड़े, उन्हें मूर्छा आ गई। विंधेश्वरी भी दौड़ी, वो चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी भूत। इसके साथ ही सुनो कहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागिनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहा कर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांतवादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भांपते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भांपा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़ जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के के भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलका जी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाट के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों के प्रमुख नाटकों का निर्माण किया। 1971 में उन्होंने फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे का निर्देशन किया जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अलकाजी और दुबे के बीच का संबंध सत्यदेव दुबे के रंगमंच करियर की शुरुआत इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में ही हुई थी। दुबे ने थिएटर यूनिट में अलकाजी के मार्गदर्शन में काम किया और बाद में उनके द्वारा छोड़े गए समूह का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधा युग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधा युग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह अक्खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझकर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा। एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था, वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे, बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वह कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साईं पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
0: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
1: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
0: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और न ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंग कर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
1: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
0: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है। उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वह कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
1: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
0: और मैं दानिश। नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज है 14 सितंबर का दिन, जिसे प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते।

श्रोताओं, हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है, ये भावना है जन जन की। भारत ही नहीं, आज दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं। शब्द ब्रह्म है और हमारी हिंदी वो ब्रह्म है जो हर भारतीय की वाणी में प्रवाहित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता संस्कृत में कही थी, लेकिन उसे घर घर तक हिंदी ही लेकर आई। भक्त कवियों की प्रार्थनाएं हिंदी में थीं। तो आइए आज हिंदी दिवस पर हम भी हिंदी की महिमा का यशोगान करें। तेरा ही तुझको है अर्पण, हिंदी को हिंदी में समर्पण। हिंदी की महिमा है भारी, सदा अखंड हो कीर्ति तुम्हारी। भारत की परिभाषा हिंदी, ध्वनि स्वरों की आशा हिंदी। इतिहासों का स्वर्णिम हिंदी, नौनिहालों का आगम हिंदी। भारत का यशगान है हिंदी, भारत का अभिमान है हिंदी। आदि सत्य सनातन हिंदी, संस्कृत सुता सात्विक हिंदी। मैं हिंदी की, हिंदी मेरी, जय हो सदा विजय हो हिंदी। भारत के गौरवमय मस्तक पर शोभित अखंड सुहागिनी हिंदी। आइए अब रिश्तों में हम हिंदी का दर्शन करें। भारत का गौरव है हिंदी, जनमानस में सौरभ हिंदी। वत्सलता आमोद सरसमयी, ममता की लोरी में हिंदी। तुतलाती जिह्वा पर आया, प्रथम शब्द मां प्राण है हिंदी। शैशव के नैपथ्य में हिंदी, पल पल प्रतिपल समृद्ध हिंदी। भाई बंधु सखा मित्र, माँ माँ नाना नानी सी हिंदी। रिश्तों को रिश्तों में बुनती, भगनी हिंदी जननी हिंदी। हर रिश्ते का भेद बताती, आपस में सम्मान सिखाती। शिष्य गुरु नर नारायण से ज्ञान का क्षितिज बताती हिंदी। आदर सत्कारों में घुलकर नमस्कार सादर है हिंदी। बाबा दादा बुआ ताऊ, चाची मामी मौसी सी हिंदी। तू के निश्चल प्रेम में हिंदी, तुम के अपने पन में हिंदी। आप शब्द सत्कार का सूचक, श्रद्धा पूजा भाव में हिंदी। श्रीमान और श्रीमती में, चिरंजीव सौभाग्यवती में। पूज्य और सम्माननीय में, अटल प्रतिष्ठित हिंदी हिंदी। नानी की परिकथा में हिंदी, दादी के अधरों पर हिंदी। गुंजित मधुमय मोहक हिंदी, इठलाती मधमाती हिंदी। श्वासों की सरिता में हिंदी, जीवन की ललिता में हिंदी। शैशव यौवन और जरा में, अमर बेल सी चढ़ती हिंदी। आइए अब हम हिंदी की सार्वभौमिकता का दर्शन करें। शब्दों का भावार्थ है हिंदी, भावनाओं को शब्द है हिंदी। संस्कारों में दक्षित हिंदी, गुणियों में परिलक्षित हिंदी। कृतज्ञता का भाव है हिंदी, क्षमा दया सद्भाव है हिंदी। ऋणी रहेंगे सदा तुम्हारे, धन्य धन्य है माता हिंदी। भीनी भोर उजास में हिंदी, प्रणवाक्षर के ध्यान में हिंदी। संध्या की गोधुली में हिंदी, निशा काल रात्रि से हिंदी। उषा रविशशि भानु हिंदी, अनल अचल गिरी पावक हिंदी। नक्षत्रों नवग्रहों में हिंदी, गौ गीता गायत्री हिंदी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, धरती हिंदी अंबर हिंदी। ईशान से आग्नेय तक, चहुद से सदा सुबासित हिंदी। शीत शिशिर मधुमास में हिंदी, वर्षा ग्रीष्म शरद में हिंदी। प्रकृति के आह्लाद में हिंदी, एकम से पूनम में हिंदी। दसों दिशाएं हिंदी हिंदी, क्षितिज छोर सब हिंदी हिंदी। हर पल हिंदी, हर क्षण हिंदी, सरस सुहानी मधुकर हिंदी। वर्षा की रिमझिम में हिंदी, ऋतुएं तिथियां मौसम हिंदी।
जलवायु परिवर्तन हिंदी, चैत्र आश्विन अगहन हिंदी, वृक्षों की हरियाली हिंदी, पल्लव को पल बल्लर हिंदी, मोती माणिक पन्ना हिंदी, स्वर्ण जड़ित आभूषण हिंदी। आइए अब संगीत और साहित्य में हिंदी का दर्शन करते हैं। सा से षड्ज ऋषभ में हिंदी, ग म प ध नी में हिंदी, न्यास गमक आंदोलन खटका, मुर्की सी लहराती हिंदी, ओमकार आकार में हिंदी, सरगम के अभ्यास में हिंदी, लयकारी तानों में हिंदी, टप्पा ध्रुपद तराना हिंदी, रागों में तालों में तरानों के हर अक्षर में नव हिंदी, दोहे चौपाई छंदों की द्रुत विलंबित लय में हिंदी, छंद समास संधि में हिंदी, नौ रसों के भाव में हिंदी, यत्र तत्र संपूर्ण अपराजित अभिजीत संपूर्ण से हिंदी, अ से अह तक, क से ज्ञ तक, यूं तो है साकार से हिंदी, किंतु ज्ञानी मनीषियों के ज्ञान में निर्विकार से हिंदी, शब्दों से अलंकार है हिंदी, मात्रा से श्रृंगार है हिंदी, लघु से गुरु, गुरु से लघु, आदि से अनंत है हिंदी, जन जन की आस्था में हिंदी, विद्या की पराकाष्ठा हिंदी, कागर में सागर सी हिंदी, सुंदर मधुर परिष्कृत हिंदी, भाषाओं की माता हिंदी, सर्वोत्तम गुरु ज्ञाता हिंदी, लेखों में व्याख्या में हिंदी, पद्यों की सर्वात्मा हिंदी, गद्य में बसी पद्य में रमी, संदर्भ सहित प्रसंग सी हिंदी, उपन्यास जीवनी कथाओं में वैदिक ज्ञान विशारद हिंदी, प्रभु कथा लघु कथा में हिंदी, आयुर्वेद चिकित्सा हिंदी, साहित्य का दर्पण है हिंदी, चिंतन मनन अध्ययन हिंदी, कुशल प्रवक्ता के वाचन में निडर त्वरित तत्पर सी हिंदी, मंझी हुई सी सधी हुई सी मुखर प्रवाहित निर्मल हिंदी, बुंदेली हो या कोई बोली सबको हृदय लगाती हिंदी, पंजाबी उर्दू या सिंधी सबकी सखी सहेली हिंदी, स्वर व्यंजन हर अक्षर हिंदी, नाद ब्रह्म प्रणवाक्षर हिंदी, ज्ञानमयी वेदों की वाणी संस्कृत की हस्ताक्षर हिंदी। श्रोताओं, प्रार्थनाओं से पूजा आरती तक, भक्तों से भगवान तक, नदियों से नगरों तक, आइए अब हम इसी प्यारी सी हिंदी का दर्शन करते हैं। सूरदास मीरा की हिंदी, तुलसी की रामायण हिंदी, भक्ति मुक्ति का मार्ग बताती कल कल कल सरिता सी हिंदी, वेद पुराण योग में हिंदी, सुधामयी गीता में हिंदी, नादमयी सुरभित सी हिंदी, देववाणी की वंशज हिंदी, रोली अक्षत कुमकुम हिंदी, आवाहन पूजन में हिंदी, विनती संकल्पों में हिंदी, अखंड ज्योत सी उज्ज्वल हिंदी, अ उ म को निज ऋण दे भगवान बनाती है ये हिंदी, ओमकार पावन स्वरूप संपूर्ण बनाती शुभ चंद्र बिंदी, प्रातः वंदन आरती हिंदी, कौशिकी दुर्गा भारती हिंदी, सीता राधा गौरी हिंदी, भक्ति शक्ति मुक्ति हिंदी, पुरुषोत्तम नारायण हिंदी, माधव केशव राघव हिंदी, होली राखी दीप मालिका, तीज चतुर्थी नवमी हिंदी, हनुमान के राम में हिंदी, मीरा के घनश्याम में हिंदी, भक्तों के भगवान में हिंदी, मर्यादित साभान है हिंदी, गंगा यमुना कृष्णा हिंदी, कावेरी रेवा में हिंदी, हिंद महासागर सी व्यापक भारत की जलराशि हिंदी, काशी नगरी उज्जैनी में दीप शिखा सी शिवमयी हिंदी, मथुरा धाम शक्ति पीठों में वसुधा की रज रज में हिंदी, भारत के जन एक बराबर समरस की परिचायक हिंदी, एक सूत्र समभाव विमलमन यूं भारत माता सी हिंदी,
देश की ध्वजा पताका हिंदी, जन गण मन अधिनायक हिंदी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में जय हे जय हे जय हे हिंदी। और अंततः एक व्यंग देखिए कि इतनी व्यापकता के बाद भी हमारी हिंदी की आज की ये स्थिति। ज्ञानकोश रत्नाकर हिंदी, हिंदी हर दिन हिंदी, हिंद हो गया हिंदी हिंदी, फिर क्यों घोषित है दिन हिंदी। जग की हर भाषा के स्वर में छिपा हुआ हर शब्द है हिंदी, इतनी अविरल इतनी अविचल, फिर क्यों है कुंठित सी हिंदी। आदि अनादि युगों युगों से भारत की पहचान है हिंदी, फिर भी न जाने क्यों देखो अपनों में लज्जित सी हिंदी। यूं सिमटी सी यूं सकुची सी, अपनों में गुमनाम सी हिंदी, अपने ही अस्तित्व के लिए फिर क्यों है लाचार सी हिंदी, फिर क्यों है लाचार सी हिंदी, फिर क्यों है लाचार सी हिंदी। तो श्रोताओं, ये था आज का विशेष कार्यक्रम हिंदी दिवस पर हिंदी की महिमा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन और लेखन भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरिज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक, निजी व्यापार, पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया? क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे, वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे। जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे, तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

मुश्किल है अपना मिले प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी की इन हास्य पंक्तियों पर रविवार को मैनेट का हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। मौका था 3 दिवसीय हिंदी महोत्सव तूरीनाद 2026 की समापन संध्या में हुए अखिल भारतीय युवा कवि सम्मेलन का। जोगी ने हास्य के जरिए श्रोताओं को खूब गुदगुदाया तो दूसरे कवियों ने वीर, श्रृंगार, करुण और भक्ति रस की रचनाओं से माहौल को अलग रंग दिए। श्रृंगार रस के कवि रामायण धर द्विवेदी ने अपनी पंक्तियों देह में श्वास भर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए के जरिए प्रेम और संवेदना का भाव जगाया। वहीं उनकी व्यंगात्मक पंक्तियां अंधियारे में तीर चलाना और एक के तीन बनाना छोड़िए पर भी श्रोताओं ने खूब दाद दी। सम्मेलन का संचालन बनारस से आए कवि कार्तिकेय शुक्ला ने किया। उनकी पंक्तियां जमाना जीत लाएंगे, हमारे साथ ही रहना, सभी दुख मुस्कुराएंगे, हमारे साथ ही रहना ने समापन संध्या को भावनात्मक रंग दिया। वीर रस के कवि मनवीर मधुर कवियत्री अपराजिता शिवम भगवती, शिवेज राजा, नरभय निश्चल और आयुष आर्वत ने भी अपनी रचनाओं पर भी खूब तालियां मिली।

राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर भारत भवन में 14 और 15 सितंबर को भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय विषय मातृभाषा संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों पर संवाद है। कार्यक्रम के पहले दिन मातृभाषा से राष्ट्रभाषा, भाषाओं में भारत की आत्मा और भाषाई पत्रकारिता समाज की आवाज विषय पर विमर्श होगा। शाम को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में डॉक्टर कीर्ति काले, स्वयं श्रीवास्तव, दिनेश दिग्गज, शैलेंद्र मधुर, अजहर इकबाल और रामायणधर द्विवेदी काव्य पाठ करेंगे। पूर्व रंग में भारतीय भाषाओं और बोलियों के गीतों की प्रस्तुति होगी। 15 सितंबर को डिजिटल युग में मातृभाषाएं और भाषा अनेक भारत एक विषय पर संवाद होंगे। शाम को संत राग में संत कवियों की वाणी प्रस्तुत की जाएगी। आयोजन स्थल पर भारतीय भाषाओं से जुड़ी शब्द चित्र प्रदर्शनी भी लगेगी।

भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में पंच कन्याओं का स्मरण नारी के साहस, धैर्य, त्याग, आत्मबल और जीवन संघर्ष की स्मृति के रूप में किया जाता है। इसी परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी अहिल्या लीला नाट्य है। रविवार को ट्राइबल म्यूजियम में इसकी प्रस्तुति हुई। इसमें अहिल्या के जीवन की उस कथा को मंच पर प्रस्तुत किया गया है। ये कथा श्राप और उद्वार से आगे बढ़कर नारी की गरिमा, न्याय, करुणा और पुनर्स्थापन जैसे सवालों को सामने लाती है। कथा महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से शुरू होती है। भारतीय पौराणिक परंपरा में अहिल्या को उनके सौंदर्य के साथ साथ तप और विद्वता के लिए भी जाना जाता है। कथा के अनुसार देवराज इंद्र अहिल्या से प्रभावित होकर महर्षि गौतम का रूप धारण करते हैं। वे उनके आश्रम में पहुंचते हैं। घटना की जानकारी होने पर महर्षि गौतम इंद्र को श्राप देते हैं। अहिल्या को भी लंबे एकांत और प्रतीक्षा का जीवन जीने का श्राप मिलता है। अहिल्या अदृश्य रहकर वायु का सेवन करती हैं। विश्राम के नाम का जाप करती हैं। इस कठिन समय में भी वे अपनी साधना और विश्वास बनाए रखती हैं। उनके जीवन में यह समय केवल दंड या प्रतीक्षा का नहीं रहता, यह आत्मबल और धैर्य की परीक्षा का दौर बन जाता है। कथा का निर्णायक मोड़ तब आता है जब भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ अहिल्या के आश्रम पहुंचते हैं। श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होता है। वे पुनः अपने मानवीय स्वरूप में लौटती हैं। इसके बाद उनका महर्षि गौतम से मिलन होता है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये, बहुत ही खूबसूरत कथा है ये, जिसका नाटकीय वर्णन ट्राइबल म्यूजियम में हुआ। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में, रामायण जी में इसका उल्लेख है। अब बात ट्रेडिशनल आर्ट की। कैनवास पर पुरानी संस्कृति और चित्रों की झलक देखने को मिली। मौका कला प्रदर्शनी का रहा। लिखंदरा आर्ट सोसाइटी की ओर से रविंद्र भवन स्थित ललित कला गैलरी में इकोज ऑफ द अर्थ का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में पारंपरिक और समकालीन कला के विविध रूप देखने को मिले। देश के प्रमुख शहरों जैसे भुवनेश्वर, नई दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, बिहार, रांची और भोपाल से आए लगभग 40 कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित की। रचनाओं के माध्यम से प्रकृति, संस्कृति, समाज, स्मृतियों और आधुनिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों को कैनवास पर उभारा। आयोजक संस्था लिखंदरा आर्ट सोसाइटी के अनुसार इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय कला की विविध परंपराओं और आधुनिक अभिव्यक्तियों को एक मंच पर लाना है। केरल के आर्ट सहित कालीघाट की रेखाएं और पट्टचित्र जैसी कई शैलियां देखने को मिली। मौका कला प्रदर्शनी का रहा है। 20 कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये राजधानी सहित अन्य प्रदेश के अन्य जिलों से थे। क्रिएटिविटी को रंगों के माध्यम से कागज पर उतारने के

दानवीर कर्ण और उलूपी पर अपनी कहानियों को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। यहाँ पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रतिभागियों को प्रस्तुति व शैली सुधारने के सुझाव दिए, कहा महाभारत वर्तमान संदर्भों में भी प्रासंगिक है।

बच्चों के भी अपने सपने हैं, जरूरी नहीं है वे वही सोचे जो अभिभावक चाहते हैं। जंगली बूटी नाम के नाटक में इसे बताया जाएगा। यह कालीबाड़ी में द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के जरिए रविवार शाम 7 बजे रहेगा। अभिनेता व निर्देशक चंद्रहास तिवारी की स्मृति में ये आयोजन होगा। ये अमृता प्रीतम की मूल कहानी पर आधारित है। लेखन तानाजी ने किया है। नाटक मुख्य रूप से हंगूरी नामक लड़की के इर्द गिर्द घूमता है। बचपन से सिखाया गया है कि परिवार से इतर किसी से प्रेम करना केवल जंगली बूटी का असर होता है। कहानी बच्चों की सोच पर माता पिता के थोपे गए विचारों, सामाजिक सीमाओं और भौतिक चाहतों पर करारा प्रहार करती है।

तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया कि आज 14 सितंबर है, केवल 14 सितंबर नहीं है, ये 14 सितंबर है चूंकि आज हिंदी दिवस है, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने का अर्थ ये नहीं है कि केवल हम 14 दिवस को हिंदी में कार्य करें, हिंदी में बोलें या हिंदी का उपयोग करें। ये हमें ये याद नहीं दिलाता कतई कि हम हिंदी भाषी हैं या हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है। ये तो दुनिया के दूसरे इलाके, प्रांत, व्यक्तियों को सूचित करने का मात्र तरीका है कि एक हिंदी भाषा और इसका हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। हम सब हिंदी भाषियों में, हम सब हिंदुस्तानियों में तो हिंदी रग रग में भरी पड़ी है। हम कितनी ही कोई दूसरी भाषा बोल लें, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप की आवश्यकताओं के चलते दूसरी भाषाएं हमें सीखना पड़ती हैं, उनका उपयोग करते हैं। लेकिन हम दुनिया घूम लें, दुनिया में चले जाएं, दुनिया भर के काम कर लें, हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपना घर ही अच्छा लगता है। कहीं घूमाएं, अपनी माँ की गोद ही अच्छी लगती है। कह सकते हैं कि माँ की गोद का कोई जवाब नहीं है, अपने घर का कोई जवाब नहीं है। जैसे माँ की गोद का कोई दूसरा जवाब नहीं है, कोई दूसरा स्थान नहीं है, दूसरा वो आत्मीयता की कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसे ही अपने घर का कोई दूसरा घर ही नहीं है, दूसरा सुकून ही नहीं है। चाहे दुनिया घुमाओ, दुनिया के सुख देख लो, वैसे ही हम जितने भी हिंदी भाषी हम जानते हैं कि हम जब सबसे दुखी होंगे या सबसे खुश होंगे, हम कितनी भाषाओं के जानकार क्यों ना हो, हमारे मुंह से, हमारी जबान से, दिमाग में, हमारे मन में सिर्फ हिंदी ही आती है, हिंदी ही सुनाई देती है और हिंदी ही बोलने में आती है। तो जैसे सुकून अपने घर में मिलता है दुनिया घूमने के बावजूद, वैसे ही सुकून हिंदी को बोलने में मिलता है। सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, या ये कहना कि सुकून हमें मिलता है इसकी जरूरत नहीं होती, ये तो वैसे ही निकलती है, वैसे ही जबान से निकलती है और वैसे ही कानों में पड़ती है, वही मन उसे पढ़ता भी है, मन उसे मानता भी है, मन उसे सुझाता भी है, मन उसी को सुनना चाहता है, कहना चाहता है। तो हिंदी दिवस की एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम जारी रखते हैं, हिंदी पर और बात करें।

बुहैया का रहस्य, वह साधारण पत्ती जिसने दुनिया जीत ली। 18वीं शताब्दी के लंदन के चहल पहल भरे चायघरों में चीनी मिट्टी के एक साधारण कप में क्रांति जन्म ले रही थी, जहां कुलीन वर्ग पैको वसंत की पहली सफेद कोमल कलियों की तलाश में रहता था, वहीं आम जनता बुहैया नामक एक रहस्य की दीवानी हो रही थी। हालांकि यह किस्म राजाओं की पसंद से कोसों दूर थी। वास्तव में ये सीजन की सबसे आखिरी और सबसे देर से की जाने वाली तुड़ाई थी, जिसे चाय के पौधे की बड़ी और खुरदुरी पत्तियों से तैयार किया जाता था। बुहैया का रहस्य परिष्कृत स्वाद का विषय नहीं था, बल्कि यह अर्थशास्त्र और सामाजिक आदतों का एक शानदार तालमेल था। जैसे जैसे वेस्ट इंडीज के बागानों से आने वाली चीनी की कीमतें गिरी, चाय कामकाजी वर्ग के लिए मिठास के उपभोग का सबसे बड़ा माध्यम बन गई। चूंकि बुहैया उपलब्ध किस्मों में सबसे सस्ती थी, इसलिए यह वे एकमात्र पत्ती थी जिसे आम जनता वहन कर सकती थी। 1700 के दशक के मध्य तक इस साधारण चाय ने बाजार पर कब्जा कर लिया था और कुल काली चाय के आयात में इसकी हिस्सेदारी 37.8% से उछलकर आश्चर्यजनक रूप से 63.3% हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि बुहैया की भारी मात्रा में बिक्री ने उनके वैश्विक संचालन की विशाल लागत को वहन करने के लिए आवश्यक राजस्व प्रदान किया। भले ही सरकारी कर अंततः 100% से अधिक हो गए हों, लेकिन इस किफायती पेय के प्रति जनता के जुनून ने फसल के बचे कुचे हिस्से को पश्चिमी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय बना दिया। बुहैया ने यह साबित कर दिया कि बढ़ते हुए साम्राज्य में विपत्ति सबसे शक्तिशाली थी, जिसने हर किसी को चाय के कप तक आने का निमंत्रण दिया।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। हम सभी जानते हैं कि ये श्लोक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हमें कोई शुभ कार्य करना होता है तो हम इसी श्लोक का उच्चारण करते हैं, भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं और इन्हीं के नाम से हर शुभ कार्य को आरंभ करते हैं। आज गणेश चतुर्थी का पावन अवसर है। आज के दिन की महिमा के बारे में हम जानेंगे हमारे आज के अतिथि से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम नाम लेते हैं हर शुभ कार्य को करने के पहले भगवान श्री गणेश जी का जी। तो आप भगवान श्री गणेश जी के बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे?
1: भगवान श्री गणेश जी के बारे में तो मैं ही क्या, सारे वेद वेदांत जितने भी सबसे पहले भगवान श्री गणेश से ही शुभारम्भ करते हैं। शुभारम्भ के देवता भी हैं गणपति जी, गणों के भी वह देवता हैं। और सबसे तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो एक डर से भी नाम लेते हैं, विघ्न हर्ता होने के कारण, कि हमारे सारे संकटों का नाश हो और सद्बुद्धि की प्राप्ति, और जिस योग्य जिस कारण से हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल हो, उसके लिए हम भगवान श्री गणेश को सबसे पहले याद करते हैं। और मैं भी भगवान श्री गणेश को अभी याद कर ही रहा हूँ कि आप मेरे सामने हैं और प्रश्न पूछ रही हैं, मुझे उसमें सफलता मिले इसके लिए।
0: बिल्कुल, हमने भगवान श्री गणेश जी का नाम लेके इस कार्यक्रम को भी आज आरंभ कर ही दिया है। हमें करनी होगी उनके स्वागत की तैयारियां, यानी कि हमें घर में किस तरह से साज सज्जा करनी चाहिए, उस बारे में भी कुछ बताएं।
1: सबसे अच्छा ही है, क्योंकि जब हम किसी धार्मिक कार्य को प्रारंभ करते हैं उसको प्रारंभ करने से पहले तो घर में साज सज्जा हम करते ही हैं। और वास्तु की उत्पत्ति भी इसीलिए हुई है कि हम भगवान के घर को कैसे सजाएं, या हमारे कोई देवी देवता आते हैं, हमारे यहाँ कोई शादी विवाह के मांगलिक कार्य होते हैं, उसमें घर की एक अलग साज सज्जा का विशेष महत्व होता है। आज की साज सज्जा का भी इसी प्रकार से एक महत्व है। एक दिन पहले तो इसके जाले घर के तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि जाले इस साधना में थोड़े से नुकसान करते हैं। दूसरा, सुबह घर में झाड़ू पोछे लगाकर वहाँ पोछे से पानी डालकर थोड़ी सी हल्दी पानी में मिलाकर उससे पोछा लगा देना चाहिए, क्योंकि भगवान हरिद्रा के माध्यम से कई प्रकार के घर में दोष बन जाते हैं, कोई नज़र दोष बन जाते हैं, कई भूमि दोष बन जाते हैं, तो वह दोष घर में नहीं रहता है। तीसरा, मुख्य द्वार के ऊपर बंदरवार, जो आम के और आपने अशोक के पत्ते को लटका हुआ देखा होगा, तो आम के पत्तों का आज विशेष महत्व होता है, आम के और अशोक के पत्ते का। अशोक शोक करने वाला होता है और आम के पत्ते से किसी भी प्रकार की बाधाएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं, तो इस प्रकार से तोरण सजाया जाता है। तो यह घर की वास्तु रहती है। जहां भगवान को स्थापित करना होता है वहां पर एक चौक की स्थापना की जाती है और फिर वहां ठाकुर जी को स्थापित करते हैं।
0: जैसा कि आपने कहा कि चौक की स्थापना की जाती है, चौक मारा जाता है, तो क्या रंगोली भी उस स्थान पर हम बना सकते हैं?
1: बिल्कुल, क्योंकि चौक का जो धार्मिक महत्व है, चौक के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा श्राद्ध पक्ष में जो चौक बनता है उसमें चरण बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आटे से हम चरण बनाते हैं।
1: जी। तो ऐसी दीपिका जब पूजन होती है दीपावली के दिन, उस पूजन में दो दीपक का आसपास बनाए जाते हैं, सूर्य चंद्रमा इसमें बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से आज के चौक का भी विशेष महत्व होता है। यहाँ चौक चौकोर जरूर लीपा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो रंगोली बनाई जाती है वो गोल बनाई जाती है। इस गोल रंगोली का विशेष महत्व होता है और उसमें कलश होता है, पान का पत्ता होता है, नारियल होता है, ये चिन्ह उसके अंदर बनाए जाते हैं। इससे साज सज्जा होती है, इससे सारे विघ्न दूर होते हैं।
0: तो जो आप चर्चा कर रहे हैं वो यानी कि एक विधि विधान है पूरा, तो और भी कई सारे विधि विधान होते होंगे, तो उस बारे में भी थोड़ी जानकारी आप दे दें।
1: इसमें विधि विधान में यही होता है कि जब हम कोई साधना करें उसमें बाधाएं ना आए, इसके लिए विधि विधान होते हैं। जब हम घर के बाहर, आपने साउथ इंडिया कभी गए हों तो वहां पर तो स्थिति है, सुबह 5 बजे घर की महिलाएं उठ ही जाती हैं, वो पानी छिड़क कर छोटी सी रंगोली पर रंगोली बना देती हैं। उस रंगोली का ही मतलब होता है संपन्नता और हमारे संस्कार लगातार बचे रहते हैं। सबसे पहला काम आज भी यही किया जाता है, घर के बाहर पानी छिड़क दिया जाता है। गाय का गोबर मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है, और उसके ऊपर रंगोली को बना दिया जाता है। ऐसा करने से घर में शांति भी मिलती है और उपद्रवी तत्व जो इन त्योहारों के समय में आपके घर में घुसने के लिए देवी देवता लालाए थे, तो वहाँ अदृश्य शक्ति जो गलत है ये भी आपके घर में घुसने को तैयार रहती है, यदि आप उस चीज़ को अनुष्ठान को नहीं करते हैं तो।
0: जी।
1: जब हम रंगोली बनाते हैं तो इस प्रकार से हमारी इसमें रक्षा होती है, किचन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि महिलाएं ही इस त्यौहार को या कोई भी त्यौहार हो बिना उनके पूरा होता ही नहीं है। किचन में अच्छी आपकी ऊर्जाएं बनी रहे उसके लिए उन भगवान के नाम का एक दीपक भी लगाया जाता है प्रातःकाल। तो उसके माध्यम से हम अपने घर की शुद्धि करते हैं और जो प्रतिष्ठा हम करते हैं उसका हमें पूरा पूरा फल प्राप्त होता है।
0: बिल्कुल आचार्य राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब प्रतिमा हम घर पे लाते हैं, आजकल घरों में प्रतिमा बिठाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, एक चलन भी कह सकते हैं, हम चलन चल गया है, क्योंकि पहले तो मंदिरों में ही जाकर हम पूजन किया करते थे, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है या क्या कर सकते हैं हम?
1: अब मैं जो देख रहा हूँ साधना में और शास्त्रोक्त विधानों में और मार्केट में आजकल जो प्रसिद्ध हो रहे हैं इनमें काफ़ी सारा अंतर है, क्योंकि पहले आपने कई बार पूजन में देखा होगा एक ब्राह्मण आता है, एक सुपारी लेता है, उसके ऊपर आटी बनाकर रख देता है, उनके ये आपके गणेश जी हैं। एक्चुअली ये विधान शास्त्रोक्त विधान है कि हम गणेश जी को प्रतीक स्वरूप में सुपारी अर्थात जो चीज गोल होती है उसके रूप में भगवान को प्रतिष्ठित कर देते हैं। विशेष रूप से यही विधान होता है जब कोई अचलायमान मतलब जिनको विसर्जित ही करना है तो उनकी जो मूर्ति बनाई जाती है वो इसी प्रकार की होती है, या तो आप मिट्टी का छोटा गोल बना लें और उसको गणेश जी के रूप में मंत्र से, क्योंकि मंत्र की ही इसमें वैल्यू होती है, सुपारी की कोई वैल्यू नहीं, जब भगवान गणेश का मंत्र उसमें पहुंचता है जागृत हो जाती है, मिट्टी की गणेश की जो एक स्वरूप उसमें मंत्र पहुंचता है वह जागृत हो जाता है, मेटल की जो मूर्ति होती है घर में होती है उसमें जब मंत्र पहुंचता है वह जागृत हो जाती है। तो कुल मिलाकर इसमें जागरण के मंत्रों का विशेष महत्व होता है और उन्हीं का ही होता है। लेकिन आज प्लास्टर ऑफ पेरिस चल रहा है, आजकल तो एक नया, अब मुझे तो डपोसला ही कहना पड़ेगा क्योंकि इसकी जानकारी मुझे है कि इन मूर्तियों में कोई दम नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी बड़ी मूर्ति बना दी जाती है, इनका कोई औचित्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर आपका मंत्र ही काम नहीं करता, यदि आप साधना करने वाले व्यक्ति हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के सामने यदि आप साधना करेंगे, क्योंकि उसमें जान नहीं होती है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगे जिस चीज से ना निकलें उसकी मूर्ति बनाना किसी काम का नहीं होता है, इसलिए मेटल की भूमिका होती है, इसलिए सुपारी की भूमिका होती है, इसलिए मिट्टी की भूमिका होती है, क्योंकि मिट्टी में सबसे ज्यादा तत्व होते हैं और सबसे जल्दी मंत्र पर मिट्टी काम करती है, इसलिए मिट्टी के गणेश बनाने का विशेष रूप से इसमें विधान होता है।
0: बिल्कुल, हमने मिट्टी के गणेश जी बना लिए, अपने घर में उनकी स्थापना कर ली, अब हम चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश को हम भोग चढ़ाएं, भोग लगाएं उनके सामने, तो उन्हें बेहद पसंद होते हैं मोदक, तो मोदक के बारे में भी आप कुछ बताएं कि किस तरह से हमें मोदक बनाने चाहिए, कौन से मोदक का महत्व होता है, भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा भी बहुत पसंद होती है, तो इन सब बातों के बारे में भी थोड़ा बताएं।
1: भगवान श्री गणेश जी के जितनी भी जो वस्तुएं उनके भोजन की हों या उनका पेट हो या उनका आकार हो या उनके किए गए कार्य हों, इन सब में कहीं ना कहीं एक साइंस भी है और आपके लिए एक कुछ दिशा दर्शन भी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि गणेश जी का जब आप अध्ययन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक पूरा ब्रह्मांड का ही एक रचना अलग है जो ब्रह्मांड में ही निहित है और उनकी पूजन से हम सब कुछ सिद्ध करते हैं। भगवान के भोग में लड्डू को ले लिया जाए तो उनको लड्डू पसंद है, वो विशेष रूप से लड्डू में बूंदी के जो लड्डू होते हैं ये इनको पसंद होते हैं। दूसरा, अब हमने देखा होगा कि हम गूंजे बनाते हैं
0: जी।
1: तो एक अर्धचंद्राकार गूंजे बनाए जाते हैं, ये गूंजे का विशेष जो प्रचलन है वह प्रचलन दीपावली के समय में होता है, क्योंकि उसमें चंद्रमा और अमावस्या की जो तिथि होती है उसके अनुसार इसकी उत्पत्ति होती है
0: जी।
1: और आज के समय में मोदक का विशेष महत्व होता है, मोदक आपने देखा लड्डू के नुमा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, वह एक जो मोदक का भी बनाते हैं, गूंजे का ही एक प्रतिरूप है, गोल रूप से आता है और भगवान को जो चढ़ाते हैं
0: जी, तो मेंदे का हम गूंजा बनाते हैं और उसके अंदर मावा मिष्ठान हम भर देते हैं और उसी को मोदक का एक मोदक रूप बोलते हैं।
1: हाँ। तो उस मोदक में यही होता है कि वह मोदक भी भगवान को चढ़ाया जाता है। लड्डू में बूंदी के लड्डू का विशेष महत्व होता है, इसमें एक तो मेंदे के लड्डू जो बनाते हैं, दूसरा लड्डू चावल के बनाते हैं, तीसरा ये मावे के जो लड्डू बनाते हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन आजकल ये चीजें बनना शुरू हो गई।
0: बिल्कुल, बेसन के लड्डू भी कई लोग भगवान श्री गणेश,
1: हाँ श्री गणेश जी को बेसन के लड्डू पसंद नहीं है, बूंदी के लड्डू उनको पसंद है, जो चीज जोड़ी जाए वह भगवान श्री गणेश को पसंद होती है, बूंदी जुड़ जुड़ के बनाती है वो उनको पसंद होती है। उनका मोदक होता है उसमें ऊपर से मैदे का बना होता है, अंदर भरा होता है, फिर मिक्स हो जाता है, ऊपर जाके एक टॉप बना देते हैं उसको जोड़ देते हैं, जोड़ना पसंद है, तो भगवान श्री गणेश को जोड़ना पसंद है, तोड़ना पसंद नहीं है, इसलिए उनका सब वही चीज चढ़ेंगी जो लगातार जुड़ जुड़ के बनी होगी। और इसलिए केले भी जब हाथी को खिलाते हैं उसका भी यही होता है, पूरे हाथी को जो केले खिलाए जाए पूरा पूरा एक गुच्छा होता है वो दे दिया जाता है
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: आपका
0: जी.
1: काम सिद्ध हो जाता है, उसको एक एक तोड़ के केला नहीं खिलाते हैं.
0: बिल्कुल. एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान श्री गणेश के जो मूषक रहता है वो भी बहुत प्रिय रहता है उनको. तो जब हम प्रतिमा लेने के लिए जाते हैं तब कई सारी चीजें हम ढूंढते हैं कि उनके हाथ में मोदक होना चाहिए, साथ में मूषक होना चाहिए, और भी कई सारी चीजें उनके हाथ में होनी चाहिए. तो कैसी प्रतिमा लेकर आए घर में हम?
1: इसमें विशेष तो देखो, मैंने भी आपसे थोड़ा सा पहले उल्लेख किया था
0: जी.
1: कि प्रतिमाओं में एक तो प्लास्टर पेरिस की नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की प्रतिमा आप घर में, क्योंकि भगवान छोटे भी हैं तो आपको कोई दोष नहीं है, आपको अपने कार्य सिद्धि से मतलब है, तो छोटे भगवान भी चल जाते हैं. चूंकि उनका वाहन ही चूहा है तो बिना चूहे के तो भगवान का आना, और मूषक राज, चूंकि मूषक एक राक्षस था जिसका भगवान ने मान भंग करके उसको अपनी सवारी बना लिया था, तो मूषक राज वैसे शैतान होता है, लेकिन भगवान श्री गणेश के कारण वो शैतानी आपके नहीं कर पाता है. और जब मूषक के सहित भगवान श्री गणेश को घर में प्रतिष्ठित किया जाता है तो अन्नपूर्णा का घर में वास होता है, कभी भी खाद्यान्न की कमी पूरे वर्ष भर नहीं होती है, इसलिए ऐसी मूर्ति लाते हैं. और दूसरा, मूर्ति जो घर में स्थापित की जाती है, मकान मालिक अर्थात जो कुटुंब का सबसे बड़ा व्यक्ति, उसके पंजे से बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए.
0: अच्छा.
1: है ना, तो एक तो ध्यान ये हुआ,
0: ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने बताई.
1: हाँ, तो इतनी बड़ी मूर्तियों का घर में नहीं होना चाहिए. दूसरा, व्यवसायिक स्थान पर यदि हम मूर्ति ले जा रहे हैं तो व्यवसाय का जो प्रतिष्ठान का मालिक है उसके हाथ के बराबर अर्थात कोहनी से लेके ऊपर के पंजे की टॉप तक एक से डेढ़ फीट की लगभग मूर्ति होती है, उससे बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए. साधना यदि हम कर रहे हैं तो जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसकी तर्जनी पहली उंगली से बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो भगवान पूरे सामने हमें दिखना चाहिए. मूर्ति जितनी बड़ी होगी मालूम पड़ा उनका पेट ही दिख रहा है, किसी का हाथ दिख रहा है, किसी की सूंड दिख रही, तो हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता है. इसलिए जितनी मूर्ति छोटी होती जाती है, जितना अणु स्वरूप होता जाता है उतना ही विस्फोटक होता है. तो छोटी मूर्ति का विशेष रूप से इसमें विधान होता है, बड़ी का नहीं होता है. बहुत बड़ी मूर्तियों को घर में नहीं लगाना चाहिए, और आदम कद मृत्यु वाले लोगों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए, वह भी प्रेत बाधाएं देते हैं. तो उसी प्रकार से देवताओं की ज्यादा बड़ी मूर्ति घर में प्रतिष्ठित करने से उनके उतने अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं.
0: बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कार्य सिद्धि के लिए हम भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को घर में लाते हैं तो हर किसी के मन में होती हैं बहुत सारी कामनाएं भी. सभी चाहते हैं कि हमारी कामना पूर्ति हो जाए, जल्द से जल्द हम भगवान से आशीर्वाद मांगे और तुरंत हमें फल की प्राप्ति हो जाए. खैर ऐसा तो नहीं होता, तुरंत तो फल नहीं मिलता. कहते भी है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज तो होती ही है कि हमारी कामना पूर्ति हो, तो वो कैसे हो सकती है?
1: कामना पूर्ति तो भगवान का नाम लेने से, उनके सामने कुछ बोलने से जरूर पूरी हो जाती है. परंतु भगवान श्री गणेश की जहाँ बात चल रही है, यहाँ सबसे जल्दी कामना पूर्ति के लिए दूर्वा चढ़ाने का इनमें विशेष महत्व होता है. दूर्वा चढ़ाने के 12 मंत्र भी हैं, उन मंत्रों को एक एक बोलते जाएं, दूर्वा उनको चढ़ाते जाएं, तो उससे विशेष फल मिलते हैं और आपकी कामना भी पूरी हो जाती है. तो इसलिए उन 12 मंत्रों का प्रतिदिन जाप करते हैं, 12 दूर्वा उनको रोज चढ़ाते हैं, प्रतिदिन से प्रातः से लेके आखिरी दिन जिस दिन उनको विसर्जन करते हैं तब तक उनको उस मंत्र से दूर्वाएं चढ़ाते हैं, आपके कार्य जरूर इसमें सिद्ध हो जाते हैं.
0: हम चाहेंगे कि वो 12 मंत्र आप हमें अवश्य ही बताएं.
1: उसमें एक मंत्र होता है सुख मुखाय नमः, एक दंताय नमः, कपिलाय नमः, गज करण काय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्न नाशाय नमः, विनाशकाय नमः, धूम्र केतवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः, भालचंद्राय नमः, गजाननाय नमः. इन मंत्र को एक एक मंत्र बोलते हैं और दूर्वा चढ़ाते जाते हैं. और जो हमारी मनोकामना होती है, पहले एक चोकोर पेपर इसमें लेते हैं, तो उसके ऊपर हम अपनी मनोकामनाओं को लाल अक्षर से लिखते हैं, उस चोकोर पेपर की 2 घड़ी करते हैं और भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनके कपड़े के नीचे उसको रख दिया जाता है. एक वर्ष के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है.
0: जैसा कि आपने 12 मंत्र भी हमें बताए, तो हम सभी जानते हैं कि इन मंत्रों से हमारे कार्य जो है वो अवश्य ही सिद्ध होते हैं और भगवान की कृपा भी हमें अवश्य ही मिलती है. लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ चीजों से श्राप भी लगता है यदि हम कार्य सही नहीं कर पाते हैं. हाँ. मंत्रों का गलत ढंग से उच्चारण कर लेते हैं तो. और ऐसी ही एक कहानी जो है प्रचलित है चंद्रमा के श्राप की, कि चतुर्थी के दिन ही हम भगवान श्री गणेश को अपने घर में लाते हैं और चतुर्थी के दिन ही हम चंद्रमा को नहीं देखते हैं, श्राप माना जाता है. तो ऐसा क्यों हुआ था, वो कहानी आप हमें बताएं.
1: चंद्रमा के श्राप को तो भगवान गणेश जी ने स्वयं ही दिया था, तेजहीन होने का उसे श्राप दिया था. क्योंकि जब भगवान गणेश जी स्वयं एक गणों की सभा में बैठे हुए थे, वहां पर और एक छोटी सी उनकी आपस की वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई उसमें। तब ये चंद्रमा ही पीछे मुंह करने के बाद भगवान की खिल्ली उसने उड़ा दिया था। उस स्थिति को देखकर भगवान श्री गणेश जी ने उनको श्रापित कर दिया था कि अब तुम तेजहीन हो जाओ। जब चंद्र को तेजहीन होता हुआ देखा सारे ग्रहों ने, फिर ये देखा कि चंद्र ही तेजहीन हो गए तो पृथ्वी पर तो ना जड़ी बूटी रहेंगी ना रात्रि का, क्योंकि जो भी पौधे बढ़ते हैं रात्रि में ही बढ़ते हैं। मनुष्यों को भी सपने आते हैं रात्रि में आते हैं, मनुष्य भी जो तरक्की करता है रात के सोने के बाद ही करता है। सारी कुछ सृष्टि ही जीरो हो जाएगी यदि चंद्रमा क्षीण हो गए तो। फिर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न किया। प्रसन्नता के बाद भगवान श्री गणेश जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को वरदान, दूसरे देवताओं को बोला कि मैं चंद्रमा को एक दिन के लिए मुक्त कर सकता हूँ भाद्र पक्ष के लिए। फिर सब देवताओं ने जाकर चंद्रमा को बताया कि हमने भगवान श्री गणेश को मना लिया है और उन्होंने बोल दिया है कि इस तरीके का वह आपको श्राप से मुक्त करके कुछ लाभ देना चाहते हैं, उसके लिए आप उनके पास जाएं उनकी साधना करें। तब चंद्रमा ने आकर भगवान श्री गणेश की साधना प्रारंभ की। साधना उनकी 12 दिन तक चली और इंद्र देवता ने बीज मंत्र का उनको जाप दिया
0: जी।
1: गम जो मंत्र है सबसे पहले इंद्र ने ही चंद्रमा को दिया था और उस मंत्र को जब जाप करना उन्होंने शुरू किया, ऐसा करते करते 12 वर्ष लगे। 12 वर्ष में भगवान श्री गणेश उनसे प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा सिर्फ वही श्रापित होगा, इसके अलावा तुम श्राप से मुक्त हो रहे हो। तो ऐसा उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और आज इसी रूप में इस रूप में उनको मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, यानी कि भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को खुद श्रापित किया था और इस दिन हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए वरना हमें भी श्राप कहीं ना कहीं लग जाता है।
1: क्योंकि इसमें तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए, तो उन्होंने भी चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे तो उन पर भी स्वयं तक मणि की चोरी का आरोप लगा था। तो आम व्यक्ति की तो बात ही क्या, कुछ ना कुछ दोष इसमें बनता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। एक प्रश्न और मन में उत्पन्न हो रहा है, हम प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग प्रतिमाओं को जब घर में लाते हैं, कुछ लोग 1.5 दिन के लिए लाते हैं, कुछ 3 दिन के लिए, कुछ 8 दिन के लिए लाते हैं, जो 11 आती है डोल 11 जिसे कहते हैं, घर की प्रतिमाओं को उस दिन विसर्जित कर दिया जाता है, कुछ लोग 14 अनंत 14 जो आती है उसको विसर्जित करते हैं, तो सही दिन सही मुहूर्त कौन सा होता है?
1: इसमें मुख्य यह रहता है, जैसे इसके एक तो अलग अलग सिद्धांत होते हैं
0: जी।
1: 3, 5, 7 दिन इनका विशेष वो रहता है कि ऑड नंबर से में इनको रखा जाए, ये सिद्धि को देने वाले होते हैं। अब होता ये कि जो व्यक्ति 1 दिन लाकर रखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के घर में कोई शुभ कार्य होने वाला हो तो फिर भगवान श्री गणेश जी को 7 दिन के लिए स्थापित किया जाता है या एकादशी तक के लिए इसको स्थापित करते हैं। और यदि कहीं कोई ऐसी घर परिवार में बाधा चल रही है जिसके कारण हम बहुत ज्यादा
0: विधान से पूजन नहीं कर,
1: तो फिर ऐसे में 12 दिन के लिए स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इनको यहाँ घर से हटाते हैं। और दूसरा, यदि आप सामान्य रूप से 1 दिन और 1.5 दिन के लिए उनको रखते हैं तो उसमें हमारी साधना पूरी हो जाती है। 1 या 1.5 दिन का विशेष जो विधान होता है भगवान श्री गणेश के आगमन का विधान होता है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, दूसरे दिन उनके लिए भोजन करा दिया जाता है और वहाँ से विदा कर दिया जाता है। इनके उद्देश्य अलग अलग हैं, 1 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन, पर उसके अनुसार इनको बिठाया जाता है। जो आपकी मनोकामना जैसी होती वैसी पूरी करते हैं। सामान्य यदि आप बिठा रहे हैं तो 1 दिन में आपको 1 से 3 दिन के अंदर में भगवान को विदा कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल, भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं उनके, तो दो जो बहुत ही खासे मशहूर कहूंगी मैं, मशहूर जो फेमस नाम है उनके, उनकी कथा के बारे में, उनके पीछे क्या कहानी है इस बारे में आप बताएं। पहला हम बात करना चाहेंगे विघ्नहर्ता जो उनका नाम है उस बारे में।
1: विघ्नहर्ता भगवान का जो नाम है ये नाम भगवान परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ है
0: जी।
1: भगवान परशुराम जी के समय में कहा जाता है जब तक वो भगवान शिव पार्वती जी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा ही जब भगवान शिव पार्वती जी साधना में थे उस समय जब दर्शन करने पहुंचे तो वहाँ ड्यूटी भगवान श्री गणेश की लगी हुई थी। उस लगी हुई ड्यूटी में जब ये पहुंचे तो इन्होंने उनको मना किया, परशुराम जी को रोका। अनुनय विनय करने के बाद भी ये नहीं माने, तब उन्होंने गुस्से में हट विघ्नहर्ता इस तरह से उनको बोला था, तो विघ्नायक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हीं के माध्यम से विघ्न दूर हुए इसलिए विघ्नहर्ता उनका बाद में नाम हुआ। फिर उसी समय में एक कहानी उनकी एक दंताय वाली भी आती है, जब उनका आपस में विवाद शुरू हो गया तब उनका जो त्रिशूल था, फरसा जो था, उस फरसे को परशु बोलते थे, परशु भगवान शिव का अस्त्र है जो भगवान परशुराम जी को उन्होंने दिया था। उस अस्त्र को गणेश जी के ऊपर उन्होंने चला दिया था, क्योंकि गणेश जी को वो जीत नहीं पा रहे थे, तो अब अंतिम था इस शस्त्र का उपयोग किया जाए। और उस शस्त्र का मान रखते हुए कि चूंकि भगवान शिव का वह शस्त्र था, उन्होंने अपने दांत के ऊपर उस शस्त्र को झेला और अपने एक दंत अर्थात बाएं वाले दांत को उन्होंने उससे कटवा लिया था और वही दांत वापस उठाकर उन्होंने परशुराम जी को भेंट कर दिया था। फिर उसी में परशुराम जी ने उन्हें एक दंताय नाम भी प्रदान किया था। तो विघ्नहर्ता और एक दंत जो दो नाम है, वह दो नाम भगवान परशुराम के दिए हुए हैं और उन्हीं की कृपा से आज हम सब कुछ प्राप्त करते हैं इन दो नामों के माध्यम से।
0: बिल्कुल, तभी तो उन्हें कहते हैं दुख हरता सुख करता। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान श्री गणेश हमेशा ही कहते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और इसी तरह की एक कहानी भी है। एक जगह के राजा भगवान शिव और पार्वती को आमंत्रित करने आए थे अपने घर पे भोजन के लिए, और फिर उन्होंने भगवान श्री गणेश को भेजा था शंकर जी ने कि आप जाइए अपने मूषक के साथ और उनके घर पे आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए, और वो पूरा भोजन खा गए थे और उसका पूरा अहंकार जो है वो टूट गया था। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अहंकार की बात हो रही है?
1: अहंकार में देखो, वैसे तो मोनिका भगवान श्री गणेश जी हर तरफ ही साक्षात रूप से हर स्वरूप में विराजमान है, क्योंकि जब उनके 108 हम नाम पढ़ते हैं तो उसमें इन सभी प्रकार का उनका उल्लेख मिल जाता है। जहाँ तक अहंकार का है, जब हम कोई भी साधना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको इस बात का ही आता है कि हमने इतना पैसा खर्च किया, इतने लोगों को बुलाया, इतने दिन मैंने साधना की, 1,00,000 मैंने जाप किए, इतने मैंने लड्डू चढ़ाए, तो ये अहंकार में ही आता है। आप संख्या भी बताएं, साहब मैंने 1,00,000 का अनुष्ठान किया, तो 1,00,000 जो संख्या थी वह भी अहंकार है। इस अहंकार आपके मन में नहीं आए, उसी के लिए भगवान श्री गणेश सबसे पहले विराजमान होते हैं। क्योंकि भगवान श्री गणेश जी के जैसे धूर्माक्ष, जब आपको ही धूर्माक्ष का उन्होंने वध किया था, उसमें भी कहानी है कि जब हम अनुष्ठान करते हैं तो यज्ञ करते हैं, हवन में धुआं बहुत उठता है, कई बार धुआं दूषित हो जाता है यज्ञ, तो उसमें धुआं निकलना शुरू होता है, तो धूर्माक्ष नाम से धुआं नहीं लगता है। दूसरा होता है बंदी राक्षस को भी उन्होंने मारा था, उसमें काराग्रह या अर्थात कोई जैसे बाधा आ रही है तो वह बाधाएं इसमें दूर होती हैं। तीसरा नरांतक, जो मनुष्यों से संबंधित कोई बाधाएं होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री गणेश के जब हम इन नामों का देखते हैं तो उससे ही पड़ जाता है कि कितने लाभ देते हैं। जैसे जम्हा राक्षस को उन्होंने मारा, तो जम्हा राक्षस को मारने का भी यही उल्लेख है कि जम्हाई के माध्यम से भी हम अपने हवन को दूषित कर लेते। जम्हाई आती ना, उबासी जो आना शुरू आती, वह भगवान श्री गणेश की कृपा से दूर होती है। देवांतक, देव दोष के कारण कई बार हवन दूषित हो जाते हैं, तो वह दोष भी नहीं आते। वीर विनायक बोलते हैं, वीर राक्षस को मारा था, तो ब्रह्म राक्षस भी दोष दूर करता है। मयूरेश्वर, जिसमें त्रिसंध्या में कहीं दोष बनता है, तो भगवान श्री गणेश से दूर होता है। कमलासुर, माने धन के लोभ के कारण और उस पैसे से हमने हवन किया, तो वह भी शुद्धि में आता है। तो भगवान श्री गणेश की कृपा से जो दोष हमारे अंदर होते हैं वह दोष सभी दूर होते हैं, और उसके बाद जो हम अनुष्ठान कर रहे होते हैं, हमारा अनुष्ठान ये सफल हो जाता है।
0: बिल्कुल आचार्य जी, हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चर्चा इस कार्यक्रम में बहुत ही आवश्यक है कि भगवान श्री गणेश जी को भोजन करना बहुत ही प्रिय है। तो ये जो 11 दिन के भगवान जी हमारे घर में विराजमान होते हैं, आते हैं, तो ऐसे कौन कौन से खास पकवान है जिनका हम उन्हें भोग लगा सकते हैं?
1: भगवान के भोजन का महत्व जो होता है ना, ये अन्नपूर्णा देवी को खुश करने के लिए होता है। भगवान श्री गणेश जब हमारे यहाँ विराजमान होते हैं, इस समय में जो अन्न वगैरह उगता है, इस अन्न का भगवान को भोग लगाया जाता है। गेहूं है, सही प्रकार के फल हैं, इन फलों का जब हम भगवान श्री गणेश को भोग लगाते हैं, तो ये हमेशा हमारे यहाँ पूरे वर्ष भर अन्नपूर्णा की कृपा इसमें बनी रहती है। भगवान को गोल गोल वस्तुएं पसंद होती हैं, दाल बाटी, ये इस तरीके के उनके होते हैं। फल जो होते हैं उनको सेव फल प्रिय होता है, दूसरा केला उनके लिए प्रिय होता है, नारियल उनके लिए प्रिय होता है, तो उस तरह के जो फल होते हैं इनका भोग लगाया जाता है। पूरी सब्जी का भी इनका विशेष महत्व होता है। खीर का भोग भगवान कृष्ण को बहुत पसंद होता है, अलुए का भोग भगवान गणेश जी को बहुत पसंद होता है, तो इसमें अलुए का भी भोग लगाया जाता है। लोग जो व्रत करते हैं और व्रत के लिए जो सामग्री बनाई जाती है वही भगवान को समर्पित करते हुए ग्रहण करना चाहिए, तो उसमें जो अहम का दोष होता है वह दोष भी इसमें समाप्त होता है। तो जो हम भोजन सामग्री घर में बना रहे हैं, पक्की भोजन सामग्री भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय होती है। रोटी और चावल इसमें शायद नहीं चढ़ाए जाते हैं, चावल यदि चढ़ाते हैं तो फिर उसमें घी और शक्कर, उसमें ये घी या गुड़ उसमें जरूर डाला जाता है, तब भगवान उस चावल को स्वीकार करते हैं।
0: बिल्कुल, और व्रत का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन की चतुर्थी का लोग व्रत रखते हैं, जिस दिन भगवान घर में आते हैं और जिस दिन हम उन्हें विदाई देते हैं उस दिन, दोनों ही दिन का बहुत महत्व रहता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं पूरे 11 दिन का व्रत रखते हैं, तो इस बारे में भी आप कुछ बताएं कि कौन से दिन व्रत रखना चाहिए और कौन से दिन नहीं।
1: आप चाहे एक दिन का व्रत रख सकते हैं, आप चाहे 7 दिन का रख सकते हैं, चाहे 13 दिन का रख सकते हैं, क्योंकि व्रत से आपकी वृत्तियां शुद्ध होती हैं। और वृत्तियां शुद्ध करने के लिए जरूरी नहीं कि आप उपवास ही रखें, भोजन को आप कम कम भी 2-3 बार ले सकते हैं। कई शुगर के मरीज हैं, नहीं रख पाएंगे व्रत, तो ऐसे समय में भोजन को तोड़ तोड़ कर भी किया जा सकता है, सुबह खा लिया फिर दोपहर फिर शाम, इस तरीके से सूक्ष्म भोजन का व्रत होता है। व्रत का मूल सिद्धांत ये है कि जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं वह मंत्र जाप हमारे पूरे होने चाहिए, आप हमारा व्रत पक्का हुआ, या जिस उद्देश्य को हम लेकर भगवान को बिठा रहे हैं वह उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए इस तरह से व्रत किए जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बीमार हैं और व्रत करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है आपको हाइपर एसिडिटी हो जाए, या आपको सिर्फ डिस्क की इसमें शिकायत हो जाए, या बात से संबंधित आपके रोग उभर जाए, क्योंकि भूखे रहने से बात रोग उभरते हैं, ये भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में फिर व्रत करेंगे आपके जरूर फलित होंगे।
0: बिल्कुल, व्रत जरूर फलित होंगे, भगवान का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारी कामना की पूर्ति भी होगी। भगवान का आशीर्वाद हमें हमेशा ही मिलता रहता है। ये विशेष दिन माने जाते हैं, इन दिनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, लेकिन हम नियमित बाकी दिनों में भी यदि भगवान की पूजन आराधना सच्चे हृदय से करते हैं तो भगवान हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करते हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जब हम भगवान जी को, श्री गणेश जी को विदाई देते हैं, विसर्जन करते हैं, उस समय की महत्वता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से उनका विसर्जन करना चाहिए, क्या विधि विधान होता है?
1: इसमें विधि विधान की शुरुआत सबसे पहले होती है जब हम भगवान को 1, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन उस हिसाब से हम लेके आते हैं
0: जी।
1: तो पहले जो मंत्र होते हैं भगवान में, मूर्ति जब हम प्रतिष्ठित करते हैं तो प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं, उनसे भगवान प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। फिर मंत्र जापते हैं कि भगवान अब हमने आपकी सेवा की, सेवा करने में कोई त्रुटि रही हो तो आप हमें उसको क्षमा करें, तो क्षमापन के स्त्रोत होते हैं, क्षमापन मंत्र होते हैं
0: जी।
1: इन मंत्रों के बाद भगवान को वहां से हटाया जाता है। तो ये मंत्र इसलिए बोला जाता है, जब हम पहले आने का मंत्र बोलते हैं भगवान उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जाने का मंत्र बोलते हैं तो वापस वह मूर्ति हो जाती है, फिर उसमें ओरिजिनल स्वरूप उनका नहीं रहता है
0: जी, जी।
1: आप दुकानों की मूर्ति देखेंगे और प्रतिष्ठित मूर्ति देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिष्ठित मूर्ति में कितनी पावर है। और जैसे ही हम आह्वान के बाद विसर्जन का मंत्र बोलते हैं तो मूर्ति से भगवान का स्वरूप जाता है, फिर मूर्ति एक सिंपल जो आपका मेटल है, मिट्टी है, वह कन्वर्ट हो जाती
0: है,
1: धातु बनकर रह जाती है। तो फिर उसके लिए पूजन किया जाता है। इसके पूजन के भी कुछ विशेष विधान होते हैं, जैसे आज आपने देखा होगा लोग पानी में सिरा देते हैं, पानी में सिराने की मूर्ति को कभी भी विधा नहीं रही। आपने भगवान कृष्ण को देखा होगा, उन्होंने कालिया नाग को निपटाया, क्यों? कालिया नाग का जहर था, अर्थात यमुना में जहर फैल रहा था, उसको उन्होंने मारा। नाग के माध्यम से यह दिया है कि जैसे आज कई मलमूत्र मिलते रहते हैं नदियों में, ये भी एक तरह के जहर ही है। आप पेस्टिसाइड डालते हैं, ये भी एक तरह का जहर है। मूर्तियां गलत हैं, ये भी एक तरह का जहर ही है। इन जहर की मुक्ति के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लीला की। चीर हरण के माध्यम से ये बताया कि वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए आपको किसी भी नदी में पूर्ण रूप से उतर कर निर्वस्त रहकर स्नान नहीं करना चाहिए, नदी का आचमन करना चाहिए, लोटे से स्नान करना चाहिए, साबुन वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण की लीला में तो सबसे पहले ही उल्लेख किया था कि पानी को आप साफ रखें, नदी को आप प्रदूषण से मुक्त रखें। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, विसर्जन के समय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भगवान हमारे यहाँ से निकल लिए हैं तो अब उनमें वो स्वरूप नहीं रहा, सिर्फ एक मिट्टी या एक जो भी मोटल रहा वह रह जाता है, उसकी नदी किनारे पूजन करते हैं, नदी के पानी से उसको स्नान किया जाता है, वो किसी भी पेड़ की जड़ में जाकर उसको रख दिया जाता है। तो मेटल की मूर्ति का तो हम घर में वापस उपयोग कर लेते हैं, लेकिन यदि हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो उसको नदी किनारे पूजन करते हैं, और उस पूजन को करने के बाद वहीं पेड़ के नीचे रख देते हैं, तो हमारा सारा काम सही होता है। यदि वह मूर्ति पानी में डाल दी जाती है तो वरुण देवता का हमें श्राप लग जाता है, तो जल से संबंधित जलोदर जो रोग होते हैं वह रोग हमें हो जाते हैं, अस्थमा की शिकायत हमें बढ़ जाती है, इन्फेक्शन हमें होने लग जाते हैं, महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके के जो जलोदर रोग होते हैं वह रोग हमें बढ़ते हैं, इसलिए हमें पानी का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका अपमान ना हो किसी एक के सम्मान के चक्कर में। तो ये इसकी थोड़ी सी विधि होती है।
0: बिल्कुल, विधि विधान के साथ यदि हम हर कार्य को करते हैं तो हमें सफलता जरूर ही प्राप्त होती है। आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। श्रोताओं, जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहेंगे, यदि आप भगवान गणपति का पूजन सच्चे हृदय से करेंगे, सच्ची मनोकामनाओं के साथ करेंगे, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी और कार्य सिद्धि भी अवश्य ही होगी। बस यही कहेंगे, गणपति बप्पा मोरिया।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक, दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
2: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक। आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अमर कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।
1: हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा समय बीतने के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने कम लिखा किंतु इतना उत्कृष्ट लिखा कि उनका नाम अमर हो गया। ऐसे ही महान साहित्यकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे हिंदी की आधुनिक कहानी के अग्रदूत में गिने जाते हैं। आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हिंदी के साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की।
0: गुलेरी जी बहुभाषाविद, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, निबंधकार, आलोचक, संपादक और विद्वान शिक्षक भी थे। उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, बंगला और मराठी जैसी अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों और भारतीय सभ्यता का गंभीर अध्ययन किया। उनका मानना था कि अपने इतिहास को जाने बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
1: हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के वासी ज्योतिर्विद महा महोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर को जन्म दिया। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इस सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात किया। जब गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहां तक कहना था कि वे 5 वर्ष में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। चंद्रधर बीए की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे।
0: सन 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में बड़ा ही मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का भी वे सख्ती से अनुपालन करते थे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे।
1: कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला की जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक में अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
0: हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
1: अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे।
0: पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं, जो मात्र एक कहानी उसने कहा था कि बल पर हिंदी साहित्य के संपर्क में आने वाली पीढ़ियों के स्मृति पटल पर छाए रहे हैं। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी इनकी ये कालजयी रचना निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और त्याग की अमर गाथा है। लेकिन गुलेरी जी ने अपने पूरे साहित्यिक जीवन में केवल एक कहानी नहीं लिखी थी। 1911 ईस्वी में उनकी दो अन्य कहानियां भी प्रकाशित हुई थीं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये दोनों कहानियां भी अपने समय की अद्भुत कहानियां थीं।
1: इन तीनों कहानियों के पात्र साधारण हैं। इन साधारण पात्रों को लेकर गुलेरी जी ने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए, वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता क्षण क्षण नए सौंदर्य के प्रकट करने में है। मौलिकता ही वह तत्व है जो किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है। गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन उत्कृष्ट कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यह यश ध्रुव तारे की तरह सदा अटल रहेगा। जहां अनेक लेखक लंबी लंबी रचनाएं लिख रहे थे, वहीं गुलेरी जी ने कम लिखकर भी अमर स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रत्येक रचना गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्तर की है।
0: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य सर्वोपरि है। जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने मानवता को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बना सके।
1: हिंदी के अनन्य आराधक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी अमर कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा जी का साहित्यिक जीवन 20वीं शताब्दी के उन्मेष से प्रारंभ होता है। यह समय पुरातत्व इतिहास तथा भाषा विज्ञान संबंधी अनुसंधानों का था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त

0: विषयों पर सामान्य भाषा में निबंध लिखे, किंतु भाषा प्रौढ़ परिमार्जित एवं विषय अनुकूल है। कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाऊ इनके बहुचर्चित निबंध हैं। इसके अलावा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निबंधों की बात करें तो शेषुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म और आँख। कविताओं की बात करें तो एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वेनाक, बर्न, अहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत और ईश्वर से प्रार्थना। कहानी संग्रह की बात करें तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
1: उस युग के कई अन्य निबंधकारों की तरह गुलेरी जी के लेखन में भी मस्ती तथा विनोद भाव की एक अंतरधारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। हिंदी कहानी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हिंदी की पहली कहानी लिखी गई। दूसरे दशक में कई प्रतिष्ठित कहानीकारों का उदय हुआ। इस दूसरे दशक में ही ऐसी कई कहानियां भी सामने आई जो हिंदी की अमर कहानियां मानी जाती हैं। इसी दूसरे दशक की उपलब्धि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी कहानियां हैं।
0: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानीकार गुलेरी जी के संदर्भ में जो कहा है वो सर्वथा उपयुक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, पर इन स्वल्प रचनाओं के बल पर वे साहित्य में अपूर्व गौरव के अधिकारी हुए हैं।
1: यूं तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, लेकिन निबंध विधा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले गुलेरी जी हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार भी हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित हिंदी की सर्वकालिक श्रेष्ठतम कहानियों में से एक उसने कहा था है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दो अन्य कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये कहानियां भी उल्लेखनीय हैं। इस परियोजना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में कथ्य और शिल्प एक समीक्षात्मक अध्ययन। इस परियोजना के अंतर्गत उनके द्वारा रचित उपर्युक्त तीन कहानियों के आधार पर साहित्य की इस सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय विधा के प्रणेता के रूप में गुलेरी जी की विशिष्टताओं को रेखांकित करना इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।
0: गुलेरी जी की कहानियां शाश्वत नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से अद्वितीय हैं। उसने कहा था का प्रकाशन आज से एक शताब्दी पूर्व हुआ था। अपने युग के प्राय समस्त प्रतिष्ठित आदर्शों, प्रेम और प्रेमी का आदर्श, युद्ध और वीरता का आदर्श, देशभक्ति और राजभक्ति का आदर्श, सेवा, त्याग और आत्म बलिदान का आदर्श, इन सभी को गुलेरी जी ने अत्यंत कुशलता के साथ इस कालजयी रत्ना में चित्रांकित किया है। आदर्शवाद की दृष्टि से उनकी अन्य दोनों कहानियां भी उल्लेखनीय हैं। ये आदर्श आज के युवाओं का मार्गदर्शन करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। इन रचनाओं के पुनरावलोकन द्वारा युवा पीढ़ी की मानसिकता को सकारात्मक दिशा में विकसित करना इस शोध पत्र का विशिष्ट उद्देश्य है।
1: परियोजना के लिए हमने शोध प्रविधि की द्वितीयक पद्धति का प्रयोग किया है। तथ्यों के संग्रह के लिए अध्याय रचनाओं पर किए गए पूर्व शोध ग्रंथों, संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं एवं इंटरनेट की मदद ली है। गुलेरी जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं सशक्त कथाकार थे, यद्यपि उनकी प्रसिद्धि का आधार उसने कहा था है, लेकिन उन्होंने दो और कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
0: सुखमय जीवन ये शीर्षक कहानी 1911 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी छद्म लेखन को आधार बनाकर लिखी गई एक रोचक कथा है। मात्र किताबी ज्ञान के बल पर जीवन के अनुभवों की आंच में तपे बिना लेखक बनने और हर पुस्तक को बिना विवेचन ब्रह्म वाक्य की तरह लेने वालों पर इस कहानी में सशक्त व्यंग किया गया है।
1: जयदेव शरण वर्मा ग्रेजुएट होने के बाद कुछ पुस्तकों से ज्ञान संग्रह करके सुखी वैवाहिक जीवन पर एक पुस्तक लिखते हैं। वे स्वयं अविवाहित हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में उनका अनुभव नगण्य है। समालोचकों द्वारा कहानी की कटु आलोचना होती है और पुस्तक की मात्र 17 प्रतियां बिकती हैं। गुलाब राय वर्मा

0: नाम के एक जागरूक ब्रह्म समाजी तथा उनकी बेटी कमला को यह पुस्तक बहुत पसंद आती है। उन्हें लगता है इस पुस्तक का लेखक बहुत ही अनुभवी होगा, जबकि गुलाब राय की पत्नी का विचार है कि पुस्तक सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी गई है। संयोग से जयदेव शरण वर्मा और कमला की मुलाकात होती है। संक्षिप्त परिचय के बाद एक दिन जयदेव कमला के समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं। कमला और उसके पिता उन्हें खूब फटकारते हैं, लेकिन जब जयदेव उन्हें बताता है कि वह अविवाहित है और पुस्तक उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी है, तो कमला और बाबू गुलाब राय पानी पानी हो जाते हैं और जयदेव के साथ मिलकर कमला का विवाह तय हो जाता है।
1: यह कहानी प्रारंभ से अंत तक छद्म लेखकों और छद्म पाठकों पर तीखा प्रहार करती है। नाटकीय स्थिति के द्वारा कहानी में व्यंग की अभिव्यंजना की गई है और संवाद काफी चुटीले हैं। कुछ समीक्षकों ने इस कहानी को अति नाटकीयता और असंभाव्यता के कारण सामान्य कोटि का माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सुखमय जीवन में तो कहानी अच्छी तरह बन भी नहीं पाई, उसकी चरम घटना में विस्मय का अत्यंत अस्वाभाविक और अतिरंजित प्रयोग है, किंतु यदि इस कहानी को व्यंग रचना के रूप में देखा जाए तो अस्वाभाविकता और अतिरंजन स्वाभाविक और अनिवार्य तत्व बन जाते हैं।
0: बुद्धू का कांटा का प्रकाशन भी 1911 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी लेखक की व्यंग दृष्टि स्पष्ट है। यह कहानी एक प्रेम कथा है। इस कहानी में लेखक ने अपने आदर्शवादी चरित्रों की रचना की। कहानी का ढांचा उपन्यास का सा है, इसलिए वे रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी के पिता बाबूजी और इलाही का विस्तृत शब्द चित्र खींचते हैं। इस कहानी का एक अंश पनघट शीर्षक से अलग छपा बताया जाता है। रघुनाथ प्रयाग से पढ़कर आया है और जो गांव के तौर तरीकों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। भागवंती कुएं में पानी भरने वाली महिलाओं के दल में एक ही हंसोड़, चुलबुली और बड़बोली किशोरी है। वह रघुनाथ के बुद्धूपन पर फप्तियां कसती है, क्योंकि वह कुएं से पानी का लोटा भी नहीं खींच सकता और औरतों से बात करते करते पसीना पसीना होने लगता है। मजाक और फप्तियां सीमा से कुछ और आगे बढ़ जाती हैं और रघुनाथ बुरी तरह परास्त होता है।
1: फिर वही लड़की नदी किनारे उसे मिलती है और उसकी हर बात की नकल उतारती है। इस पर वह उसे पकड़ने के लिए उठता है और पैर रपट जाने से नदी में गिर पड़ता है। अब भागवंती उसे डूबने से बचाती है। इस भागदौड़ में भागवंती के पैर में कांटा चुभता है, जिसे रघुनाथ निकालता है और अपनी जेब में रख लेता है। संयोग से इसी लड़की के साथ माता पिता द्वारा रघुनाथ का संबंध निश्चित किया गया होता है। विवाह के फेरों के बाद जब वे दुशाले की ओट में एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों हतप्रभ रह जाते हैं। बाद में मिलन के समय भागवंती अपनी उद्दंडता के लिए पति रघुनाथ से क्षमा मांगती है और रघुनाथ रखे हुए कांटे को दिखाकर अपनी मनोभावना को प्रकट करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह कहानी एक प्रेम कथा बन जाती है।
0: 1915 में प्रकाशित उसने कहा था, हिंदी की सर्वाधिक श्रेष्ठतम कहानी है। हिंदी में कहानी विधा का स्वतंत्र विकास इस कहानी से माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्य, त्याग, मानवता और वचन पालन की अनुपम कथा है। कहानी में प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ है। गुलेरी जी तांगे वाले के संवाद में तथा सिपाहियों के वार्तालाप में हास्य, विनोद और जीवन की ताजगी पर उतना ही बल देते हैं जितना प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति पर।
1: यथार्थ चित्रण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सरल भाषा, प्रभावशाली संवाद, मानवीय संवेदना, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट कथानक, इन्हीं गुणों के कारण ये कहानी आज भी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। अभी तक उसने कहा था को लहना सिंह के ही प्रेम और बलिदान त्याग की कहानी के रूप में देखा जाता रहा है। एक पक्षी प्रेम की दृष्टि से पाठ्यक्रमों में इसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसे सूबेदारनी के उदात्त गंभीर प्यार और अडिग विश्वास की कहानी के रूप में भी देखा गया है। इसी आधार पर इसका नामकरण भी हुआ है।
0: यह कहानी कालजयी रचना सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि इसी एक कहानी के बल पर गुलेरी जी एक शताब्दी से हिंदी जगत पर छाए रहे। विमल राय द्वारा इस कहानी पर फिल्म बनाए जाने के बाद इसकी लोकप्रियता में और भी विस्तार हुआ। यह कहानी प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति की है। आध्यात्मिक इस अर्थ में कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध की ऊष्मा नहीं है, बल्कि प्रेम एक ज्योति की तरह दोनों के हृदय में विद्यमान रहता है और वह अनुभूति इतनी सुखद, इतनी निर्मल है कि युद्ध की विभीषिका भी उसे भंग नहीं कर पाती।
1: अपनी पहली दो कहानियों में गुलेरी जी ने नायक और नायिका के बीच प्रेम की उत्पत्ति की सूचना स्पष्ट शब्दों में दे दी है, किंतु तीसरी कहानी में केवल संकेत दिए हैं, बाकी पाठक के अनुमान के लिए छोड़ दिया गया है। श्रेष्ठ कला होती भी सांकेतिकता में ही है। पहली दो कहानियों में घटनाओं को सीधे सादे कालानुक्रम में रखा गया है। उसने कहा था, शीर्षक से ही पाठक के मन में जिज्ञासा क्रमशः तीव्रतर होती जाती है, किंतु इसका समाधान कहानी के अंत में जाकर होता है।
0: अपनी तीन कहानियों के आधार पर ही गुलेरी जी ने हिंदी के विशिष्ट कहानीकार के रूप में ख्याति पाई। पुरानी पीढ़ी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, अमर नाथ झा, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि से लेकर नई पीढ़ी के समर्थ आलोचकों तक उन्हें श्रेष्ठ कहानीकार स्वीकार किया है। जिस प्रकार गुलेरी जी की कहानियों में उनके अनुभव और जीवन दृष्टि में क्रमशः परिपक्वता आई है, उसी प्रकार उनकी कहानी कला में भी। उनकी कहानियों में संयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।
1: अपनी तीनों कहानियों में उन्होंने विकास के तीन सोपान पार किए हैं और हर सोपान पर इनकी कहानी कला परिपक्व होती गई। कथाकार गुलेरी जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कहानी, उसने कहा था कि लोकप्रियता का सिक्का आज भी जमा हुआ है। गुलेरी जी विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता की झलक उनकी कहानियों में साफ दिखाई देती है, लेकिन इस विद्वत्ता को उन्होंने ना तो अपने ऊपर हावी होने दिया ना ही अपनी कहानियों के ऊपर। इसका कारण यह था कि वे यथार्थ जीवन और उसके अनुभव से निर्मित हुई हैं। उनकी कहानियों में जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित जो सकारात्मक कथन हमें मिलते हैं, वे उपदेश नहीं हैं, ये जीवन के अनुभव हैं।
0: गुलेरी जी ने न केवल तीन कहानियां ही लिखी, बल्कि 1900 से 1922 तक प्रचुर साहित्य सृजन किया तथा अनेक हिंदी लेखकों का मार्गदर्शन भी किया, लेकिन अपनी केवल एक कहानी उसने कहा था कि बल पर हिंदी साहित्यकाश के नक्षत्र बन गए। एक सर्वेक्षण के अनुसार उसने कहा था, न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल है। हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गुलेरी जी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। आखिर ऐसा क्या था इस कहानी में जिसने इसके साथ साथ इसके लेखक को भी अमर कर दिया?
1: यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही प्रेम दिवस, ना गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और ना ही वादे किए जाने का, लेकिन इसके लिखे जाने के 100 साल बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो अनेक लोगों की स्मृति में सबसे पहले इसी कहानी का नाम याद आता है।
0: किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए अर्थ और संदर्भ खुले, हर बार यह लगे कि कुछ और समझने को शेष रह गया है। उसने कहा था, इस कसौटी पर 100% खरी उतरती है।
1: सामान्य तौर पर देखा जाए तो तीन विशेषताएं हैं, इसका शीर्षक, फलक और चरित्रों का गठन, जो उसने कहा था को अमर और कालजयी बनाने में अपनी अपनी तरह से योगदान देती है। इसके शीर्षक के साथ ही इसे जानने समझने का रोमांच भरने वाला रहस्य जुड़ा हुआ था। शीर्षक सीधे सीधे पाठकों को खींचता है और उनसे पुकार कर कहता है कि पढ़ो, किसने कहा था, किससे कहा था, कब कहा था, क्या कहा था। शीर्षक में वह नाटकीयता है जो पूरे संयोजन को मंच बना देती है।
0: युद्ध और प्रेम की इस कहानी के दो सिरे हैं। यह कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। वहां के भारतीय सैनिकों, उनकी चूहलबाजियों, अपने वतन की याद और स्मृतियों के बीच।
1: 5 खंडों और 25 वर्षों के लंबे अंतराल के युद्ध में सिमटती ये कहानी विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास सी है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के 3 मूल उद्देश्य से जुड़ती हुई उसे अपने विषय बनाती हुई शाब्दिक विवरणों से और अधिक मनोविज्ञान को पढ़ते पकड़ते और उसके चित्रण में रमती हुई यह कहानी कहीं भी अपने विषय से भटकती नहीं है। सोच कर देखें तो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं और उसके मूल में प्रेम ही है। कर्तव्य तो प्रेम का ही एक रूप होता है और देश प्रेम भी तो बड़े और वृहद अर्थों में प्रेम होता है। इसीलिए ये कहानी हर अर्थ में प्रेम कहानी है।
0: अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है, एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर्मन में फैलकर उसके जीवन को किस निर्णायक बिंदु पर ले जा सकती है, प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितने उच्च भूमि पर पहुंचा सकती है, यह इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना ऋजु मार्ग पर नहीं चलती, यह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पर नहीं मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है।
1: यही इस कहानी की अनन्य विशेषता और इसकी शाश्वत लोकप्रियता का कारण है। इसी संदर्भ में विजेंद्र स्नातक ने लिखा है, रचना शिल्प की दृष्टि से यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी।
0: जैनेन्द्र ने एक बार गुलेरी के विषय में कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान थे, उनकी प्रतिभा बहुर्मुखी थी, उनमें गजब की जिंदा दिली थी और उनकी बोली भी अनोखी थी। गुलेरी जी न केवल विद्वत्ता में अपने समकालीन साहित्यकारों से ऊंचे ठहरते थे, अपितु एक दृष्टि से वह प्रेमचंद से भी ऊंचे साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने समसामायिक स्थितियों का चित्रण तो बहुत बढ़िया किया है, पर व्यक्ति मानस के चितेरे के रूप में गुलेरी का जोड़ नहीं है।
1: गुलेरी जी की तीनों कहानियों के पात्र साधारण हैं, लेकिन इन साधारण पात्रों को लेकर उन्होंने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता ही है क्षण क्षण नए सौंदर्य को प्रकट करने में, और जो तत्व किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है वो है मौलिकता।
0: गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर अपनी इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। ये कहानियां हिंदी कथा साहित्य की अनमोल विरासत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन कालजयी कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यश ध्रुव तारे की तरह अटल रहेगा।
1: खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मान्यता वाले युग में गुलेरी जी खेल को शिक्षा का सशक्त माध्यम मानते थे। बाल विवाह के विरोध और स्त्री शिक्षा के समर्थन के साथ ही आज से 100 साल पहले उन्होंने बालक बालिकाओं के स्वस्थ चारित्र के विकास के लिए सहशिक्षा को आवश्यक माना था। ये सब आज हम शहरी जनों को इतिहास के रोचक प्रसंग लग सकते हैं, किंतु पूरे देश के संदर्भ में यहाँ फैले अशिक्षा और अंधविश्वास के माहौल में गुलेरी जी की बातें आज भी संगत और विचारणीय है। भारतवासियों की कमजोरियों का वे लगातार जिक्र करते रहते थे, विशेषकर सामाजिक राजनैतिक संदर्भों में। हमारे अधःपतन का एक कारण आपसी फूट है। जाति व्यवस्था भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। छुआछूत को वे सनातन धर्म के विरुद्ध मानते थे। उनके अनुसार उदारता, सौहार्द और मानवतावाद ही धर्म के प्राण तत्व होते हैं।
0: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान, ईमानदारी, संवेदनशीलता और उत्कृष्ट कर्म ही किसी व्यक्ति को अमर बनाते हैं। हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।
1: 12 सितंबर 1922 को काशी यानी वाराणसी में उनका निधन हो गया। वे मात्र 39 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, किंतु अपने अल्प जीवन में उन्होंने जो साहित्यिक विरासत छोड़ी वह अमूल्य है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य में महान बनने के लिए रचनाओं की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आज भी उनका नाम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में आदरपूर्वक लिया जाता है।
0: चंद्रधर शर्मा गुलेरी भारतीय साहित्य के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनकी रचनाएं समय की कसौटी पर सदैव खरी उतरी हैं। वे केवल कथाकार ही नहीं बल्कि महान विद्वान, इतिहासकार, भाषाविद और संस्कृति के संवाहक थे। उनकी अमर कहानी उसने कहा था आज भी पाठकों के हृदय को स्पर्श करती है और त्याग, प्रेम, वचन पालन तथा मानवता का संदेश देती है।
1: शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सरस्वती पुत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन विनीता जैन, वाचक स्वर मैं नूपुर शर्मा
0: और मैं वेणु बालन,
1: प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपको हमने बताया कि स्वामी जी अमेरिका से पेरिस होकर लंदन गए थे। लंदन में भी अमेरिका की तरह उनका भव्य स्वागत हुआ। लगभग एक महीने की अवधि में ही उन्होंने लंदन में यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली थी। इसी समय एक भाषण सभा में कुमारी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता से स्वामी जी का परिचय हुआ। ये असाधारण विदुषी महिला एक स्कूल में अध्यापिका थीं और विद्वान समाज में उनकी बहुत ख्याति व प्रतिष्ठा थी। कुमारी नोबल स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी सहसा उनकी शिष्या नहीं बनी थीं। प्रतिदिन वे स्वामी जी के भाषण व प्रश्नोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से आती थीं और चुपचाप इस अद्भुत सन्यासी को देखा करती थीं। अंत में उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण करने का संकल्प लिया।
1: स्वामी जी ने अमेरिका की तरह इंग्लैंड में भी प्रचार कार्य में यथेष्ट सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड छोड़कर पुनः अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपनी एक शिष्या को लिखा था,
2: इंग्लैंड में मेरे प्रचार कार्य को आशातीत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और ये सुनकर कि अगले सप्ताह मैं फिर अमेरिका जाऊंगा, कई व्यक्ति बड़े दुखी हुए। कई लोग तो इस प्रकार की आशंका प्रकट कर रही हैं कि मेरे चले जाते ही जो कार्य हुआ है उसका परिणाम अनेकांश में नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। मैं मनुष्य या किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता, प्रभु ही मेरी एकमात्र शरण है। वे ही मुझे यंत्र बनाकर कर्म करा रहे हैं।
1: 18 जनवरी सन 1896 को इंडियन मिरर नामक पत्रिका ने स्वामी जी के प्रचार कार्य के संबंध में लिखा था,
3: हमें ये लिखते हुए बड़ा आनंद होता है कि स्वामी विवेकानंद ने लंदन के अनेक विशिष्ट भद्र पुरुषों व महिलाओं की दृष्टि आकर्षित की है। उनकी हिंदू दर्शन व योग संबंधी कक्षाओं में अनेक उत्साही व श्रद्धा युक्त श्रोतागण उपस्थित होते हैं।
1: दूसरे पत्रकार ने लिखा,
4: लंदन नगर की कुछ ऐश्वर्यशालिनी विलासिनी उच्च घरानों की महिलाएं कुर्सियों के अभाव में फर्श पर पैर मोड़कर बैठ गुरु भक्त भारतीय शिष्यों की तरह भक्ति के साथ स्वामी जी के उपदेश सुन रही हैं। ये वास्तव में ही विरल दृश्य है।
1: तीसरे पत्रकार ने लिखा,
5: कैथरस विल्बरफोर्स हैस आदि विशिष्ट धर्म प्रचारकों ने भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ ग्रहण किया है। प्रथमोक्त महोदय के निवास स्थान पर स्वामी जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक पारिवारिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें लंदन के अनेक प्रतिष्ठित भद्र महोदय व महिलाएं उपस्थित थीं। स्वामी जी ने अंग्रेजी भाषी जनता के दिल में भारतवर्ष के प्रति जिस प्रेम व सहानुभूति को जागृत किया है, वो अवश्य ही भारतवर्ष की उन्नति की सहायक शक्तियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगी।
0: लंदन में रहते समय कई बार उन्हें आलोचना भी सुननी पड़ती थी, परंतु अगर कोई भारत की निंदा करता तो वे सहन नहीं करते थे। एक दिन सभा के बीच में स्वामी जी भारत के गौरव का वर्णन कर रहे थे। इसी समय एक समालोचक ने प्रश्न किया,
6: भारत के हिंदुओं ने क्या किया है? वे आज तक किसी जाति पर विजय प्राप्त नहीं कर सके।
2: नहीं कर सके नहीं, कहिए कि उन्होंने की नहीं। और यही हिंदू जाति का गौरव है कि उसने कभी दूसरी जाति के रक्त से पृथ्वी को रंजित नहीं किया। वे दूसरों के देश पर अधिकार क्यों करेंगे? तुच्छ धन की लालसा से भगवान ने हमेशा से भारत को दाता के महिमामय आसन पर प्रतिष्ठित किया है। भारतवंशी जगत के धर्मगुरु रहे हैं। वे दूसरे के धन को लूटने वाले रक्त पिपासु दस्यु न थे। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के गौरव से गर्व का अनुभव करता हूँ।
6: आपके पूर्वज यदि मानव समाज को धर्म दान देने के लिए इतने व्यग्र थे, तो वे इस देश में धर्म प्रचार करने के लिए क्यों ना आए?
2: उस समय तुम्हारे पूर्वज तो जंगली बर्बर थे। पत्तों के हरे रंग से अपने उलंग देहों को रंजित करके पर्वत की गुफाओं में निवास करते थे। क्या वे अरण्य में धर्म प्रचार करने आते?
6: स्वामी जी, आप तो ईसाई है नहीं, ईसाई धर्म के आदर्शों को आप क्या समझेंगे?
2: वे प्राच्य देशीय तथा सर्वत्यागी सन्यासी थे। मैं भी प्राच्य देशीय सन्यासी हूँ। मैं समझता हूँ पाश्चात्य जगत अभी उन्हें पहचान नहीं सका है, उनके प्रचारित धर्म को भली भांति समझ नहीं सका है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाओ तुम अपना सब कुछ बांट दो और उसके बाद आओ मेरा अनुसरण करो? तुम्हारे देश के कितने विलासी लोग ईसा की ये उक्ति कि धनी व्यक्ति के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने की तुलना में ऊंट को सुई के छेद से निकलना अधिक सरल है को सत्य मानकर सर्वत्यागी हुए हैं।
0: आलोचक चुप हो जाते। जब स्वामी जी इंग्लैंड में अपने प्रचार कार्य में व्यस्त थे तभी उनके पास अमेरिका से भक्तों तथा शिष्यों के बार बार लौटने के लिए अनुरोध पत्र आने लगे। इधर उनके मित्र और शिष्यगण लंदन में ही रह जाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगे। अतः ग्रीष्म काल में फिर लंदन लौट आने का आश्वासन देकर उन्होंने अमेरिका जाना ही उचित समझा। इसी बीच बोस्टन की एक धनी महिला ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का सारा व्यय उठाने का वचन देकर उन्हें एक पत्र लिखा जिससे स्वामी जी अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए।
1: इंग्लैंड की शिष्य मंडली को एक समिति का रूप देकर उन्हें गीता तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों की नियमित चर्चा करने का उपदेश देकर स्वामी जी अमेरिका के लिए रवाना हो गए।
0: स्वामी जी की अनुपस्थिति में अमेरिका में स्वामी कृपानंद, अभयानंद तथा भगिनी हरिदासी यानी कुमारी वाल्डो ने उत्साह से प्रचार कार्य चलाया था। न्यूयॉर्क के अलावा बफेलो और डिट्रॉयट नगर में दो प्रचार केंद्र की स्थापना हुई थी। 6 दिसंबर को स्वामी जी लंदन से न्यूयॉर्क आए। बोस्टन के भक्त महिला की सहायता से 29 नंबर स्ट्रीट में दो बड़े कमरे किराए पर लिए गए। स्वामी जी कृपानंद के साथ वहां रहते थे। दोनों कमरों में 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। यहां पर दिए गए व्याख्यानों का संकलन कर कर्म योग नामक भाषणों की पुस्तक प्रकाशित हुई।
1: शिष्य गणों ने उनके भाषणों को लिपिबद्ध करने के अथक प्रयास किए। फिर इंग्लैंड के जे गुडविन न्यूयॉर्क आए और ये दायित्व अपने कंधों पर लिया। वे स्वामी जी के साथ परछाई की भांति जुड़े रहे, हर जगह जाते रहे और भाषणों को लिपिबद्ध किया। बाद में उन्होंने शिष्यत्व भी ले लिया था। राजयोग पुस्तक के अलावा और सभी भाषणों के संकलन गुडविन महोदय के परिश्रम का फल है।
0: अमेरिका के प्रसिद्ध वक्ता श्री रॉबर्ट इंग्रसोल जैसे स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति भी स्वामी जी के अभिन्न मित्र बन गए थे। परंतु पहले उन दोनों में काफी मतभेद थे। फिर यह मित्रता कैसे हुई तो सुनिए। दर्शन व साहित्य में प्रवीण होते हुए भी श्री इंग्रसोल संदेहवादी व भोगवादी थे। धर्म, ईश्वर, उपासना आदि विषयों का वे सदैव ही उपहास करते थे। परंतु वे इतने लोकप्रिय वक्ता थे कि एकमात्र भाषण देकर ही लाखों रुपए कमा लेते थे। उधर दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद कठोर सन्यासी, प्रत्येक धर्म के समर्थक, वेदांत दर्शन के प्रचारक थे। इन दोनों में मेल मिलाप वास्तव में आश्चर्यजनक था।
1: स्वामी जी के स्पष्ट, सरल परंतु स्नेहपूर्ण भावों ने ही इंग्रसोल के दृढ़ हृदय पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतों की विभिन्नता होते हुए भी उस समय के अमेरिका के दो प्रसिद्ध वक्ताओं की मित्रता का ये दृश्य वास्तव में बड़ा मधुर था।

0: न्यूयॉर्क आकर रंग भेद के कारण उपयुक्त मोहल्ले में उचित मकान या परिवेश नहीं मिला था। एक दो दिन बाद उन्होंने कुमारी वाल्डो से कहा,
1: यहाँ का खाना बड़ा गंदा दीख पड़ता है, क्या तुम मेरे लिए पका सकोगी?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी मकान मालकिन से मिलकर रसोई में खाना पकाने की अनुमति लेकर आती हूँ।
1: और बर्तन भांडे?
2: आप चिंता ना करें, वो सब मैं घर से ले आऊंगी।
1: तुम्हारा घर क्या पास ही है?
2: नहीं स्वामी जी, पास तो नहीं है, वो ब्रुकलिन के दूसरी छोर पर है। पर आप चिंता ना करें, मैं सुबह 8 बजे तैयार होकर यहाँ 10 बजे तक आ जाऊंगी और आपका खाना समय पर दे दिया करूंगी।
1: तुम अकेले ही तकलीफ क्यों करोगी? सप्ताह के अंत में 2 दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, वहीं दोनों मिलकर खाना पका लेंगे, ठीक है?
0: कुमारी वाल्डो के साधारण से घर की शांति और स्वतंत्रता के बीच स्वामी जी को बड़ा आराम मिलता था। वे वहाँ नए नए प्रकार के भारतीय तथा पाश्चात्य व्यंजन बनाया करते, बहुत खुश नजर आते थे वहाँ। कुमारी वाल्डो ने संस्मरण में लिखा है,
2: इतने घनिष्ठ मेल जोल के बावजूद मेरे मन में एक बार भी संसार त्याग करने की बात नहीं उठी। यही बड़े आश्चर्य की बात है। उनके साथ भारत जाने के बारे में भी मैंने कभी गंभीरता से नहीं सोचा। मुझे लगता कि मेरा स्थान अमेरिका ही है, तथापि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं उनके लिए नहीं कर पाती। जब वे पहली बार न्यूयॉर्क में आए तब वे सर्वत्र ही अपने नारंगी रंग के वस्त्र पहने रहना चाहते थे। ब्रॉडवे पर ऐसे अग्नि के समान भड़कीले कोट पहनकर चलने के लिए बड़े साहस की जरूरत पड़ती थी। स्वामी जी, जब किसी की भी परवाह किए बिना राजोचित मुद्रा में लंबे लंबे डग भरते मेरे आगे चलते और मैं हाफते हुए उनके साथ चलने का प्रयास करती, उस समय सभी लोगों का ध्यान हमारी ओर खिंच जाता और हर व्यक्ति पूछता, कौन है ये लोग? बाद में मैंने उन्हें समझा बुझाकर और भी हल्के रंग का कोट उपयोग करने को राजी कर लिया था।
3: एक दिन स्वामी जी ने वाल्डो की आंखों में आंसू देखकर पूछा,
1: क्या बात है एलन, कुछ हुआ है क्या?
2: क्योंकि जब दूसरे लोग आपको नाराज कर देते हैं तो आप आकर मुझे ही डांटते हैं।
1: देखो, मैं उन लोगों को ठीक से जानता नहीं कि उन्हें डांट सकूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। यदि अपने लोगों को भी ना डांट सकूं तो फिर डांटने के लिए और किसके पास जाऊंगा। चलो आंसू पोंछ डालो, अब तुम्हें नहीं डांटूंगा।
3: वाल्डो के आंसू सूख गए। इसके बाद से वे डांट फटकार का इंतजार करती थीं, क्योंकि वे समझ गई थीं कि यही स्वामी जी की आत्मीयता का द्योतक है। इसी तरह की एक घटना के बारे में रोमा रोला महोदय ने भी लिखा है। वो घटना भी कुमारी वाल्डो से ही संबंधित है। उन्होंने लिखा,
4: धर्माचार्यों के बारे में कुमारी वाल्डो को काफी अनुभव था। अपने दीर्घकालीन ज्ञानान्वेषण के दौरान उन्होंने अनेक शिक्षकों के चरण तले आश्रय लिया था, परंतु 2-4 दिन पहले या बाद में देखती कि सभी के स्वभाव में दोष है। अतः उन्हें सदा भय लगा रहता था कि कहीं इन हिंदू सन्यासी के स्वभाव में भी वैसा ही कोई दोष ना दिख जाए। ऐसे दोषों के लक्षण देखने के लिए वे बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी और वे लक्षण उनकी निगाह में आ भी गए। उस दिन स्वामी जी तथा वे न्यूयॉर्क के एक बैठक खाने में उपस्थित थे। आज के न्यूयॉर्क के साथ स्वामी जी के काल के न्यूयॉर्क का कोई साम्य न था। उन दिनों वहां सड़क के दोनों ओर बादामी रंग के पत्थरों से निर्मित एक ही प्रकार के मकानों की कतारें थी। मकानों के रूप रंग में इतनी समानता थी कि एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार ने प्रश्न किया, आप लोग कैसे समझ पाते हैं कि हम अपने ही घर में आए हैं? गलती से पड़ोसी के घर में भी तो प्रविष्ट हो जाने की संभावना है। इनमें से प्रत्येक संकरे परंतु लंबे मकान की दूसरी मंजिल पर एक लंबा और संकरा बैठक खाना होता था। इसके एक ओर ऊंचा मुड़ने वाला दरवाजा, दूसरे छोर पर 2 बड़ी खिड़कियां और दोनों के बीच में फर्श से छत तक पहुंचता हुआ एक बड़ा दर्पण लगा रहता था। इस दर्पण की ओर स्वामी जी का आकर्षण दिख पड़ा। वे बारंबार उसके सामने खड़े होकर बड़े ध्यानपूर्वक अपने को देखने लगे और बीच बीच में विचारों में डूबे चहलकदमी करते रहे। कुमारी वाल्डो की आंखें भी उनका अनुसरण कर रही थी।
3: वे सोच रही थी अब इनका भांडा फूटने ही वाला है, ये अपने व्यक्तित्व के मद में चूर दिखते हैं। स्वामी जी सहसा उनकी ओर मुड़े और कहने लगे, एलेन ये बहुत ही विचित्र बात है कि मैं याद ही नहीं रख पाता कि मैं कैसा दिखता हूं। मैं बारंबार दर्पण में अपने को देखता हूं, परंतु वहां से मुड़ते ही याद नहीं रह जाता कि मैं कैसा दिखता हूं।
0: रोमा रोला साहब ने और कई घटनाओं का उल्लेख किया है, आइए उन घटनाओं के बारे में उन्हीं के मुख से सुने।
3: स्वामी जी की प्रथम अमेरिकी यात्रा के दौरान ही उनकी राजयोग पुस्तक तैयार हुई थी। इसका अधिकांश भाग उनके मुख से सुनकर कुमारी वाल्डो ने लिपिबद्ध किया था। उन्होंने इसे संकेत लिपि में नहीं अपितु सामान्य लिपि में ही लिखा था। इस कार्य में बीते आनंद पूर्ण समय की बातें उनके लिए विशेष रूप से स्मरणीय थी, वे प्रायः ही उस पर चर्चा किया करते। प्रतिदिन स्वामी जी का भोजन पक जाने तथा रसोई घर का कार्य समाप्त हो जाने पर वे मकान के पिछले हिस्से में स्थित स्वामी जी के कमरे में आते और मेज पर रखी दवात में कलम डुबाकर प्रतीक्षा में बैठी रहती। तब से लेकर उस दिन की कार्यावली समाप्त होने तक उनकी कलम की निब भीगी ही रहती थी, ताकि वे स्वामी जी के मुख से बीच बीच में निकल पड़ने वाली वाक्य धारा को पकड़ सके। कभी कभी किसी सूत्र के किसी संस्कृत शब्द का अंग्रेजी पर्याय सोचते हुए वे 15 से 20 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक मौन बैठी रहती, परंतु कलम को सूखने नहीं दिया जाता था, क्योंकि किसी भी क्षण बोलने का प्रभाव प्रारंभ हो जाने की संभावना बनी रहती। पांडुलिपि तैयार हो जाने पर उसके मुद्रण का उत्तरदायित्व कुमारी वाल्डो को सौंप दिया गया, परंतु पुस्तक निकलने के पूर्व उन्हें बड़े कष्ट तथा मर्मांतिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ा था। स्वामी जी के एक अन्य विशिष्ट अनुरागी ने पांडुलिपि को उनसे देखने के लिए लिया और उसे लंदन में ले जाकर प्रकाशित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इसके लंदन में प्रकाशित हो जाने से स्वामी जी के कार्य में सुविधा होगी, परंतु इसके फलस्वरूप अमेरिकी संस्करण निकलना संभव न हो सका। अप्रचलित शब्दों की तालिका तथा कुछ अन्य सामग्री जोड़ने के बाद ही उसे प्रकाशित किया जा सका।

0: स्वामी जी ने स्टर्डी महोदय को फरवरी 1896 ईस्वी में जो पत्र लिखा था उससे भी उनकी न्यूयॉर्क के उन दिनों की कार्य प्रणाली के बारे में अच्छी धारणा हो जाती है। उन्होंने लिखा था,
1: यहाँ प्रति सप्ताह मेरी 6 कक्षाएं चलती हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्नोत्तर कक्षा भी है। श्रोताओं की संख्या 70 से 120 तक होती है। साथ ही प्रति रविवार को मैं एक सार्वजनिक भाषण भी देता हूँ। पिछले माह जिस सभागार में मेरे व्याख्यान हुए उसमें 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, परंतु प्रायः आते थे 900 लोग। कुछ तो खड़े रहकर सुनते थे और कुछ को स्थानाभाव के कारण वापस लौट जाना पड़ता था। अतः इस सप्ताह मैंने एक बड़ा सभागार ठीक किया है जिसमें 1200 लोग बैठ सकेंगे। इन व्याख्यानों में प्रवेश पाने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं मांगा जाता, परंतु सभा के समय जो चंदा एकत्र होता है उससे मकान का किराया चुक जाता है। इस सप्ताह संवाद पत्रों की दृष्टि भी मुझ पर पड़ी है और इस वर्ष मैंने न्यूयॉर्क में काफी हलचल मचा रखी है। भय होता है कि निरंतर कार्य के बोझ से मेरा स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। मैंने भक्ति पर लेख लिखना आरंभ कर दिया है। यहां के कुछ मित्र मेरे रविवार के भाषणों को छाप रहे हैं। पहले की कुछ प्रतियां मैंने तुम्हें भेजी हैं। अगली डाक से परवर्ती 2 व्याख्यानों की कुछ प्रतियां तुम्हें भेजूंगा।
2: इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका में स्वामी जी प्रदत्त भाषण संरक्षित हो गए। इसका श्रेय श्री गुडविन और कुमारी वाल्डो को जाता है। दोनों ने दिन रात जुटकर स्वामी जी के श्रीमुख से निकले एक एक शब्द को सहेज कर रखा। हम उन दोनों के प्रति आभारी हैं, क्योंकि उन दोनों के परिश्रम के फलस्वरूप आज हमें स्वामी जी का साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सरोद वादन, जिसे प्रस्तुत करेंगी रुचा बेड़ेकर, और उसके बाद गायन की प्रस्तुति होगी जिसे पेश करेंगे सारंग फगरे। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं रुचा बेड़ेकर का सरोद वादन।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सारंग फगरे का गायन। अब दीजिए कार्यक्रम भारत भारती से इजाजत, अपने दोस्त दानिश को। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, हमारे आज के नाटक का शीर्षक है भिखारिन। यह रेडियो नाटक रविंद्रनाथ टैगोर की मूल बंगला कहानी भिखारिन पर आधारित है। कहानी गंगा तट के किनारे

0: भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटा, भोला नाथ तुम्हारा भला करेगा बेटा, दो पैसा डाल दो बेटा। ओ माई माई माई, इस बुढ़िया पर दया करो, तुम्हारा सुहाग बना रहे, दूधो ना पूतो पलो। ए बिटिया रानी, तुझे चांद सा दूल्हा मिले, भगवान के नाम पर बुढ़िया के झोली में दो पैसा डाल दे लला, दो पैसा डाल दे लला।
1: माँ आ गई ना माँ।
0: हाँ मेरे लाल, मैं आ गई रे। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये दे पेड़े, ये रहे मालपुए। खा ले, खा मेरा।
1: नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, पहले तुम मुझे गोद में उठाओ।
0: गोद में पर बेटा, अब तो तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू बड़ा हो गया है ना, और तेरी माँ बूढ़ी है, अब माँ से नहीं उठता रे तू।
1: माँ क्यों झूठ बोलती हो, तुम ही तो कहती हो कि मेरा मुन्ना फूल से भी हल्का है, अब क्या तुम फूल को भी नहीं उठा पाओगी?
0: ठीक है भाई, ठीक है, तेरी जिद है तो आजा चल। अरे बाप रे, अच्छा अब चढ़ गया ना गोद में, उतर जा बेटा, उतर जा, तेरी माँ के हाथ दुखने लगे बेटा, उतर जा।
1: ठीक है माँ, अब हो गया।
0: मुन्ना।
1: हाँ माँ।
0: अच्छा बेटा, आज पाठशाला का हाल नहीं सुनाएगा?
1: माँ आज जानती हो क्या हुआ?
0: क्या हुआ, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: माँ गुरुजी ने पूछा दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन है।
0: अच्छा, किससे? तुमसे?
1: नहीं माँ, पूरी कक्षा से।
0: अच्छा फिर?
1: बोलू बोला राजकुमारी।
0: राजकुमारी?
1: हाँ माँ, सब खूब हंसे, और गुरुजी भी बोले आज न्योता भेज देते हैं राजकुमारी को, कि भाई आप भोला को बहुत पसंद है और इसीलिए बेचारे से।
0: अच्छा।
1: और मालूम है माँ बुद्धा ने क्या कहा?
0: क्या कहा बेटा?
1: वो बोला कि उसे परी अच्छी लगती है।
0: फिर गुरुजी क्या बोले?
1: गुरुजी पूछे कहाँ देखा है परी को, तो बोलने लगा सपनों में, उस पर भी खूब हंसे।
0: और तुमने क्या कहा बेटा?
1: मैंने तो कहा मुझे सबसे सुंदर मेरी माँ लगती है।
0: दात पागल, ऐसा भी कहते हैं क्या?
1: वो कहते हैं ना, जो लगेगा वही तो कहूँगा ना माँ।
0: अरे पगले, मुझ में तुझे क्या अच्छा लगता है रे, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, और तू कहता है कि।
1: ओ माँ ऐसे क्यों बोलती हो तुम, बाल और चेहरे से थोड़ी ना ही कोई सुंदर होता है।
0: अच्छा फिर कैसे होता है?
1: माँ जो अपने को सुंदर लगे वही सुंदर है, और माँ मुझे तो तुमसे सुंदर और कोई नहीं लगता है।
0: हट भागल, माँ सबसे सुंदर है, हट बावरा कहीं का। ओहो आजा मेरा राजा बेटा, आजा।
2: धर्म नगरी काशी में भिखारिन को काफी भीख मिल जाती थी, खाने वाले बस घर में दो ही थे, जो पैसा बच जाता उसे वह एक हांडी में गाड़ करके जमीन में छुपा देती, सोचती कि बुरे वक्त में काम आएंगे, पर डर भी लगा रहता कि कहीं कोई चोर उचक्का इस धन को चुरा ना ले। सालों साल भीख मांग कर जमा की गई रकम की हिफाजत की चिंता बुढ़िया को चैन से सोने नहीं देती थी। उन दिनों आज की तरह बैंक में लॉकर नहीं होते थे, जनता अपना धन ज्यादातर सेठ साहूकारों के यहां ही रखती थी। भिखारी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा, और वो अपना पैसा जमा करने के लिए नगर के सेठ बनारसी दास के यहां पर पे पहुंच गई।
3: अरे ओ माई बाहर रुक, कहां घुसी आ रही है धड़धड़ाती, कहीं मालिक ने देख लिया तो?
0: अरे मालिक तो सब देख रहा है बेटवा,
3: अरे हम ऊपर के नहीं नीचे के मालिक की बात कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, सेठ जी की। अरे बेटा वाह, उन्हीं से तो हमें काम है।
3: अरे काम है तो हमें बता दो माई, आखिर हमें भी तो इसी बात की पगार मिलती है।
0: नहीं बेटवा, हमें तो सेठ जी से ही काम है।
4: अरे अरे बुढ़िया, कौन सी अशर्फियां जमा है तेरी यहाँ, जिन्हें लेने के लिए तू चली आ रही है यहाँ।
0: जुग जुग जियो सेठ, जुग जुग जियो। अरे मुझ भिखारिन की इतनी औकात कहाँ जो अशर्फियां जमा करूं। ये मैं तो कुछ रुपए लाई हूँ, इन्हें जमा कर लो तुम। अरे मेरा छप्पर का घर है ना, कौन जाने कब कोई चोर उचक्का उठा ले जाए इन्हें।
4: अरे भाई मुनीम, देखो तो सही कितना रुपया है बुढ़िया का।
3: आज जी मालिक, 1, 2, 5, 93, 94, 95। अब मालिक पूरे 95 हैं।
4: अच्छा अच्छा,
0: 95? नहीं नहीं सेठ, पूरे 100 हैं। मैं खुद गिन कर लाई हूँ, 102 थे, लेकिन 2 मैंने खर्चे पानी के लिए रख लिए हैं और 100 उठा लाई कि तुम्हारे पास रहेंगे तो हिफाजत से रहेंगे। हाँ
3: 100 हैं। अरे 100 तक की गिनती भी आती है तुझे?
0: अरे तो क्या हुआ, हमारे मुन्ना को तो आती है ना। अरे मुनीम जी, गिनती पहाड़े की होड़ लगवा देना उससे, तो तुम्हारी भी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ
3: बापरे, मैं तो सोचता था कि बुढ़िया गऊ है, पर ये तो गिदड़ी के भी कान काट ले। अच्छा अच्छा, तेरे बेटे ने गिनी है?
0: हाँ।
3: रुक रुक, एक बार मैं फिर से गिनता हूँ। हाँ हाँ, पूरे 100 हैं। भाई बड़ा होशियार है तेरा मुन्ना।
0: अरे बेटवा, भाग है इस बुढ़िया का, जो भगवान ने उसे ऐसा चांद सा लाल दिया है।
3: माफ करना माई, हाथ जरा फिसल गया था।
4: अरे मुनीम जी, हाथ फिसल गया था कि जवान फिसल गई थी? अरे अरे, देखना किसी दिन तू ना फिसल जाना नालायक कहीं का। अरे काशी में लोग सेठ बनारसी दास के ईमानदारी की कसम खाते हैं, और एक तू है कि मेरा नाम मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है।
0: नहीं नहीं सेठ जी, मुनीम जी की कोई गलती नहीं है इसमें, हो जाता है।
3: हाँ हाँ माई, मैंने जानबूझकर नहीं किया था।
4: ठीक है ठीक है, बही में दर्ज करो रकम, नाम, पता, रकम सब तफसील से लिखो, और देखो अब कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए।
3: नाम क्या लिख दूं माई?
0: नाम तो याद नहीं है बेटवा, तुम तो भिखारिन लिख दो, सब इसी नाम से तो जानते हैं ना मुझे।
3: भिखारिन?
0: हाँ।
3: अरे ये भी कोई नाम हुआ भला। अच्छा ठीक है, उम्र बताओ।
0: उम्र भी तो नहीं मालूम है बेटवा, मुझे देखकर ही लिख दो ना।
3: नाम नहीं मालूम, उम्र नहीं मालूम, पर रुपये पूरे 100 हैं, भारी बुढ़िया। अच्छा पता बताओ।
0: पता? हाँ, लिखो, दशाश्वमेघ घाट के पास सुगनी साहू की गली।
3: अरे तो क्या पूरी गली तेरे नाम है बुढ़िया, या तू महारानी काशी है जो बच्चा बच्चा तेरा नाम जानता है?
0: नाराज काहे होते हो मुनीम जी, मगर हाँ भिखारिन का घर हर कोई बता देगा तुम्हें।
3: ठीक है बुढ़िया, ये ले, दर्ज हो गया सब ब्योरा।
0: हाँ।
3: नाम भिखारन, उम्र 45 साल, पता दशाश्वमेध घाट के पास सुगनी साहू की गली।
0: हाँ।
3: और रकम 100 रुपया। अब कुछ बाकी रह गया हो तो अपना मुन्ना से पूछ के लिखवा देना।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, ठीक है, चलती हूँ। भगवान।

0: भविष्य किसी ने भी नहीं देखा है। भिखारिन भी नहीं जानती थी कि जिन रुपयों को वह अभी अभी सेठ बनारसी दास के यहां जमा करके आई है उनकी जरूरत उसे इतनी जल्दी पड़ जाएगी। उसका लाल, उसका मुन्ना बुखार से तप रहा था। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तो भिखारिन पहुंच गई अपने पैसे सेठ बनारसी दास से वापस मांगने।
1: अरे अरे कौन है भाई?
2: सेठ मैं हूँ भिखारिन।
1: अरे कोई है भाई, भगाओ इसे। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने के समय चले आते हैं भीख मांगने।
2: अरे सेठ तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मेरा नाम भिखारिन है। अरे अभी 15 दिन पहले ही तो सेठ जी जो रुपए जमा किए हैं ना तुम्हारे पास, उसमें से बस 10-15 रुपए मुझे दे दो। मेरा मुन्ना बीमार पड़ा है।
1: अरे क्या नाप शनाप के जा रही है बुढ़िया? मैंने तेरी शक्ल भी नहीं देखी है आज के पहले, और तू 15 दिन पहले की बात करती है। अरे कैसे रुपए? हिमाकत तो देखो इस भिखारिन की, अब ये सेठ बनारसी दास को उधार देने लगी है।
2: अरे राम राम राम राम सेठ जी, मुझ गरीब की क्या औकात कि आप जैसे महापुरुष को उधार रुपए दूं?
1: हाँ।
2: वो तो अमानत के तौर पर ही मैंने तुम्हारे पास।
1: अरे कोई सबूत है? कोई गवाह है तेरे पास? कोई कागज पुर्जा कुछ है?
2: अरे न सबूत न गवाह और न कोई कागज पुर्जा सेठ। ऊपर भगवान, नीचे तुम और तुम्हारे मुनीम, चौथी मैं। इसके अलावा कोई नहीं जानता इसके बारे में। और हाँ, मुनीम जी ने बही में भी चढ़ाई थी रकम भिखारिन के नाम पर।
1: मुनीम जी?
3: जी मालिक।
1: अरे वही में देखिए तो सही, दर्ज है बुढ़िया की रकम के नहीं?
3: जी अभी देखता हूँ।
1: जल्दी देखिए।
3: नहीं मालिक, पिछले साल भर में तो दर्ज नहीं है। और हाँ, बीते साल की बात हो तो मैं कह नहीं सकता, वो वही आपकी तिजोरी में रखी है।
2: अरे काहे का बीता साल सेठ, 15 दिन भी नहीं हुए अभी पूरे। भगवान से तो डरो, 100 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है तुम्हारे लिए। काहे इतने से पैसे के लिए अपना धर्म खराब कर रहे हो?
1: अरे अरे जवान संभाल कर बात कर बुढ़िया। अरे मैं बनारसी दास हूँ, सेठ बनारसी दास। रोज सुबह गंगा स्नान करता हूँ, भगवान को भोग लगाए बगैर अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालता हूँ। और हाँ, इतना लंबा तिलक भी लगाता हूँ शुद्ध चंदन का।
2: दिखाई दे रहा है मुझे सेठ।
3: और गले में लटकी ये कंठी भी देख लो, सच्चे रुद्राक्ष की है।
2: हाँ हाँ ये भी जानती हूँ। काशी में लोग सेठ बनारसी दास के ईमानदारी की कसमें खाते हैं, पर नहीं जानती थी कि काशी के लोग इतनी झूठी कस्में खाते हैं।
1: अरे अरे चुप रहे बढ़िया, अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो जबान खिंचवा लूंगा तेरी।
2: अरे खिंचवा लो ना सेठ, जबान ही क्या, खाल भी खिंचवा लो मेरी, पर मेरे मुन्ने को बचा लो, वो बुखार से मर रहा है। मेरे जीने का अकेला वो ही सहारा है सेठ। अरे पूरी रकम नहीं मांगती मैं, 10-15 रुपए भर दे दो। मेरा लाल, मेरे लाल की जान भर बच जाए। बाकी पैसा तुम रख लेना, सब अपने पास रख लेना, नहीं मांगूंगी तुमसे कभी भी।
1: अरे बढ़िया, अब तू दान भी देगी मुझे? अरे इतने बुरे दिन आ गए सेठ बनारसी दास के कि वो एक भिखारिन से खैरात ले। अरे मुनीम जी, हाथ पकड़ कर बाहर करो इसे, पूरा दिन खराब कर दिया इसने। शिव शिव शिव शिव।
2: तेरा सत्यानाश हो निर्बसिया, तभी तो भगवान ने तुझे औलाद नहीं दी। अरे मर कर भूत बन जाए तू, और अपने महल पर ही मंडराए। हाय हाय मेरा लाल, किस बात की सजा दे रहे हो भगवान? मैं कोई महल अटारी नहीं मांगती, ले देकर जीने का एक ही सहारा है मेरा, इसे तो मत छीनो भगवान।

0: उधर दवा के अभाव में मुन्ना की हालत बिगड़ती ही गई। भिखारिन की आंखों में वह दिन घूमने लगा जब बिलखता हुआ एक 4 साल का बच्चा उसे घाट पर मिला था। पूछने पर बाप का नाम बाबा और माँ का अम्मा बताता था। देखने वालों का हुजूम लग गया, लेकिन सब के सब तमाशबीन थे। उससे रहा न गया। बच्चे को देख करके उसके भीतर सोई ममता जैसे जाग गई। पराए बच्चे को अपना समझ छाती से लगा लिया। आज इस घटना को 5 साल बीत चुके हैं। वह बच्चा अब उसका अपना बच्चा है, उसकी जान बसती है उसमें। मगर आज जब यही जान खतरे में है तो उसे लगता है कि वह भी न बचेगी उसके बिना। अकल काम न कर रही थी कि कैसे बचाए इस बच्चे को। और भगवान की लीला देखिए, जब तक रुपया घर में था तब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी, पर जैसे ही रुपया विदा हुआ बच्चे को बीमारी ने आ घेरा। तभी तो पुराने लोग कह गए हैं कि विद्या वही जो पेट में और धन वही जो टेट में, यानी कि दूसरों के हाथ में सौंपा हुआ धन कभी काम नहीं आता, धन वही काम आता है जो अपने हाथ में हो।
1: मालिक, मालिक, गजब हो गया मालिक।
2: अरे क्या गजब हो गया, गजब हो गया। अरे कुछ बकेगा भी कि बस गजब हो गया कह रहा है नालायक।
1: मालिक, बुढ़िया ने कोठी का घेरा डाल दिया।
2: अरे बुढ़िया मतलब वो भिखारन, अब क्या सेना लेकर चढ़ाई करने वाली है वो कोठी पर।
1: मालिक, मालिक गरीब की हाय मत लीजिए मालिक, मैं कहता हूँ दे दीजिए उसका रुपया।
2: अबे मुनीम के बच्चे, ज्यादा उपदेश न छाट तू मुझे। उस दिन 5 रुपए डकार रहा था जब, तब कहा गई थी तेरी ये नहीं थी बुद्धि, मां गरीब की हाय न लीजिए। अरे एक नौकर भेज कर धक्का देकर भगा उसको।
1: नहीं मालिक, नहीं मालिक, मुझसे नहीं होगा ये, मैं बाल बच्चे वाला हूँ मालिक।
2: ताना मारता है मुनीम का बच्चा। अरे कैसा जमाना आ गया है भोलेनाथ। अरे मेरी बिल्ली और मुझे से मिलाऊं, मैं नालायक।
1: अब मालिक चाहे मुझे बिल्ली कहिए या चूहा, पर
2: बहुत हो गई तेरी चूं चपड़ करता है, सीधे सीधे जा और बुढ़िया को फटा, नहीं तो नौकरी छोड़कर अपने घर चले जाना।
1: अच्छी मुसीबत है। अरे दूसरे का माल हड़पे सेठ और नरक में जाए मुनीम। पर हे भोलेनाथ, तुम तो सब देखते हो ना, ये पाप का हिसाब किताब सेठ के खाते में ही लिखना। मुनीम ने तो बस अपनी नौकरी बचाई है प्रभु।
2: अरे मुनीम गई कि नहीं बढ़िया।
1: नहीं मालिक, नहीं जा रही है। अरे वो तो पत्थर की हो गई है।
2: क्या
1: बाप रे, मुझे तो उससे देखकर ही डर लग रहा है मालिक, लगता है आंखों से ही भस्म कर देगी मुझे।
2: अच्छा अब वो शंकर जी की अवतार हो गई है, आंखों से ही भस्म कर देगी। अरे मुनीम सोचता होगा रुपया तो सेठ डकार रहा है, फिर पाप मैं क्यों करूं, है ना।
1: सेठ जी मेरी विनती मान लीजिए आप, उस दिन आपके कहने से तो मैं झूठ बोल गया था कि नहीं जमा है पैसे उसके, पर भगवान के लिए थोड़ा सा रुपया तो दे दीजिए, उसका बच्चा बच जाएगा, एक माँ से उसकी औलाद मत छीनिए सेठ।
2: सबके सब निकम्मे हैं, चल अब मैं ही चल कर देखता हूँ कैसे नहीं भागती वो भिखार है ना, चल।
3: मेरा बच्चा, भगवान कितना अन्यायी है तू।
2: अरे बुढ़िया, ए बुढ़िया, अरे कोठी छोड़ तो और ये ले, 5 पैसे से ज्यादा भीख नहीं देखी होगी तूने जिंदगी में, पर तुझ पर रहम करके 1 रुपया दे रहा हूँ, जाके दवा दारू करा ले इसकी।
3: तुझे, ले। तुझे कीड़े पड़े रे सेठ।
2: क्या कह रही है,
3: मेरा 100 रुपया दबा कर अब 1 रुपए की भीख दे रहा है मुझे।
2: नहीं।
3: पर मैं भी कह देती हूँ कि अगर कुछ हो गया ना मेरे मुन्ने को तो यही तेरी कोठी के दरवाजे पर ही उसकी चिता बनाऊंगी और उसमें खुद भी जल मरूंगी, प्रेत बनकर फिर यही मंडराएंगे हम माँ बेटे दोनों।
4: इसे तो सुनकर ही सारे बदन में झुरझुरी छूटे जा रही है। अरे कहीं सचमुच, ओहो हो शंभू शंभू।
2: अरे अरे ऐसा काहे बोलती है माई, क्या ज्यादा तबीयत खराब है बच्चे की, जरा मैं भी तो देखूं। अरे मेरा मोहन, कहां कहां तुझे नहीं ढूंढा बेटा, इतने बड़े बनारसी सेठ का बेटा इस भिखारिन के यहाँ पला। हे भगवान, अरे कोई है, उठाओ इसे, नगर वैद्य को बुलाओ, पैसा पानी की तरह बहा दो। अरे मेरा मोहन, मेरा मोहन,
3: सेठ, मेरा मोहन, रुपया तो ले लिया, अब क्या मेरा मुन्ना भी ले लोगे? नहीं, मैं नहीं दूंगी इसे, मेरे जीने का सहारा है ये, नहीं दूंगी।
2: अरे वो बढ़िया, चल फुट यहाँ से। अरे नहीं तो अभी सिपाहियों को बुलाकर तुझे दूसरे का बच्चा अपने घर में रखती है, भारी अपराध किया है तूने।
3: अपराध? ठीक कहा सेठ तूने, मगर ये अपराध ना किया होता ना इस बुढ़िया ने, तो आज इलाज कराने की नौबत ही नहीं आती इसकी। अरे भूख प्यास से मर गया होता ये।
2: अरे अरे अब तो जान बख्श माई इसकी, अरे देख नहीं रही है कैसा बुखार में तप रहा है, इलाज ना मिला तो मर जाएगा मेरा मोहन। अरे मोहन,
5: वाह रे सेठ वाह,
3: अपना बच्चा है तो आसमान से पर उठा लिया, और दूसरे का बच्चा हो तो मरने दो, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगी अपना मुन्ना।
2: अरे भगाओ इस बुढ़िया को भाइयो, बच्चे को ले चलो कोठी में, अंदर ले चलो।
3: नहीं
6: माँ, माँ।
3: हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी बेटा।
2: अरे अरे नहीं नहीं बेटा मोहन, ये तुम्हारी माँ नहीं है बेटा, अरे तुम मेरे बेटे हो, सेठ बनारसी दास के बेटे हो मोहन।
6: नहीं, मेरा हाथ छोड़ो, मेरी माँ यही है, मेरी माँ यही है।
3: हाँ बेटा, मैं ही हूँ तेरी माँ, हाँ मेरा बेटा, मेरा राजा मुन्ना।
0: भिखारिन वैसे तो जान देकर भी कोठी को छोड़ने वाली नहीं थी, मगर अब इसकी जरूरत नहीं रही। जिस बच्चे की इलाज की खातिर वह इतनी विपदा उठा रही थी, अब उसका अच्छे से अच्छा इलाज होगा, यह वह जान चुकी थी। मन पर पत्थर रख लिया उसने, सोचा क्या हुआ जो मुन्ना उसके पास नहीं रहेगा, पर जिंदा तो रहेगा, यही आश्वासन उसके लिए काफी था। उधर सेठ बनारसी दास के पास रुपयों की कमी नहीं थी, एक से एक नामी वैद्यों की लाइन लगा दी उन्होंने, मगर बीमारी बढ़ती ही गई। बच्चा अपनी भिखारिन माँ को याद करके नींद में से चिल्ला उठता, उसे समझाया जाता कि उसकी असली माँ भिखारिन नहीं बल्कि ये सेठानी है, पर वह मानता ही नहीं। अच्छे से अच्छी औषधि भी उसके मन की इस दशा का इलाज न कर पा रही थी। हार कर इतने बड़े सेठ को आखिर भिखारिन की कुटिया में जाकर के माथा टेकना ही पड़ा।
4: अरे बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, चल के बचा ले उसे, चल।
3: मरता है तो मर जाए, अच्छा है, फिर माँ बेटे दोनों स्वर्ग में तो मिलेंगे ना।
4: ऐसा ना बोल माई, ऐसा ना बोल, मेरे जीने का सहारा है वो भाई।
3: अरे जीने का सहारा तो मेरा भी था सेठ, मगर तब तो तुझे दया ना आई ना मुझ पर।
4: अरे मेरे अपराध क्षमा कर भाई, आज तक बनारसी सेठ किसी के सामने झुका नहीं, पहले मैं तेरे पैरों में गिरता हूँ माई, तुझे तेरे मुन्ना का वास्ता माई, चल के बचा ले उसे, उसके बाद तू चाहे तो उसे अपने ही पास रख लेना, ले ले।
3: ठीक है चलो सेठ चलो, मुन्ना का वास्ता देकर तुमने मजबूर कर दिया इस भिखारिन को, चलो।
0: भिकारण की उपस्थिति ने जादू का काम किया। जो दवाएं बेकार साबित हो रही थी वे सब अब संजीवनी बन गई थी। देखते ही देखते मुन्ना हरा भरा हो गया।
3: अब इजाजत दो सेठ, तुम्हारा बेटा अब ठीक हो गया है।
4: हमारा नहीं, तुम्हारा बेटा है माई। अब तुम यहीं रहो, अपने मुन्ना के पास।
3: अरे नहीं सेठ, इस भिखारिन को महलों के सुख की आदत नहीं है। अब तो मुझे इजाजत दो तुम।
4: तो फिर ठीक है माई, मैंने वचन दिया था तुम्हें, पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ले जाओ अपने मुन्ना को अपने साथ ले जाओ।
3: नहीं नहीं सेठ, भिखारिन इतनी भी गई गुजरी नहीं कि पराए माल पर नियत बिगाड़ ले। तुम्हें तुम्हारी अमानत मुबारक हो।
4: जो चाहे कह लो भाई, मैंने काम ही ऐसा किया है। अच्छा तो अपनी थैली तो रख लो माई, मुझे शर्म आ रही है कि तुम्हारे 100 रुपए मैंने।
3: अब इनका क्या करूंगी सेठ, मुन्ना के लिए रखा था इन्हें, अब उसी के काम आएंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की मूल बंगला कहानी भिखारिन पर आधारित रेडियो नाटक भिखारिन और प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन, जिसे पेश करेंगे साई ऐश्वर्य महाशब्दे, और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सुंदरलाल करेले द्वारा बांसुरी वादन की। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गायन साई ऐश्वर्य महाशब्दे का।
1: राग कामोद से प्रारंभ कर रहा हूं, विलंबित झुमरा ताल में पहली रचना है।

हंसध्वनि। ये राग सभी गुणजन जानते हैं, कर्नाटक शैली का राग है, लेकिन कर्णप्रिय और मधुर होने के साथ साथ ये राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी उतना ही प्रभावी है जितना दक्षिण भारतीय भारत में है।

श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकोपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटता ही नहीं।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्नि देव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, और कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाऊं ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो, टिफिन तो ले जाइए। अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
5: उफ, साहब नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंडे ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब, रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या करूँ, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ, कर।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनखा देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: हाँ, बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। हाँ। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है, हमारी मेहन साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ। आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, लाओ।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अतपका ये भर दो तुम टिफिन में यार, पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये।
2: हाँ,
0: बताइए अब क्या करूं इस कच्चे पक्के खाने का?
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्य कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: आ, आ, आ, सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा, क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
2: जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं जलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है,
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ। सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ।
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ।
1: अरे भैया, जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करम का तैसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ। और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था, बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं। लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था, सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूं भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ। यार मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहां से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह।
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धास हुए।
1: हाँ।
0: चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैये दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं? सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली
3: बात है। चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर गौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी। गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई। कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो। हाँ पढ़ो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: वाव। नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ, हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा, अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ, हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी।
3: वाह।
0: और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ, जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े।
3: क्या?
0: संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गजल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी है आज, तो आप सभी को हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 18वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र। छंद है त्रिष्टुप।
1: प्राता रथो नवो योजी सस्निश्चतुर युगस्त्रिकशः सप्तरश्मिः दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः स इष्टिभिर्मतिभिरहियो भूत। प्रातः काल यह नया रथ नियोजित किया गया है। इसमें चार युग, तीन कोड़े, सात रश्मियां तथा 10 चक्र हैं। यह इष्ट प्रयोजनों के लिए मति के अनुरूप गतिमान हो। यह मनुष्यों को स्वर्ग तक पहुंचाने वाला है। सास्मा अरम प्रथमम स द्वितीयमुतो तृतीयम मनुषः स होता अन्यस्या गर्भमन्य उजनन्त सो अन्येभिः सचते जेन्यो वृषा। यह रथ इंद्रदेव को प्रथम, द्वितीय और तृतीय अर्थात प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों सवनों में यज्ञों में पहुंचाने में समर्थ है। यह रथ मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करने वाला है। स्तोतागण एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रह्मांड व्यापी बलशाली तथा अजेय उन इंद्रदेव के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हरि नूकम रथ इंद्रस्य योजमायै सूक्तेन वचसा नवेन मोषुत्वामत्र बहवो हि विप्रा नि रीरमन्य जमानासो अन्ये। इंद्रदेव के सुखपूर्वक आवागमन के लिए उत्तम स्तुतियों के माध्यम से उनके रथ में दोनों घोड़ों को नियोजित किया गया है। हे इंद्रदेव, हमारे अतिरिक्त अन्य कोई भी मेधावी स्तोता आपको भली भांति तृप्त नहीं कर सकता। आ द्वाभ्याम हरिभ्यामिंद्र याहिया चतुर्भिरा षड्भिर् हुयमानः अष्टाभिर् दशाभिः सोम पेयमयम् सुतः सुमख मा मृधस्कः। हे इंद्रदेव, हमारे द्वारा आवाहित आप सोमपान करने के लिए 2, 4, 6, 8, 10 घोड़ों से आए। यह सोमरस आपके लिए शोधित किया गया है, आप इसका पान करें, इसके लिए युद्ध न करें। आविंशत्या त्रिशता याहियर वाडा चत्वारिंशता हरिभिर युजानः आ पंचाशता सुरथे भिरिंद्रा षष्ट्या सप्तत्या सोमपेयम्। हे इंद्रदेव, आप सोमरस का पान करने के लिए रथ के योग्य 20, 30, 40, 50, 60 तथा 70 घोड़ों को नियोजित करके हमारे पास आए। आशीत्या नवत्या याह्यर्वाडा शतेन हरिभिर् रुह्यमानः अयम् हि ते शुनहोत्रेषु सोम इंद्र त्वाया परिशिक्तो मदाय। हे इंद्रदेव, आपको आनंदित करने के लिए सोमरस को सुंदर पात्रों में रखा गया है, अतः आप 80, 90 और 100 घोड़ों को अपने रथ में नियोजित करके हमारे पास आए। मम ब्रह्मेन्द्र याह्याच्छा विश्वा हरि धुरि धिष्वा रथस्य पुरुत्रा हि विहव्यो बभूथास्मिंछूर सवने मादयस्व। हे इंद्रदेव, आप बहुतों के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, अतः हमारे स्तोत्रों को स्वीकार करके अपने रथ में सभी घोड़ों को नियोजित करके हमारे इस यज्ञ में आकर आनंदित हों। न म इंद्रेण सख्यम वि योषदस्मभ्यमस्य दक्षिणा दुहित उपज्येष्ठे वरुथे गभस्तौ प्राये प्राये जिगीवंसः स्याम। इंद्रदेव के साथ हमारी मैत्री अटूट रहे, हम उनके उत्तम दाहिने हाथ के समीप रहें। इंद्रदेव के द्वारा हमें सदैव दान मिलता रहे, इनके संरक्षण में हम प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करें। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति धग भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे इंद्रदेव, यज्ञ के समय आपके द्वारा स्तोताओं के निमित्त दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चित रूप से धन प्रदान कराती है, अतः स्तोताओं के साथ हमें भी वह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा प्रदान करें, जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान करने वाले स्तोत्रों से स्तुतियां करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 18वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। शुभ संध्या। संध्या की ये बहेला अपने साथ एक अलग ही रंग लेकर आती है। दिन भर की थकान को पीछे छोड़कर आइए कुछ पल प्रभु के नाम करें और शुभ संध्या की इस पावन शुरुआत में सबसे पहले नमन करें विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश को, जिनके स्मरण मात्र से मन में विश्वास और जीवन में शुभता का संचार होता है। तो आइए गणपति बप्पा के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए सुनते हैं ये भजन।

जब मन में विश्वास होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जब मनुष्य अपने आराध्य पर भरोसा रखता है तो उसे भीतर से एक ऐसी शक्ति मिलती है जो उसे हर परिस्थिति का सामना करने का साहस देती है।

ईश्वर से केवल मांगना नहीं बल्कि उनके प्रति कृतज्ञ होना, उनकी उपस्थिति को महसूस करना और ये विश्वास रखना कि जीवन के हर सुख दुख में प्रभु हमारे साथ हैं।

दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, हमारे शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, हमारा व्यवहार किसी दुखी मन को सहारा दे सके, हमारे कर्म किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी भर सकें, यही सच्ची भक्ति है।

केवल मंदिरों में सिर झुकाना ही भक्ति नहीं, बल्कि किसी के प्रति प्रेम, करुणा और सद्भाव रखना भी भक्ति का ही एक रूप है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं द लॉयन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से विख्यात सी विजय राघवाचार्य का। हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाली अनगिनत विभूतियों से भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास भरा हुआ है। ऐसे ही एक महान राष्ट्रभक्त थे सी विजय राघवाचार्य, जो लॉयन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से विख्यात थे। सी विजय राघवाचार्य का जन्म 18 जून सन 1852 को मद्रास प्रेसिडेंसी के चेंगलपट्टू जिले के पोन विलेंथा कलाथुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सदगोपरचारी था, जो एक पुजारी थे। इस तरह एक आयंगर ब्राह्मण परिवार के पारंपरिक संस्कारों के साथ सी विजय राघवाचार्य का पालन पोषण हुआ। बहुत कम उम्र में ही उनकी स्कूली शिक्षा गांव में ही आरंभ हुई। उन्होंने बचपन से ही वेदों और अनेक संस्कृत धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। संस्कृत के साथ ही उन्होंने 12 वर्ष की आयु में अंग्रेजी की शिक्षा भी पचैया हाई स्कूल से आरंभ की। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की और यहीं सन 1875 में व्याख्याता नियुक्त हुए। 3 वर्ष इस पद पर काम करने के पश्चात उन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा सलेम म्यूनिसिपल कॉलेज में अंग्रेजी और गणित के व्याख्याता के रूप में कार्य करना आरंभ किया। इसी दौरान उन्होंने निजी तौर पर कानून की पढ़ाई की तथा वकालत आरंभ की। सन 1882 में जब उन्होंने वकालत आरंभ की, उसके कुछ समय बाद ही सलेम में दंगे भड़क गए, जिसका झूठा आरोप सी विजय राघवाचार्य पर लगाया गया। उन्होंने इन आरोपों के विरुद्ध अदालत में लड़ाई लड़ी और स्वयं को निर्दोष साबित किया। एक सफल वकील के रूप में उन्होंने लॉर्ड रिपन को प्रतिवेदन में उन लोगों के पक्ष में भी दलील दी जो अंडमान सेलुलर जेल में थे तथा उन पर भी दंगे भड़काने का आरोप लगा था। सन 1882 के सलेम दंगों ने सी विजय राघवाचार्य को रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। उन दिनों देश भर के समाचार पत्रों ने इस घटना की व्यापक चर्चा की थी और नागरिक स्वतंत्रता के पुरोधा के रूप में उन्हें ख्याति मिली थी। इस तरह सी विजय राघवाचार्य द लॉयन ऑफ साउथ इंडिया कहलाने लगे। अन्याय के विरुद्ध उनके बुलंद स्वर ने लोगों को जगाने का काम किया।

सी विजय राघवाचार्य ने सन 1882 में सलीम नगर परिषद के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। सन 1895 में वो मद्रास विधान परिषद के लिए चुने गए, जहां सन 1901 तक उन्होंने सेवाएं दी। सी विजय राघवाचार्य एओ ह्यूम के घनिष्ठ मित्र थे। यही कारण है कि जब सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई, तब वो उसके सत्रों में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए। सी विजय राघवाचार्य ने एक ऐसे राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया, जिसका एक स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण तो हो ही, इसके साथ ही वो भारत की जनता की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दे। उनका तर्क था कि कोई भी संगठन तभी पूरे देश को प्रभावित कर सकता है, जब राजनीति के साथ साथ वो अपने आम जन के हितों से भी जुड़ा हो। उन्होंने सन 1887 में बंबई अधिवेशन में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई। जब कांग्रेस के संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था, तब उस मसौदा समिति के सदस्य के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस तरह एक सशक्त राष्ट्रीय संगठन हेतु उनके पास अनेक रचनात्मक सुझाव थे। संगठन में उनका बड़ा प्रभाव था। इससे जुड़े शुरुआती लोगों से उनका आत्मीय संबंध था। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के वो करीबी सहयोगी थे। सन 1905 के आसपास ही संगठन में विचारधाराओं की टकराहट गूंजने लगी थी। लोग नरम और गरम दल में बंट रहे थे। इस तरह संगठन में एक दरार उभरने लगी थी। सन 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में संगठन नरम और गरम दल नामक दो दलों में बंट गया। इस विभेद की जमीन सन 1905 के बनारस अधिवेशन में ही तैयार हो गई थी, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने उदारवादियों की नीति को याचिका और याचना की नीति कहा और इसका कड़ा विरोध किया था। उनका मत था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे देश में किया जाए तथा सभी वर्गों को इसमें शामिल करके इसे राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, लेकिन उदारवादी इसके पक्षधर नहीं थे। हालांकि विभेद को देखते हुए मध्यम मार्ग अपनाया गया, लेकिन सन 1906 के कोलकाता अधिवेशन में गर्मपंथियों की लोकप्रियता काफी बढ़ी और अंततः संगठन दो धड़ों में बंट गया और सी विजय राघवाचार्य इस संगठन से अलग हो गए। हालांकि बाद में गांधी जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो पुनः इसमें शामिल

सी विजय राघवाचार्य के राजनैतिक जीवन का चरमोत्कर्ष तब आया जब उन्हें नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। ये सन 1920 का साल था। इस अधिवेशन में अहिंसक असहयोग के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग पर चर्चा हुई, जिसमें तीखी नोकझोंक हुई। साइमन कमीशन के विरोध में जो वातावरण तैयार हुआ था, उसमें भी सी विजय राघवाचार्य सहयोगी रहे। इसके पहले 1913 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुने गए थे और 1916 तक इससे जुड़े रहे। दिल्ली में उन्होंने मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान नेताओं के साथ मिलकर काम किया। सी विजय राघवाचार्य ने उचित आयु में महिलाओं के विवाह और पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकार की भी वकालत की। अस्पृश्यता विरोधी लीग से भी उनका जुड़ाव था। अपने काम में उन्होंने स्वामी शरथानंद को बहुत सहयोग किया। उनका व्यक्तित्व बहुपक्षीय था, जिसे हिंदू महासभा संगठन में भी भागीदारी मिली। उन्होंने सन 1931 में अकोला में हुए महासभा सत्र की अध्यक्षता भी की थी। वो निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन की मद्रास शाखा के दो उपाध्यक्षों में से एक थे। दूसरे उपाध्यक्ष एस कस्तूरी रंगा आयंगर थे और गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। उनका जीवन सदा साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्षशील रहा। वो लगातार आर्थिक और सामाजिक संकटों से भी जूझते रहे, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य देश की आजादी था। वो सदा मुखर रहे। मद्रास पत्रिकाओं में भी वो हमेशा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर अपने विचार रखते रहे। 19 अप्रैल सन 1944 को राष्ट्र सेवा को समर्पित इस महान देशभक्त ने अंतिम सांस ली। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनो कहा
2: 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुनो कहानी। इसके अंतर्गत आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी भूत।
1: कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम सुनो कहानी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी भूत। कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद।

0: मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहां के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वो कचहरी में 15 रुपए मासिक पर नौकर हुए, फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी, 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपए महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। 4ों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर ये कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल था, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया उसने 3 महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया, और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने अब तक न रखी थी। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वो सच्चे पत्नी परायण पुरुष थे। साधारणतः महफिलों में वैश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन, जो कुछ था कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी कार्य उन्हें व्यर्थ जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो वो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना। जैसे वेदांती को ब्रह्म के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, बस एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी, उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं, और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचले करती हैं, उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचती, लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियां पहन के ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते, कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है, जिसने ये दान न दिया उसका तो जन्म ही वृथा गया। आखिर ये लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। ये बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी ही सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खेल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती, उससे आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मजा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वो उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी। और बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस तरह दीवान खाने में खूब कह कहे उठते। वकील साहब कभी इतने वात्सल्यमय न थे। जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते। बिन्नी बेटी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बिन्नी ने कहा, ना बताऊंगी। मंगला ने कहा, कह दे बेटा, जी जी की बेटी हूं। पंडित जी ने कहा, तू मेरी बेटी है बिन्नी कि इनकी? बिन्नी ने फिर जवाब दिया, ना बताऊंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा, अब हम लोग आंख बंद किए बैठे हैं। भाई बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में बैठ गई। पंडित जी ने कहा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। अब ना कहना कि मेरी बेटी है, सुन रही हो? मंगला ने कहा, अच्छा जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी न मंगा दूंगी। बिन्नी ने कहा, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वो अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई भी बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी झट से कह देती, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गया। एक महीना भी न गुजरने पाया था कि वो फिर ससुराल गए और बिन्नी को ले आए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वो चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उनमें से दो अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। दो कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुणशील वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में बिल्कुल निपुण, मधुर भाषणी, लज्जाशील, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला हो जाता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वो प्राणप्रद सुषमा और शोभा न थी। श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वतों में भी वो शीतलता नहीं थी जो बिन्नी अर्थात विंध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादी में दिल का अरमान वो निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना कठिन। नौका पर सभी यात्रा करते हैं, जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी। अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया। जन्म पत्र मिल गए, बानक बन गया, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं। पर हाय रे दुर्दैव, कहां तो विवाह की तैयारी हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे और कहां निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए वो परलोक सिधार गई। संध्या घिर आई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे बहुएं, पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से न बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए वो उस कमरे में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूं, बुरा न मानना। बिन्नी, बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित जी ने कहा, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उसमें कुछ भी काट छाट मत करना। पंडित जी ने कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला ने कहा, सुनो, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी कभी मत भूलना उसे। पंडित जी ने जवाब दिया, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, अच्छा सुनो, इसी साल विवाह कर देना। पंडित जी ने कहा, इस साल कैसे होगा? मंगला ने जवाब दिया, ये फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित जी ने कहा, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला ने फिर कहा, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। और पंडित जी ने कहा, कर दूंगा। और इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित, बिल्कुल तितर बितर हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन कचहरी ही नहीं जाते, जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से भी अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासमय उनका दिल बहलाने की चेष्टा करती थी। वो उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वो कुछ खा न लेते वो कुछ न खाती थी। गर्मी के दिन थे ही, रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा चला करती और जब तक वो सो न जाते तब तक वो भी सोने न जाती। वो जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते और वो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहां तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़ कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का ये अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वो गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंधेश्वरी के प्रति जब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वो उनसे पिता पुत्री के भाव को सहज और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव वो भाव दिन दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वो एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदया बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वो वही पिता के तुल्य भैया थे। वो पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहां तक कि एक समय ऐसा भी आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेश भी नहीं रह जाता, किंतु पुरुषों में ये अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती होती जाती है। त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। वो तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करते हैं वो किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और अपनी इस उच्छृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीचे कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब ना समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वो विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वो चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खींचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी। बिन्नी ने कहा, आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित जी ने कहा, ले आना, अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूं। तुमने मेरे शोक को भुला दिया है, वास्तव में तुमने मुझे जिला दिया है। नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा। तुमने मुझे प्राण दान दिया है। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी ने कहा, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूं। पंडित जी ने कहा, क्यों, तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी? बिन्नी सकुचाती हुई बोली, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित जी ने कहा, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित जी ने कहा, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूं, जब तक जिंदगी है जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई, तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान किया है? मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी कोई खबर लेने वाला नहीं होगा। ये घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे ये घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहां क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह को तुमने पूरा किया, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी ने कहा, क्या क्या इस साल रुक नहीं सकते? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित जी ने कहा, अपने बस की बात नहीं है, वो लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, बहुत जल्दी मचाएं तो आप कह दीजिएगा अब नहीं करेंगे, उन लोगों के जो जी में आए करें, यहां कोई उनका दबैल बैठा हुआ है। पंडित जी ने कहा, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी ने तुरंत जवाब दिया, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित जी ने कहा, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करूं? ये दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है, अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी ने जवाब दिया, दुख सुख में काम ना आऊंगी तो फिर मैं किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वो बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थीं। उन्हें अपने अंगों में फिर से जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वो सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वो मेरी पुत्री है तो नहीं? इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने, ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहां आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से ये संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंधेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूं और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है, मैं ना रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे और कौन जाने साधु सन्यासी न हो जाएं, घर में कैसे मन लगेगा। वो पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी, उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में न लगता था, घंटे दो घंटे बैठकर वापस चले आते। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे। सास ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी, उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आया। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा वो अपने घर को ही रहेगी, फिर चौबे जी से नाता ही टूट जाएगा। वो इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित जी ने कहा, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास ने कहा, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पंडित जी ने जवाब दिया, करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है? सास ने कहा, पूछने को तो हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर में ही लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं, कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहां पाऊंगी, तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं। अंधा क्या मांगे दो आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने घर के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी है। विंधेश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित हो होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। ये वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह लगती है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह से है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे, मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रच गया। मानो मनाते रहते हैं कि ये मरे तो नई नवेली बहू घर आए। विंधेश्वरी ने कहा, उन्हें याद करते करते बहुत रोया करते हैं, चली आई हूं ना, न जाने कैसे होंगे। माता ने कहा, मुझे भी तो यही डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा कर साधु फकीर न हो जाए। विंधेश्वरी ने जवाब दिया, मुझे भी यही डर लगता है, इसी से तो मैंने मना कर दिया कि अभी जल्दी क्या है शादी की। माता ने कहा, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख भी अधिक होगा। बेटी, सच तो ये है कि वो तुम्ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विंधेश्वरी ने जोर से कहा, ए, हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला है और मैं भी उन्हें पिता। चुप रह पगली, कहने से क्या होता है, माँ ने दलील दी। विंधेश्वरी ने कहा, अरे अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता ने कहा, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नजर नहीं आता। विंधेश्वरी ने बेचैन होकर कहा, क्या कहती हो अम्मा, उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक न सकूंगी, और वो भी कभी न मानेंगे, मानने की बात भी तो हो कोई। माँ ने कहा, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूंगी, बस तू राजी हो जा। याद रख, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं है। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है, 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी जिंदगी कम से कम 70 साल की है। देखने सुनने में भी वो 100-200 के आदमी हैं। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यूह रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल न सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषण का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में विंधेश्वरी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूं कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही माँ।
1: चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था।

विंधेश्वरी आज वधू बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले वो चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सजधज आज देखने योग्य है। तंजीब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई संवरी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंधेश्वरी आभूषणों से लदी हुई, भारी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल एक संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूं, उनके कंधों पर बैठी हूं, उनकी पीठ पर सवार हुई हूं, कैसे उन्हें मुंह दिखलाऊंगी। अगर मैं पिछली बातें सोचूं तो ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे जिसके लिए मैंने पुत्री बनना स्वीकार किया, वो पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंधेश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कि कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोली, मूर्ति की तरह खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वो बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की ये निर्दय लीला, ये क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी बोलती क्यों नहीं, क्या मुझसे नाराज हो? विंधेश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वो कितने दिनों से सुनती चली आ रही थी। आज वो व्यंग से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गईं और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वो दो कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी, सदेह, साकार, सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले, बिन्नी देखो, देखो वो क्या है? बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा, कुछ न था, फिर कहा, क्या है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी ने कहा, अब गायब हो गई, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है, मंगला थी। बिन्नी ने कहा, बहन? चौबे जी ने जवाब दिया, हाँ हाँ वही थी, खिड़की से अंदर झांक रही थी। देख देख, मेरे तो रोई खड़े हो गए। विंधेश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहां नहीं रहूंगी। चौबे जी ने कहा, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वो इसी घर में रहती थी ना, यहीं सोती थी, इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी हो गई। ये कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह, सजीव, साकार मंगला। अब उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार भी न था, उसमें हास्य भरा हुआ था। मानो वो इस दृश्य पर हंस रही हो, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी
फिर वही बात हुई। वो देखो मंगला खड़ी है। विंधेश्वरी चीख कर उनके गले से चिमट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी ने कहा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी भैया जी। तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है भैया जी। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल से दुर्गा पाठ करवाऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका न हुई थी, तुमसे क्या कहूं, मालूम होता है, होगा। उस बात को जाने दो, यहां बड़ी गर्मी पड़ रही है। अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों ना चले। विंधेश्वरी ने कहा, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं करता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना, मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी। पंडित जी ने कहा, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है, फिर समझ में नहीं आता ये स्वरूप क्यों कर दिखाई देता है। मैं सच कहता हूं बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर ये दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों में सिर टकरा रहा होता, या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंधेश्वरी ने कहा, मंसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं, मकान भी मिलते हैं, मैं अपने एक मित्र को लिखे देता हूँ, वो कोई मकान ठीक कर रखेंगे वहाँ। बात पूरी भी न होने पाई थी कि न जाने कहाँ से जैसे आकाशवाणी हो आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, भय से थर थर कांपते हुए बोले, बिन्नी यहाँ से चलो, न जाने कहाँ से आवाजें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। ये ध्वनि सहस्रों कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे की एक एक वस्तु से यही आवाज आ रही थी। बिन्नी ने रो कर पूछा, कैसी आवाज थी। पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं, कहते हुए लज्जा आती है। बिन्नी ने कहा, जरूर जरूर बहन जी की आत्मा है, जरूर उनकी आत्मा है। बहन मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चाहा था। पंडित जी ने कहा, बिन्नी फिर वही आवाज आ रही है, फिर वही आवाज आ रही है बिन्नी। हाय ईश्वर, मैं सुन नहीं सकता, मैं कहां जाऊं, मेरे तो रोम रोम से वही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया है। कहां जाऊं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। ये कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा वो भागने लगे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वो गिर पड़े, उन्हें मूर्छा आ गई। विंधेश्वरी भी दौड़ी, वो चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी भूत। इसके साथ ही सुनो कहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं,
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं सतदेव दुबे पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
1: 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहा कर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स

0: ने थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़ जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के की भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलकाजी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाड के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों के प्रमुख नाटकों का निर्माण किया। 1971 में उन्होंने फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अलकाजी और दुबे के बीच का संबंध सत्यदेव दुबे के रंगमंच करियर की शुरुआत इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में ही हुई थी। दुबे ने थिएटर यूनिट में अलकाजी के मार्गदर्शन में काम किया और बाद में उनके द्वारा छोड़े गए समूह का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधा युग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधा युग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह अक्खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझ कर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा। एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था, वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे, बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वे कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साईं पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे, बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए, जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे, जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया, क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
0: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा, बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं, बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
1: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
0: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंगकर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
1: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
0: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है, उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वह कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
1: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
0: और मैं दानिश। नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोत,
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदी दिवस के विशेष अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम हिंदी की महिमा।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज है 14 सितंबर का दिन, जिसे प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मना

श्रोताओं, हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है, ये भावना है जन जन की। भारत ही नहीं, आज दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं। शब्द ब्रह्म है और हमारी हिंदी वो ब्रह्म है जो हर भारतीय की वाणी में प्रवाहित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता संस्कृत में कही थी, लेकिन उसे घर घर तक हिंदी ही लेकर आई। भक्त कवियों की प्रार्थनाएं हिंदी में थीं। तो आइए आज हिंदी दिवस पर हम भी हिंदी की महिमा का यशोगान करें। तेरा ही तुझको है अर्पण, हिंदी को हिंदी में समर्पण। हिंदी की महिमा है भारी, सदा अखंड हो कीर्ति तुम्हारी। भारत की परिभाषा हिंदी, ध्वनि स्वरों की आशा हिंदी। इतिहासों का स्वर्णिम हिंदी, नौनिहालों का आगम हिंदी। भारत का यशगान है हिंदी, भारत का अभिमान है हिंदी। आदि सत्य सनातन हिंदी, संस्कृत सुता सात्विक हिंदी। मैं हिंदी की, हिंदी मेरी, जय हो सदा विजय हो हिंदी। भारत के गौरवमय मस्तक पर शोभित अखंड सुहागिनी हिंदी। आइए अब रिश्तों में हम हिंदी का दर्शन करें। भारत का गौरव है हिंदी, जनमानस में सौरभ हिंदी। वत्सलता आमोद सरसमयी, ममता की लोरी में हिंदी। तुतुलाती जिह्वा पर आया, प्रथम शब्द मां प्राण है हिंदी। शैशव के नैपथ्य में हिंदी, पल पल प्रतिपल समृद्ध हिंदी। भाई बंधु सखा मित्र, माँ माँ नाना नानी सी हिंदी। रिश्तों को रिश्तों में बुनती, भगनी हिंदी जननी हिंदी। हर रिश्ते का भेद बताती, आपस में सम्मान सिखाती। शिष्य गुरु नर नारायण से ज्ञान का क्षितिज बताती हिंदी। आदर सत्कारों में घुलकर नमस्कार सादर है हिंदी। बाबा दादा बुआ ताऊ, चाची मामी मौसी सी हिंदी। तू के निश्चल प्रेम में हिंदी, तुम के अपने पन में हिंदी। आप शब्द सत्कार का सूचक, श्रद्धा पूजा भाव में हिंदी। श्रीमान और श्रीमती में, चिरंजीव सौभाग्यवती में। पूज्य और सम्माननीय में, अटल प्रतिष्ठित हिंदी हिंदी। नानी की परिकथा में हिंदी, दादी की अधरों पर हिंदी। गुंजित मधुमय मोहक हिंदी, इठलाती मधमाती हिंदी। श्वासों की सरिता में हिंदी, जीवन की ललिता में हिंदी। शैशव यौवन और जरा में, अमर बेल सी चढ़ती हिंदी। आइए अब हम हिंदी की सार्वभौमिकता का दर्शन करें। शब्दों का भावार्थ है हिंदी, भावनाओं को शब्द है हिंदी। संस्कारों में दक्षित हिंदी, गुणियों में परिलक्षित हिंदी। कृतज्ञता का भाव है हिंदी, क्षमा दया सद्भाव है हिंदी। ऋणी रहेंगे सदा तुम्हारे, धन्य धन्य है माता हिंदी। भीनी भोर उजास में हिंदी, प्रणवाक्षर के ध्यान में हिंदी। संध्या की गोधुली में हिंदी, निशा काल रात्रि से हिंदी। उषा रवि शशि भानु हिंदी, अनल अचल गिरि पावक हिंदी। नक्षत्रों नवग्रहों में हिंदी, गौ गीता गायत्री हिंदी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, धरती हिंदी अंबर हिंदी। ईशान से आग्नेय तक, चहुदिशी सदा सुबासित हिंदी। शीत शिशिर मधुमास में हिंदी, वर्षा ग्रीष्म शरद में हिंदी। प्रकृति के आह्लाद में हिंदी, एकम से पूनम में हिंदी। दसों दिशाएं हिंदी हिंदी, क्षितिज छोर सब हिंदी हिंदी। हर पल हिंदी, हर क्षण हिंदी, सरस सुहानी मधुकर हिंदी। वर्षा की रिमझिम में हिंदी, ऋतुएं तिथियां मौसम हिंदी।
जलवायु परिवर्तन हिंदी, चैत्र आश्विन अगहन हिंदी, वृक्षों की हरियाली हिंदी, पल्लव को पल बल्लर हिंदी, मोती माणिक पन्ना हिंदी, स्वर्ण जड़ित आभूषण हिंदी। आइए अब संगीत और साहित्य में हिंदी का दर्शन करते हैं। सा से षड्ज ऋषभ में हिंदी, ग म प ध नी में हिंदी, न्यास गमक आंदोलन खटका, मुर्की सी लहराती हिंदी, ओमकार आकार में हिंदी, सरगम के अभ्यास में हिंदी, लयकारी तानों में हिंदी, टप्पा ध्रुपद तराना हिंदी, रागों में तालों में तरानों के हर अक्षर में नव हिंदी, दोहे चौपाई छंदों की द्रुत विलंबित लय में हिंदी, छंद समास संधि में हिंदी, नौ रसों के भाव में हिंदी, यत्र तत्र संपूर्ण अपराजित अभिजीत संपूर्ण से हिंदी, अ से अह तक, क से ज्ञ तक, यूं तो है साकार से हिंदी, किंतु ज्ञानी मनीषियों के ज्ञान में निर्विकार से हिंदी, शब्दों से अलंकार है हिंदी, मात्रा से श्रृंगार है हिंदी, लघु से गुरु, गुरु से लघु, आदि से अनंत है हिंदी, जन जन की आस्था में हिंदी, विद्या की पराकाष्ठा हिंदी, कागर में सागर सी हिंदी, सुंदर मधुर परिष्कृत हिंदी, भाषाओं की माता हिंदी, सर्वोत्तम गुरु ज्ञाता हिंदी, लेखों में व्याख्या में हिंदी, पद्यों की सर्वात्मा हिंदी, गद्य में बसी पद्य में रमी, संदर्भ सहित प्रसंग सी हिंदी, उपन्यास जीवनी कथाओं में वैदिक ज्ञान विशारद हिंदी, प्रभु कथा लघु कथा में हिंदी, आयुर्वेद चिकित्सा हिंदी, साहित्य का दर्पण है हिंदी, चिंतन मनन अध्ययन हिंदी, कुशल प्रवक्ता के वाचन में निडर त्वरित तत्पर सी हिंदी, मंझी हुई सी सधी हुई सी मुखर प्रवाहित निर्मल हिंदी, बुंदेली हो या कोई बोली सबको हृदय लगाती हिंदी, पंजाबी उर्दू या सिंधी सबकी सखी सहेली हिंदी, स्वर व्यंजन हर अक्षर हिंदी, नाद ब्रह्म प्रणवाक्षर हिंदी, ज्ञानमयी वेदों की वाणी संस्कृत की हस्ताक्षर हिंदी। श्रोताओं, प्रार्थनाओं से पूजा आरती तक, भक्तों से भगवान तक, नदियों से नगरों तक, आइए अब हम इसी प्यारी सी हिंदी का दर्शन करते हैं। सूरदास मीरा की हिंदी, तुलसी की रामायण हिंदी, भक्ति मुक्ति का मार्ग बताती कल कल कल सरिता सी हिंदी, वेद पुराण योग में हिंदी, सुधामयी गीता में हिंदी, नादमयी सुरभित सी हिंदी, देववाणी की वंशज हिंदी, रोली अक्षत कुमकुम हिंदी, आवाहन पूजन में हिंदी, विनती संकल्पों में हिंदी, अखंड ज्योत सी उज्ज्वल हिंदी, अ उ म को निज ऋण दे भगवान बनाती है ये हिंदी, ओमकार पावन स्वरूप संपूर्ण बनाती शुभ चंद्र बिंदी, प्रातः वंदन आरती हिंदी, कौशिकी दुर्गा भारती हिंदी, सीता राधा गौरी हिंदी, भक्ति शक्ति मुक्ति हिंदी, पुरुषोत्तम नारायण हिंदी, माधव केशव राघव हिंदी, होली राखी दीप मालिका, तीज चतुर्थी नवमी हिंदी, हनुमान के राम में हिंदी, मीरा के घनश्याम में हिंदी, भक्तों के भगवान में हिंदी, मर्यादित साभान है हिंदी, गंगा यमुना कृष्णा हिंदी, कावेरी रेवा में हिंदी, हिंद महासागर सी व्यापक भारत की जलराशि हिंदी, काशी नगरी उज्जैनी में दीप शिखा सी शिवमयी हिंदी, मथुरा धाम शक्तिपीठों में वसुधा की रज रज में हिंदी, भारत के जन एक बराबर समरस की परिचायक हिंदी, एक सूत्र समभाव विमलमन यूं भारत माता सी हिंदी,
देश की ध्वजा पताका हिंदी, जन गण मन अधिनायक हिंदी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में जय हे जय हे जय हे हिंदी। और अंततः एक व्यंग्य देखिए कि इतनी व्यापकता के बाद भी हमारी हिंदी की आज की ये स्थिति। ज्ञानकोश रत्नाकर हिंदी, हिंदी हर दिन हिंदी, हिंद हो गया हिंदी हिंदी, फिर क्यों घोषित है दिन हिंदी। जग की हर भाषा के स्वर में छिपा हुआ हर शब्द है हिंदी, इतनी अविरल इतनी अविचल, फिर क्यों है कुंठित सी हिंदी। आदि अनादि युगों युगों से भारत की पहचान है हिंदी, फिर भी न जाने क्यों देखो अपनों में लज्जित सी हिंदी। यूं सिमटी सी यूं सकुची सी, अपनों में गुमनाम सी हिंदी, अपने ही अस्तित्व के लिए फिर क्यों है लाचार सी हिंदी। फिर क्यों है लाचार सी हिंदी, फिर क्यों है लाचार सी हिंदी। तो श्रोताओं, ये था आज का विशेष कार्यक्रम हिंदी दिवस पर हिंदी की महिमा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन और लेखन भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, वो वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। रेडियो रिपोर्ट में पहले आज हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां शनिवार की शाम महफिल सजी पुराने नगमों की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं गणेश उत्सव के विशेष अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम गणेश उत्सव।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। हम सभी जानते हैं कि ये श्लोक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हमें कोई शुभ कार्य करना होता है तो हम इसी श्लोक का उच्चारण करते हैं, भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं और इन्हीं के नाम से हर शुभ कार्य को आरंभ करते हैं। आज गणेश चतुर्थी का पावन अवसर है। आज के दिन की महिमा के बारे में हम जानेंगे हमारे आज के अतिथि से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम नाम लेते हैं हर शुभ कार्य को करने के पहले भगवान श्री गणेश जी का जी। तो आप भगवान श्री गणेश जी के बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे?
1: भगवान श्री गणेश जी के बारे में तो मैं ही क्या, सारे वेद वेदांत जितने भी सबसे पहले भगवान श्री गणेश से ही शुभारम्भ करते हैं। शुभारम्भ के देवता भी हैं गणपति जी, गणों के भी वह देवता हैं। और सबसे तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो एक डर से भी नाम लेते हैं, विघ्न हर्ता होने के कारण, कि हमारे सारे संकटों का नाश हो और सद्बुद्धि की प्राप्ति, और जिस योग्य जिस कारण से हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल हो, उसके लिए हम भगवान श्री गणेश को सबसे पहले याद करते हैं। और मैं भी भगवान श्री गणेश को अभी याद कर ही रहा हूँ कि आप मेरे सामने हैं और प्रश्न पूछ रही हैं, मुझे उसमें सफलता मिले इसके लिए।
0: बिल्कुल, हमने भगवान श्री गणेश जी का नाम लेके इस कार्यक्रम को भी आज आरंभ कर ही दिया है। हमें करनी होगी उनके स्वागत की तैयारियां, यानी कि हमें घर में किस तरह से साज सज्जा करनी चाहिए, उस बारे में भी कुछ बताएं।
1: सबसे अच्छा ही है, क्योंकि जब हम किसी धार्मिक कार्य को प्रारंभ करते हैं उसको प्रारंभ करने से पहले तो घर में साज सज्जा हम करते ही हैं। और वास्तु की उत्पत्ति भी इसीलिए हुई है कि हम भगवान के घर को कैसे सजाएं, या हमारे कोई देवी देवता आते हैं, हमारे यहाँ कोई शादी विवाह के मांगलिक कार्य होते हैं, उसमें घर की एक अलग साज सज्जा का विशेष महत्व होता है। आज की साज सज्जा का भी इसी प्रकार से एक महत्व है। एक दिन पहले तो इसके जाले घर के तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि जाले इस साधना में थोड़े से नुकसान करते हैं। दूसरा, सुबह घर में झाड़ू पोछे लगाकर वहाँ पोछे से पानी डालकर थोड़ी सी हल्दी पानी में मिलाकर उससे पोछा लगा देना चाहिए, क्योंकि भगवान हरिद्रा के माध्यम से कई प्रकार के घर में दोष बन जाते हैं, कोई नज़र दोष बन जाते हैं, कई भूमि दोष बन जाते हैं, तो वह दोष घर में नहीं रहता है। तीसरा, मुख्य द्वार के ऊपर बंदर बार, जो आम के और आपने अशोक के पत्ते को लटका हुआ देखा होगा, तो आम के पत्तों का आज विशेष महत्व होता है, आम के और अशोक के पत्ते का। अशोक शोक करने वाला होता है और आम के पत्ते से किसी भी प्रकार की बाधाएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं, तो इस प्रकार से तोरण सजाया जाता है। तो यह घर की वास्तु रहती है। जहां भगवान को स्थापित करना होता है
0: जी,
1: वहां पर एक चौक की स्थापना की जाती है और फिर वहां ठाकुर जी को स्थापित करते हैं।
0: जैसा कि आपने कहा कि चौक की स्थापना की जाती है, चौक मारा जाता है, तो क्या रंगोली भी उस स्थान पर हम बना सकते हैं?
1: बिल्कुल, क्योंकि चौक का जो धार्मिक महत्व है, चौक के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा श्राद्ध पक्ष में जो चौक बनता है उसमें चरण बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आटे से हम चरण बनाते
1: हैं। जी जी हाँ जी। तो ऐसी दीपिका जब पूजन होती है दीपावली के दिन, उस पूजन में दो दीपक आसपास बनाए जाते हैं, सूर्य चंद्रमा इसमें बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से आज के चौक का भी विशेष महत्व होता है। यहाँ चौक चौकोर जरूर लीपा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो रंगोली बनाई जाती है वो गोल बनाई जाती है। इस गोल रंगोली का विशेष महत्व होता है और उसमें कलश होता है, पान का पत्ता होता है, नारियल होता है, ये चिन्ह उसके अंदर बनाए जाते हैं। तो इससे साज सज्जा होती है, इससे सारे विघ्न दूर होते हैं।
0: तो जो आप चर्चा कर रहे हैं वो यानी कि एक विधि विधान है पूरा
1: जी।
0: तो और भी कई सारे विधि विधान होते होंगे, तो उस बारे में भी थोड़ी जानकारी आप दे दें
1: जी। इसमें विधि विधान में यही होता है कि जब हम कोई साधना करें उसमें बाधाएं ना आए, इसके लिए विधि विधान होते हैं। जब हम घर के बाहर, आपने साउथ इंडिया कभी गए हों तो वहां पर तो स्थिति है, सुबह 5 बजे घर की महिलाएं उठ ही जाती हैं, वो पानी छिड़क कर छोटी सी रंगोली पर रंगोली बना देती हैं। उस रंगोली का ही मतलब होता है संपन्नता और हमारे संस्कार लगातार बचे रहते हैं। सबसे पहला काम आज भी यही किया जाता है, घर के बाहर पानी छिड़क दिया जाता है। गाय का गोबर मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है, और उसके ऊपर रंगोली को बना दिया जाता है। ऐसा करने से घर में शांति भी मिलती है और उपद्रवी तत्व जो इन त्योहारों के समय में आपके घर में घुसने के लिए देवी देवता लालायत हैं, तो वहाँ अदृश्य शक्ति जो गलत हैं ये भी आपके घर में घुसने को तैयार रहती हैं, यदि आप उस चीज़ को अनुष्ठान को नहीं करते हैं तो।
0: जी जी जी।
1: जब हम रंगोली बनाते हैं तो इस प्रकार से हमारी इसमें रक्षा होती है। किचन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि महिलाएं ही इस त्यौहार को या कोई भी त्यौहार हो बिना उनके पूरा होता ही नहीं है। किचन में अच्छी आपकी ऊर्जाएं बनी रहें उसके लिए उन भगवान के नाम का एक दीपक भी लगाया जाता है प्रातः कार्यकाल, तो उसके माध्यम से हम अपने घर की शुद्धि करते हैं और जो प्रतिष्ठा हम करते हैं उसका हमें पूरा पूरा फल प्राप्त होता है।
0: बिल्कुल आचार्य राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब प्रतिमा हम घर पे लाते हैं, आजकल घरों में प्रतिमा बिठाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, एक चलन भी कह सकते हैं हम, चलन चल गया है, क्योंकि पहले तो मंदिरों में ही जाकर हम पूजन किया करते थे, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है या क्या कर सकते हैं हम?
1: अब मैं जो देख रहा हूँ साधना में और शास्त्रोक्त विधानों में और मार्केट में आजकल जो प्रसिद्ध हो रहे हैं इनमें काफ़ी सारा अंतर है, क्योंकि पहले आपने कई बार पूजन में देखा होगा एक ब्राह्मण आता है, एक सुपारी लेता है, उसको ऊपर आटी बनाकर रख देता है, उनकी ये आपके गणेश जी हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक्चुअली ये विधान शास्त्रोक्त विधान है कि हम गणेश जी को प्रतीक स्वरूप में सुपारी अर्थात जो चीज़ गोल होती है उसके रूप में भगवान को प्रतिष्ठित कर देते हैं। और विशेष रूप से यही विधान होता है जब कोई अचलायमान मतलब जिनको विसर्जित ही करना है तो उनकी जो मूर्ति बनाई जाती है वो इसी प्रकार की होती है, या तो आप मिट्टी का छोटा गोल बना लें और उसको गणेश जी के रूप में मंत्र से, क्योंकि मंत्र की ही इसमें वैल्यू होती है, सुपारी की कोई वैल्यू नहीं, जब भगवान गणेश का मंत्र उसमें पहुँचता है जागृत हो जाती है, मिट्टी की गणेश की जो एक स्वरूप उसमें मंत्र पहुंचता है वह जागृत हो जाता है, मेटल की जो मूर्ति होती है घर में होती है उसमें जब मंत्र पहुंचता है वह जागृत हो जाती है, तो कुल मिलाकर इसमें जागरण के मंत्रों का विशेष महत्व होता है और उन्हीं का ही होता है। लेकिन आज प्लास्टर ऑफ पेरिस चल रहा है, आजकल तो एक नया, अब मुझे तो डपोसला ही कहना पड़ेगा क्योंकि इसकी जानकारी मुझे है कि इन मूर्तियों में कोई दम नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी बड़ी मूर्ति बना दी जाती है, इनका कोई औचित्य नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर आपका मंत्र ही काम नहीं करता यदि आप साधना करने वाले व्यक्ति हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सामने यदि आप साधना करेंगे, क्योंकि उसमें जान नहीं होती है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगे जिस चीज से ना निकलें उसकी मूर्ति बनाना किसी काम का नहीं होता है, इसलिए मेटल की भूमिका होती है, इसलिए सुपारी की भूमिका होती है, इसलिए मिट्टी की भूमिका होती है, क्योंकि मिट्टी में सबसे ज्यादा तत्व होते हैं और सबसे जल्दी मंत्र पर मिट्टी काम करती है, इसलिए मिट्टी के गणेश बनाने का विशेष रूप से इसमें विधान होता है।
0: बिल्कुल, हमने मिट्टी के गणेश जी बना लिए, अपने घर में उनकी स्थापना कर ली, अब हम चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश को हम भोग चढ़ाएं, भोग लगाएं उनके सामने, तो उन्हें बेहद पसंद होते हैं मोदक, तो मोदक के बारे में भी आप कुछ बताएं कि किस तरह से हमें मोदक बनाने चाहिए, कौन से मोदक का महत्व होता है, भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा भी बहुत पसंद होती है, तो इन सब बातों के बारे में भी थोड़ा बताएं।
1: भगवान श्री गणेश जी के जितनी भी जो वस्तुएं उनके भोजन की हों या उनका पेट हो या उनका आकार हो या उनके किए गए कार्य हों, इन सब में कहीं ना कहीं एक साइंस भी है और आपके लिए एक कुछ दिशा दर्शन भी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि गणेश जी का जब आप अध्ययन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक पूरा ब्रह्मांड का ही एक रचना अलग है जो ब्रह्मांड में ही निहित है और उनकी पूजन से हम सब कुछ सिद्ध करते हैं। भगवान के भोग में लड्डू को ले लिया जाए तो उनको लड्डू पसंद है, वो विशेष रूप से लड्डू में बूंदी के जो लड्डू होते हैं ये इनको पसंद होते हैं। दूसरा, अब हमने देखा होगा कि हम गूंजे बनाते हैं
0: जी।
1: तो एक अर्धचंद्राकार गूंजे बनाए जाते हैं, ये गूंजे का विशेष जो प्रचलन है वह प्रचलन दीपावली के समय में होता है, क्योंकि उसमें चंद्रमा और अमावस्या की जो तिथि होती है उसके अनुसार इसकी उत्पत्ति होती है
0: जी।
1: और आज के समय में मोदक का विशेष महत्व होता है, मोदक आपने देखा लड्डू के नुमा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, वह एक जो मोदक अभी बनाते हैं गूंजे का ही एक प्रतिरूप है, गोल रूप से और भगवान को जो चढ़ाते हैं
0: जी, तो मेंदे का हम गूंजा बनाते हैं और उसके अंदर मावा मिष्ठान हम भर देते हैं और उसी को मोदक का एक मोदक रूप बोलते हैं।
1: हाँ। तो उस मोदक में यही होता है कि वह मोदक भी भगवान को चढ़ाया जाता है। लड्डू में बूंदी के लड्डू का विशेष महत्व होता है, इसमें एक तो मेंदे के लड्डू जो बनाते हैं, दूसरा लड्डू चावल के बनाते हैं, तीसरा ये मावे के जो लड्डू बनाते हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन आजकल ये चीजें बनना शुरू हो गई।
0: बेसन के लड्डू भी कई लोग भगवान श्री गणेश,
1: हाँ श्री गणेश जी को बेसन के लड्डू पसंद नहीं है, बूंदी के लड्डू उनको पसंद है, जो चीज जोड़ी जाए वह भगवान श्री गणेश को पसंद होती है, बूंदी जुड़ जुड़ के बनाती है वो उनको पसंद होती है। उनका मोदक होता है उसमें ऊपर से मैदे का बना होता है, अंदर भरा होता है, फिर मिक्स हो जाता है, ऊपर जाके एक टॉप बना देते हैं उसको जोड़ देते हैं, जोड़ना पसंद है, तो भगवान श्री गणेश को जोड़ना पसंद है, तोड़ना पसंद नहीं है, इसलिए उनका सब वही चीज चलेंगी जो लगातार जुड़ जुड़ के बनी होंगी। और इसलिए केले भी जब हाथी को खिलाते हैं उसका भी होता है, पूरे हाथी को जो केले खिलाए जाए पूरा पूरा एक गुच्छा होता है वो दे दिया जाता है, तो आपका काम सिद्ध हो जाता है, उसको एक एक तोड़ के केला नहीं खिलाते हैं।
0: बिल्कुल, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान श्री गणेश के जो मूषक रहता है वो भी बहुत प्रिय रहता है उनको। तो जब हम प्रतिमा लेने के लिए जाते हैं तब कई सारी चीजें हम ढूंढते हैं कि उनके हाथ में मोदक होना चाहिए, साथ में मूषक होना चाहिए और भी कई सारी चीजें उनके हाथ में होनी चाहिए। तो कैसी प्रतिमा लेकर आए घर में हम?
1: इसमें विशेष तो देखो, मैंने भी आपसे थोड़ा सा पहले उल्लेख किया था कि प्रतिमाओं में एक तो प्लास्टर पेरिस की नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की प्रतिमा आप घर में, क्योंकि भगवान छोटे भी हैं तो आपको कोई दोष नहीं है, आपको अपने कार्य सिद्धि से मतलब है तो छोटे भगवान भी चल जाते हैं। चूंकि उनका वाहन ही चूहा है तो बिना चूहे के तो भगवान का आना, और मूषक राज, चूंकि मूषक एक राक्षस था जिसका भगवान ने मान भंग करके उसको अपनी सवारी बना लिया था, तो मूषक राज वैसे शैतान होता है लेकिन भगवान श्री गणेश के कारण वो शैतानी आपके यहाँ नहीं कर पाता है। और जब मूषक के सहित भगवान श्री गणेश को घर में प्रतिष्ठित किया जाता है तो अन्नपूर्णा का घर में वास होता है, कभी भी खाद्यान्न की कमी पूरे वर्ष भर नहीं होती है, इसलिए ऐसी मूर्ति लाते हैं। और दूसरा, मूर्ति जो घर में स्थापित की जाती है, मकान मालिक अर्थात जो कुटुंब का सबसे बड़ा व्यक्ति, उसके पंजे से बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: है ना, तो एक तो ध्यान ये हुआ,
0: दूसरा ये बात है आपने, हाँ,
1: तो इतनी बड़ी मूर्तियों का घर में नहीं होना चाहिए। दूसरा, व्यवसायिक स्थान पर यदि हम मूर्ति ले जा रहे हैं तो व्यवसाय का जो प्रतिष्ठान का मालिक है उसके हाथ के बराबर अर्थात कोहनी से लेके ऊपर के पंजे की टॉप तक एक से डेढ़ फीट की लगभग मूर्ति होती है, उससे बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए। साधना यदि हम कर रहे हैं तो जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसकी तर्जनी पहली उंगली से बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो भगवान पूरे सामने हमें दिखना चाहिए। मूर्ति जितनी बड़ी होगी मालूम पड़ा उनका पेट ही दिख रहा है, किसी का हाथ दिख रहा है, किसी की सूंड दिख रही, तो हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जितनी मूर्ति छोटी होती जाती है, जितना अणु स्वरूप होता जाता है उतना ही विस्फोटक होता है। तो छोटी मूर्ति का विशेष रूप से इसमें विधान होता है, बड़ी का नहीं होता है। बहुत बड़ी मूर्तियों को घर में नहीं लगाना चाहिए और आदमकद मृत्यु वाले लोगों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए, वह भी प्रेत बाधाएं देते हैं। तो उसी प्रकार से देवताओं की ज्यादा बड़ी मूर्ति घर में प्रतिष्ठित करने से उनके उतने अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कार्य सिद्धि के लिए हम भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को घर में लाते हैं तो हर किसी के मन में होती हैं बहुत सारी कामनाएं भी। सभी चाहते हैं कि हमारी कामना पूर्ति हो जाए, जल्द से जल्द हम भगवान से आशीर्वाद मांगे और तुरंत हमें फल की प्राप्ति हो जाए। खैर, ऐसा तो नहीं होता, तुरंत तो फल नहीं मिलता। कहते भी है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज तो होती ही है कि हमारी कामना पूर्ति हो, तो वो कैसे हो सकती है?
1: कामना पूर्ति तो भगवान का नाम लेने से, उनके सामने कुछ बोलने से जरूर पूरी हो जाती है, परंतु भगवान श्री गणेश की जहाँ बात चल रही है, यहाँ सबसे जल्दी कामना पूर्ति के लिए दूर्वा चढ़ाने का इनमें विशेष महत्व होता है। दूर्वा चढ़ाने के 12 मंत्र भी हैं, उन मंत्रों को एक एक बोलते जाएं, दूर्वा उनको चढ़ाते जाएं, तो उससे विशेष फल मिलते हैं और आपकी कामना भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए उन 12 मंत्रों का प्रतिदिन जाप करते हैं, 12 दूर्वा उनको रोज चढ़ाते हैं, प्रतिदिन से प्रातः से लेके आखिरी दिन जिस दिन उनको विसर्जन करते हैं तब तक उनको उस मंत्र से दूर्वा चढ़ाते हैं, आपके कार्य जरूर इसमें सिद्ध हो जाते हैं।
0: हम चाहेंगे कि वो 12 मंत्र आप हमें अवश्य ही बताएं।
1: उसमें एक मंत्र होता है सुख मुखाय नमः, एक दंताय नमः, कपिलाय नमः, गज करण काय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्न नाशाय नमः, विनाश काय नमः, धूम्र केतवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः, भाल चंद्राय नमः, गजाननाय नमः। इन मंत्र को एक एक मंत्र बोलते हैं और दूर्वा चढ़ाते जाते हैं और जो हमारी मनोकामना होती है, पहले एक चोकोर पेपर इसमें लेते हैं, तो उसके ऊपर हम अपनी मनोकामनाओं को लाल अक्षर से लिखते हैं, उस चोकोर पेपर की दो घड़ी करते हैं और भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनके कपड़े के नीचे उसको रख दिया जाता है। एक वर्ष के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है।
0: जैसा कि आपने 12 मंत्र भी हमें बताए, तो हम सभी जानते हैं कि इन मंत्रों से हमारे कार्य जो है वो अवश्य ही सिद्ध होते हैं और भगवान की कृपा भी हमें अवश्य ही मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ चीजों से श्राप भी लगता है यदि हम कार्य सही नहीं कर पाते हैं, मंत्रों का गलत ढंग से उच्चारण कर लेते हैं तो। और ऐसी ही एक कहानी जो है प्रचलित है चंद्रमा के श्राप की, कि चतुर्थी के दिन ही हम भगवान श्री गणेश को अपने घर में लाते हैं और चतुर्थी के दिन ही हम चंद्रमा को नहीं देखते हैं, श्राप माना जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ था, वो कहानी आप हमें बताएं।
1: चंद्रमा के श्राप को तो भगवान गणेश जी ने स्वयं ही दिया था, तेजहीन होने का उसे श्राप दिया था, क्योंकि जब भगवान गणेश जी स्वयं एक गणों की सभा में बैठे हुए थे, वहां पर एक छोटी सी उनकी आपस की वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई, उसमें तब ये चंद्रमा ही पीछे मुंह करने के बाद भगवान की खिल्ली उसने उड़ा दिया था। उस स्थिति को देखकर भगवान श्री गणेश जी ने उनको श्रापित कर दिया था कि अब तुम तेजहीन हो जाओ, जब चंद्र को तेजहीन होता हुआ देखा, सारे ग्रहों ने फिर ये देखा कि चंद्र ही तेजहीन हो गए तो पृथ्वी पर तो ना जड़ी बूटी रहेंगी ना रात्रि का, क्योंकि जो भी पौधे बढ़ते हैं रात्रि में ही बढ़ते हैं। मनुष्यों को भी सपने आते हैं रात्रि में आते हैं, मनुष्य भी जो तरक्की करता है रात के सोने के बाद ही करता है। सारी कुछ सृष्टि ही जीरो हो जाएगी यदि चंद्रमा क्षीण हो गए तो। फिर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न किया। प्रसन्नता के बाद भगवान श्री गणेश जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को वरदान, दूसरे देवताओं को बोला कि मैं चंद्रमा को एक दिन के लिए मुक्त कर सकता हूँ भाद्र पक्ष के लिए। फिर सब देवताओं ने जाकर चंद्रमा को बताया कि हमने भगवान श्री गणेश को मना लिया है और उन्होंने बोल दिया है कि इस तरीके का वह आपको श्राप से मुक्त करके कुछ लाभ देना चाहते हैं, उसके लिए आप उनके पास जाएं, उनकी साधना करें। तब चंद्रमा ने आकर भगवान श्री गणेश की साधना प्रारंभ की। साधना उनकी 12 दिन तक चली और इंद्र देवता ने बीज मंत्र का उनको जाप दिया
0: जी।
1: गम जो मंत्र है सबसे पहले इंद्र ने ही चंद्रमा को दिया था और उस मंत्र को जब जाप करना उन्होंने शुरू किया, ऐसा करते करते 12 वर्ष लगे। 12 वर्ष में भगवान श्री गणेश उनसे प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दर्शन करेगा सिर्फ वही श्रापित होगा, इसके अलावा तुम श्राप से मुक्त हो रहे हो। तो ऐसा उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और आज इसीलिए रूप में इस रूप में उनको मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, यानी कि भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को खुद श्रापित किया था और इस दिन हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए वरना हमें भी श्राप कहीं ना कहीं लग जाता है।
1: क्योंकि इसमें तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए, तो उन्होंने भी चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे तो उन पर भी स्वयं तक मणि की चोरी का आरोप लगा था। तो आम व्यक्ति की तो बात ही क्या है, कुछ ना कुछ दोष इसमें बनता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। एक प्रश्न और मन में उत्पन्न हो रहा है, हम प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग प्रतिमाओं को जब घर में लाते हैं, कुछ लोग 1.5 दिन के लिए लाते हैं, कुछ 3 दिन के लिए, कुछ 8 दिन के लिए लाते हैं, जो 11 आती है डोल 11 जिसे कहते हैं, घर की प्रतिमाओं को उस दिन विसर्जित कर दिया जाता है, कुछ लोग 14 अनंत 14 जो आती है उसको विसर्जित करते हैं, तो सही दिन सही मुहूर्त कौन सा होता है?
1: इसमें मुख्य यह रहता है, जैसे इसके एक तो अलग अलग सिद्धांत होते हैं, 3, 5, 7 दिन इनका विशेष वो रहता है कि ऑड नंबर से में इनको रखा जाए, ये सिद्धि को देने वाले होते हैं। अब होता है कि जो व्यक्ति 1 दिन लाकर रखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के घर में कोई शुभ कार्य होने वाला हो तो फिर भगवान श्री गणेश जी को 7 दिन के लिए स्थापित किया जाता है
0: जी।
1: या एकादशी तक के लिए इसको स्थापित करते हैं। और यदि कहीं कोई ऐसी घर परिवार में बाधा चल रही है जिसके कारण हम बहुत ज्यादा
0: विधि विधान से पूजन नहीं करते
1: तो फिर ऐसे में 12 दिन के लिए स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इनको यहाँ घर से हटाते हैं। और दूसरा, यदि आप सामान्य रूप से 1 दिन और 1.5 दिन के लिए उनको रखते हैं तो उसमें हमारी साधना पूरी हो जाती है। 1 या 1.5 दिन का विशेष जो विधान होता है भगवान श्री गणेश के आगमन का विधान होता है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, दूसरे दिन उनके लिए भोजन करा दिया जाता है और वहाँ से विदा कर दिया जाता है। इनके उद्देश्य अलग अलग हैं, 1 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन, पर उसके अनुसार इनको बिठाया जाता है। जो आपकी मनोकामना जैसी होती वैसी पूरी करते हैं। सामान्य यदि आप बिठा रहे हैं तो 1 दिन में आपको 1 से 3 दिन के अंदर में भगवान को विदा कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल, भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं उनके, तो 2 जो बहुत ही खासे मशहूर कहूंगी मैं, मशहूर जो फेमस नाम है उनके, उनकी कथा के बारे में, उनके पीछे क्या कहानी है इस बारे में आप बताएं। पहला हम बात करना चाहेंगे विघ्नहर्ता जो उनका नाम है उस बारे में।
1: विघ्नहर्ता भगवान का जो नाम है ये नाम भगवान परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ है
0: जी।
1: भगवान परशुराम जी के समय में कहा जाता है जब तक वो भगवान शिव पार्वती जी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा ही जब भगवान शिव पार्वती जी साधना में थे उस समय जब दर्शन करने पहुंचे तो वहां ड्यूटी भगवान श्री गणेश की लगी हुई थी। उस लगी हुई ड्यूटी में जब ये पहुंचे तो इन्होंने उनको मना किया, परशुराम जी को रोका
0: जी।
1: उन्होंने विनय करने के बाद भी ये नहीं माने, तब उन्होंने गुस्से में हट विघ्नहर्ता इस तरह से उनको बोला था, तो विघ्नायक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हीं के माध्यम से विघ्न दूर हुए इसलिए विघ्नहर्ता उनका बाद में नाम हुआ। फिर उसी समय में एक कहानी उनकी एक दंताय वाली भी आती है, जब उनका आपस में विवाद शुरू हो गया तब उनका जो त्रिशूल था, फरसा जो था, उस फरसे को परशु बोलते थे। परशु भगवान शिव का अस्त्र है जो भगवान परशुराम जी को उन्होंने दिया था। उस अस्त्र को गणेश जी के ऊपर उन्होंने चला दिया था कि गणेश जी को वो जीत नहीं पा रहे थे, तो अब अंतिम था इस शस्त्र का उपयोग किया जाए। और उस शस्त्र का मान रखते हुए कि चूंकि भगवान शिव का वह शस्त्र था, उन्होंने अपने दांत के ऊपर उस शस्त्र को झेला और अपने एक दांत अर्थात बाएं वाले दांत को उन्होंने उससे कटवा लिया था और वही दांत वापस उठाकर उन्होंने परशुराम जी को भेंट कर दिया था। फिर उसी में परशुराम जी ने उन्हें एक दंताय नाम भी प्रदान किया था, तो विघ्नहर्ता और एक दंत, जो दो नाम है वह दो नाम भगवान परशुराम के दिए हुए हैं और उन्हीं की कृपा से आज हम सब कुछ प्राप्त करते हैं इन दो नामों के माध्यम से।
0: बिल्कुल, तभी तो उन्हें कहते हैं दुख हरता सुख करता। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान श्री गणेश हमेशा ही कहते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और इसी तरह की एक कहानी भी है। एक जगह के राजा भगवान शिव और पार्वती को आमंत्रित करने आए थे अपने घर पे भोजन के लिए, और फिर उन्होंने भगवान श्री गणेश को भेजा था शंकर जी ने कि आप जाइए अपने मूषक के साथ और उनके घर पे आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए, और वो पूरा भोजन खा गए थे और उसका पूरा अहंकार जो है वो टूट गया था। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अहंकार की बात हो रही है?
1: अहंकार में देखो, वैसे तो मोनिका भगवान श्री गणेश जी हर तरफ ही साक्षात रूप से हर स्वरूप में विराजमान है, क्योंकि जब उनके 108 हम नाम पढ़ते हैं तो उसमें इन सभी प्रकार का उनका उल्लेख मिल जाता है। जहाँ तक अहंकार का, जब हम कोई भी साधना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको इस बात का ही आता है कि हमने इतना पैसा खर्च किया, इतने लोगों को बुलाया, इतने दिन मैंने साधना की, 1,00,000 मैंने जाप किए, इतने मैंने लड्डू चढ़ाए, तो ये अहंकार में ही आता है। आप संख्या यदि बताएंगे साहब मैंने 1,00,000 का अनुष्ठान किया, तो 1,00,000 जो संख्या थी वह भी अहंकार है। इस अहंकार आपके मन में नहीं आए, उसी के लिए भगवान श्री गणेश सबसे पहले विराजमान होते हैं। क्योंकि भगवान श्री गणेश जी के जैसे धूर्माक्ष, जब आपको ये दूर्माक्ष का उन्होंने वध किया था, उसमें भी कहानी है कि जब हम अनुष्ठान करते हैं तो यज्ञ करते हैं, हवन में धुआं बहुत उठता है, कई बार धुआं दूषित हो जाता है यज्ञ, तो उसमें धुआं निकलना शुरू होता है, तो दूर्माक्ष नाम से धुआं नहीं लगता है। दूसरा होता है बंदी राक्षस को भी उन्होंने मारा था, उसमें काराग्रह या अर्थात कोई जैसे बाधा आ रही है तो वह बाधाएं इसमें दूर होती हैं। तीसरा नरंतक, जो मनुष्यों से संबंधित कोई बाधाएं होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री गणेश के जब हम इन नामों का देखते हैं तो उससे ही मालूम पड़ जाता है कि कितने लाभ देते हैं। जैसे जम्हा राक्षस को उन्होंने मारा, तो जम्हा राक्षस को मारने का भी यही उल्लेख है कि जम्हाई के माध्यम से भी हम अपने हवन को दूषित कर लेते हैं। जम्हाई आती है ना, उबासी जो आना शुरू होती है, वह भगवान श्री गणेश की कृपा से दूर होती है। देवान तक देव दोष के कारण कई बार हवन दूषित हो जाते हैं तो वह दोष भी नहीं आते। वीर विनायक बोलते हैं, वीर राक्षस को मारा था तो ब्रह्म राक्षस भी दोष दूर करता है। मयूरेश्वर, जिसमें त्रि संध्या में कहीं दोष बनता है तो भगवान श्री गणेश से दूर होता है। कमलासुर माने धन के लोभ के कारण और उस पैसे से हमने हवन किया तो वह भी शुद्धि में आता है। तो भगवान श्री गणेश की कृपा से जो दोष हमारे अंदर होते हैं वह दोष सभी दूर होते हैं, और उसके बाद जो हम अनुष्ठान कर रहे होते हैं हमारा अनुष्ठान ये सफल हो जाता है।
0: बिल्कुल आचार्य जी, हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चर्चा इस कार्यक्रम में बहुत ही आवश्यक है कि भगवान श्री गणेश जी को भोजन करना बहुत ही प्रिय है। तो ये जो 11 दिन के भगवान जी हमारे घर में विराजमान होते हैं, आते हैं, तो ऐसे कौन कौन से खास पकवान है जिनका हम उन्हें भोग लगा सकते हैं?
1: भगवान के भोजन का महत्व जो होता है ना, ये अन्नपूर्णा देवी को खुश करने के लिए होता है। भगवान श्री गणेश जब हमारे यहाँ विराजमान होते हैं, इस समय में जो अन्न वगैरह उगता है, इस अन्न का भगवान को भोग लगाया जाता है। गेहूं है, सभी प्रकार के फल हैं, इन फलों का जब हम भगवान श्री गणेश को भोग लगाते हैं तो ये हमेशा हमारे यहाँ पूरे वर्ष भर अन्नपूर्णा की कृपा इसमें बनी रहती है। भगवान को गोल गोल वस्तुएं पसंद होती हैं, दाल बाटी, ये इस तरीके के उनके होते हैं। फल जो होते हैं उनको सेव फल प्रिय होता है, दूसरा केला उनके लिए प्रिय होता है, नारियल उनके लिए प्रिय होता है, तो उस तरीके के जो फल होते हैं इनका भोग लगाया जाता है। पूरी सब्जी का भी इनका विशेष महत्व होता है। खीर का भोग भगवान कृष्ण को बहुत पसंद होता है, हलुए का भोग भगवान गणेश जी को बहुत पसंद होता है, तो इसमें हलुए का भी भोग लगाया जाता है। लोग जो व्रत करते हैं और व्रत के लिए जो सामग्री बनाई जाती है वह भी भगवान को समर्पित करते हुए ग्रहण करना चाहिए, तो उसमें जो अहम का दोष होता है वह दोष भी इसमें समाप्त होता है। तो जो हम भोजन सामग्री घर में बना रहे हैं, पक्की भोजन सामग्री भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय होती है। रोटी और चावल इसमें शायद नहीं चढ़ाए जाते हैं, चावल यदि चढ़ाते हैं तो फिर उसमें घी और शक्कर, उसमें ये घी या गुड़ उसमें जरूर डाला जाता है, तब भगवान उस चावल को स्वीकार करते हैं।
0: बिल्कुल, और व्रत का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन की चतुर्थी का लोग व्रत रखते हैं, जिस दिन भगवान घर में आते हैं और जिस दिन हम उन्हें विदाई देते हैं उस दिन, दोनों ही दिन का बहुत महत्व रहता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं पूरे 11 दिन का व्रत रखते हैं, तो इस बारे में भी आप कुछ बताएं कि कौन से दिन व्रत रखना चाहिए और कौन से दिन नहीं।
1: आप चाहे एक दिन का व्रत रख सकते हैं, आप चाहे 7 दिन का रख सकते हैं, चाहे 13 दिन का रख सकते हैं, क्योंकि व्रत से आपकी वृत्तियां शुद्ध होती हैं। और वृत्तियां शुद्ध करने के लिए जरूरी नहीं कि आप उपवास ही रखें, भोजन को आप कम कम भी 2-3 बार ले सकते हैं। कई शुगर के मरीज हैं, नहीं रख पाएंगे व्रत, तो ऐसे समय में भोजन को तोड़ तोड़ कर भी किया जा सकता है, सुबह खा लिया फिर दोपहर फिर शाम, इस तरीके से सूक्ष्म भोजन का व्रत होता है। व्रत का मूल सिद्धांत ये है कि जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं वह मंत्र जाप हमारे पूरे होने चाहिए, आप हमारा व्रत पक्का हुआ, ये जिस उद्देश्य को हम लेकर भगवान को बिठा रहे हैं वह उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए इस तरह से व्रत किए जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बीमार हैं और व्रत करना शुरू कर दिया तो हो सकता है आपको हाइपर एसिडिटी हो जाए, या आपको सिर्फ डिस्की की इसमें शिकायत हो जाए, या बात से संबंधित आपके रोग उभर जाए, क्योंकि भूखे रहने से बात रोग उभरते हैं, ये भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में फिर व्रत करेंगे आपके जरूर फलित होंगे।
0: बिल्कुल, व्रत जरूर फलित होंगे, भगवान का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारी कामना की पूर्ति भी होगी। भगवान का आशीर्वाद हमें हमेशा ही मिलता रहता है, ये विशेष दिन माने जाते हैं, इन दिनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, लेकिन हम नियमित बाकी दिनों में भी यदि भगवान की पूजन आराधना सच्चे हृदय से करते हैं तो भगवान हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करते हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जब हम भगवान जी को, श्री गणेश जी को विदाई देते हैं, विसर्जन करते हैं, उस समय की महत्वता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से उनका विसर्जन करना चाहिए, क्या विधि विधान होता है?
1: इसमें विधि विधान की शुरुआत सबसे पहले होती है जब हम भगवान को 1, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन उस हिसाब से हम लेके आते हैं
0: जी।
1: तो पहले जो मंत्र होते हैं भगवान में, मूर्ति जब हम प्रतिष्ठित करते हैं तो प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं, उनसे भगवान प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। फिर मंत्र जापते हैं कि भगवान अब हमने आपकी सेवा की, सेवा करने में कोई त्रुटि रही हो तो आप हमें उसको क्षमा करें, तो क्षमापन के स्त्रोत होते हैं, क्षमापन मंत्र होते हैं
0: जी।
1: इन मंत्रों के बाद भगवान को वहां से हटाया जाता है। तो ये मंत्र इसलिए बोला जाता है, जब हम पहले आने का मंत्र बोलते हैं भगवान उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जाने का मंत्र बोलते हैं तो वापस वह मूर्ति हो जाती है, फिर उसमें ओरिजिनल स्वरूप उनका नहीं रहता है
0: जी, जी।
1: आप दुकानों की मूर्ति देखेंगे और प्रतिष्ठित मूर्ति देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिष्ठित मूर्ति में कितनी पावर है। और जैसे ही हम आह्वान के बाद विसर्जन का मंत्र बोलते हैं तो मूर्ति से भगवान का स्वरूप जाता है, फिर मूर्ति एक सिंपल जो आपका मेटल है, मिट्टी है, वह कन्वर्ट हो जाती
0: है,
1: धातु बनकर रह जाती है। तो फिर उसके लिए पूजन किया जाता है। इसके पूजन के भी कुछ विशेष विधान होते हैं, जैसे आज आपने देखा होगा लोग पानी में सिरा देते हैं, पानी में सिराने की मूर्ति को कभी भी विधा नहीं रही। आपने भगवान कृष्ण को देखा होगा, उन्होंने कालिया नाग को निपटाया, क्यों? कालिया नाग का जहर था, अर्थात यमुना में जहर फैल रहा था, उसको उन्होंने मारा। नाग के माध्यम से यह दिया है कि जैसे आज कई मलमूत्र मिलते रहते हैं नदियों में, ये भी एक तरह के जहर ही है। आप पेस्टिसाइड डालते हो, ये भी एक तरह का जहर है। मूर्तियां गलत हैं, ये भी एक तरह का जहर ही है। इन जहर की मुक्ति के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लीला की। चीर हरण के माध्यम से ये बताया कि वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए आपको किसी भी नदी में पूर्ण रूप से उतर कर निर्वस्त्र रहकर स्नान नहीं करना चाहिए, नदी का आचमन करना चाहिए, लोटे से स्नान करना चाहिए, साबुन वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण की लीला में तो सबसे पहले ही उल्लेख किया था कि पानी को आप साफ रखें, नदी को आप प्रदूषण से मुक्त रखें। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, विसर्जन के समय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भगवान हमारे यहाँ से निकल लिए हैं तो अब उनमें वो स्वरूप नहीं रहा, सिर्फ एक मिट्टी या एक जो भी मोटल रहा वह रह जाता है, उसकी नदी किनारे पूजन करते हैं, नदी के पानी से उसको स्नान किया जाता है, वो किसी भी पेड़ की जड़ में जाकर उसको रख दिया जाता है। तो मेटल की मूर्ति का तो हम घर में वापस उपयोग कर लेते हैं, लेकिन यदि हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो उसको नदी किनारे पूजन करते हैं, और उस पूजन को करने के बाद वहीं पेड़ के नीचे रख देते हैं, तो हमारा सारा काम सही होता है। यदि वह मूर्ति पानी में डाल दी जाती है तो वरुण देवता का हमें श्राप लग जाता है, तो जल से संबंधित जलोदर जो रोग होते हैं वह रोग हमें हो जाते हैं, अस्थमा की शिकायत हमें बढ़ जाती है, इन्फेक्शन हमें होने लग जाते हैं, महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके के जो जलोदर रोग होते हैं वह रोग हमें बढ़ते हैं, इसलिए हमें पानी का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका अपमान ना हो किसी एक के सम्मान के चक्कर में। ये इसकी थोड़ी सी विधि होती है।
0: बिल्कुल, विधि विधान के साथ यदि हम हर कार्य को करते हैं तो हमें सफलता जरूर ही प्राप्त होती है। आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। श्रोताओं, जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहेंगे, यदि आप भगवान गणपति का पूजन सच्चे हृदय से करेंगे, सच्ची मनोकामनाओं के साथ करेंगे, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी और कार्य सिद्धि भी अवश्य ही होगी। बस यही कहेंगे, गणपति बप्पा मोरिया।

देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे गणेश उत्सव के विशेष अवसर पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अमर कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।
3: हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा समय बीतने के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने कम लिखा किंतु इतना उत्कृष्ट लिखा कि उनका नाम अमर हो गया। ऐसे ही महान साहित्यकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे हिंदी की आधुनिक कहानी के अग्रदूत में गिने जाते हैं। आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हिंदी के साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की।
2: गुलेरी जी बहुभाषाविद, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, निबंधकार, आलोचक, संपादक और विद्वान शिक्षक भी थे। उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, बंगला और मराठी जैसी अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों और भारतीय सभ्यता का गंभीर अध्ययन किया। उनका मानना था कि अपने इतिहास को जाने बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
3: हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के वासी ज्योतिर्विद महा महोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर को जन्म दिया। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इस सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात किया। जब गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहां तक कहना था कि वे 5 वर्ष में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। चंद्रधर बीए की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे।
2: सन 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में बड़ा ही मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का भी वे सख्ती से अनुपालन करते थे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे।
3: कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला की जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक में अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
2: हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
3: अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे।
2: पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं, जो मात्र एक कहानी उसने कहा था के बल पर हिंदी साहित्य के संपर्क में आने वाली पीढ़ियों के स्मृति पटल पर छाए रहे हैं। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी इनकी ये कालजयी रचना निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और त्याग की अमर गाथा है। लेकिन गुलेरी जी ने अपने पूरे साहित्यिक जीवन में केवल एक कहानी नहीं लिखी थी। 1911 ईस्वी में उनकी दो अन्य कहानियां भी प्रकाशित हुई थीं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये दोनों कहानियां भी अपने समय की अद्भुत कहानियां थीं।
3: इन तीनों कहानियों के पात्र साधारण हैं। इन साधारण पात्रों को लेकर गुलेरी जी ने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता क्षण क्षण नए सौंदर्य के प्रकट करने में है। मौलिकता ही वह तत्व है जो किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है। गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन उत्कृष्ट कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यह यश ध्रुव तारे की तरह सदा अटल रहेगा। जहां अनेक लेखक लंबी लंबी रचनाएं लिख रहे थे, वहीं गुलेरी जी ने कम लिखकर भी अमर स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रत्येक रचना गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्तर की है।
2: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य सर्वोपरि है। जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने मानवता को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बना सके।
3: हिंदी के अनन्य आराधक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी अमर कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा जी का साहित्यिक जीवन 20वीं शताब्दी के उन्मेष से प्रारंभ होता है। यह समय पुरातत्व इतिहास तथा भाषा विज्ञान संबंधी अनुसंधानों का था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्य सेवी इस समय अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके थे। ऐसे साहित्यिक परिवेश में गुलेरी जी भी समालोचक, सरस्वती, अभ्युदय एवं आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं के विशेष रूप से जुड़कर हिंदी जगत के बौद्धिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गए थे।
2: विजेंद्र स्नातक के शब्दों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और एकता प्रियदर्शनी हिंदी के उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्होंने पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संबंधों से परिपूर्ण विषयों पर सामान्य भाषा में निबंध लिखे, किंतु भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं विषयानुकूल है। कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाओ इनके बहुचर्चित निबंध हैं। इसके अलावा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निबंधों की बात करें तो शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म और आँख। कविताओं की बात करें तो एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वैनाक, वर्ण, अहिताग्नि, झोंकी कमान, स्वागत और ईश्वर से प्रार्थना। कहानी संग्रह की बात करें तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
3: उस युग के कई अन्य निबंधकारों की तरह गुलेरी जी के लेखन में भी मस्ती तथा विनोद भाव की एक अंतरधारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। हिंदी कहानी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हिंदी की पहली कहानी लिखी गई। दूसरे दशक में कई प्रतिष्ठित कहानीकारों का उदय हुआ। इस दूसरे दशक में ही ऐसी कई कहानियां भी सामने आईं जो हिंदी की अमर कहानियां मानी जाती हैं। इसी दूसरे दशक की उपलब्धि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी कहानियां हैं।
2: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानीकार गुलेरी जी के संदर्भ में जो कहा है वो सर्वथा उपयुक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, पर इन स्वल्प रचनाओं के बल पर वे साहित्य में अपूर्व गौरव के अधिकारी हुए हैं।
3: यूं तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, लेकिन निबंध विधा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले गुलेरी जी हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार भी हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित हिंदी की सर्वकालिक श्रेष्ठतम कहानियों में से एक उसने कहा था है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दो अन्य कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये कहानियां भी उल्लेखनीय हैं। इस परियोजना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में कथ्य और शिल्प एक समीक्षात्मक अध्ययन, इस परियोजना के अंतर्गत उनके द्वारा रचित उपर्युक्त तीन कहानियों के आधार पर साहित्य की इस सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय विधा के प्रणेता के रूप में गुलेरी जी की विशिष्टताओं को रेखांकित करना इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।
2: गुलेरी जी की कहानियां शाश्वत नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से अद्वितीय हैं। उसने कहा था का प्रकाशन आज से एक शताब्दी पूर्व हुआ था। अपने युग के प्राय समस्त प्रतिष्ठित आदर्शों, प्रेम और प्रेमी का आदर्श, युद्ध और वीरता का आदर्श, देशभक्ति और राजभक्ति का आदर्श, सेवा, त्याग और आत्म बलिदान का आदर्श, इन सभी को गुलेरी जी ने अत्यंत कुशलता के साथ इस कालजयी रत्ना में चित्रांकित किया है। आदर्शवाद की दृष्टि से उनकी अन्य दोनों कहानियां भी उल्लेखनीय है। ये आदर्श आज के युवाओं का मार्गदर्शन करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। इन रचनाओं के पुनरावलोकन द्वारा युवा पीढ़ी की मानसिकता को सकारात्मक दिशा में विकसित करना इस शोध पत्र का विशिष्ट उद्देश्य है।
3: परियोजना के लिए हमने शोध प्रविधि की द्वितीयक पद्धति का प्रयोग किया है। तथ्यों के संग्रह के लिए अध्यय रचनाओं पर किए गए पूर्व शोध ग्रंथों, संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं एवं इंटरनेट की मदद ली है। गुलेरी जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं सशक्त कथाकार थे। यद्यपि उनकी प्रसिद्धि का आधार उसने कहा था है, लेकिन उन्होंने दो और कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
2: सुखमय जीवन, ये शीर्षक कहानी 1911 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी छद्म लेखन को आधार बनाकर लिखी गई एक रोचक कथा है। मात्र किताबी ज्ञान के बल पर जीवन के अनुभवों की आंच में तपे बिना लेखक बनने और हर पुस्तक को बिना विवेचन ब्रह्म वाक्य की तरह लेने वालों पर इस कहानी में सशक्त व्यंग किया गया है।
3: जयदेव शरण वर्मा ग्रेजुएट होने के बाद कुछ पुस्तकों से ज्ञान संग्रह करके सुखी वैवाहिक जीवन पर एक पुस्तक लिखते हैं। वे स्वयं अविवाहित हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में उनका अनुभव नगण्य है। समालोचकों द्वारा कहानी की कटु आलोचना होती है और पुस्तक की मात्र 17 प्रतियां बिकती हैं। गुलाब राय वर्मा नाम के एक जागरूक ब्रह्म समाजी तथा उनकी बेटी कमला को यह पुस्तक बहुत पसंद आती है। उन्हें लगता है इस पुस्तक का लेखक बहुत ही अनुभवी होगा, जबकि गुलाब राय की पत्नी का विचार है कि पुस्तक सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी गई है। संयोग से जयदेव शरण वर्मा और कमला की मुलाकात होती है। संक्षिप्त परिचय के बाद एक दिन जयदेव कमला के समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं। कमला और उसके पिता उन्हें खूब फटकारते हैं, लेकिन जब जयदेव उन्हें बताता है कि वह अविवाहित है और पुस्तक उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी है, तो कमला और बाबू गुलाब राय पानी पानी हो जाते हैं और जयदेव के साथ मिलकर कमला का विवाह तय हो जाता है।
2: यह कहानी प्रारंभ से अंत तक छद्म लेखकों और छद्म पाठकों पर तीखा प्रहार कर

0: और अनिवार्य तत्व बन जाते हैं।
1: बुद्धू का कांटा का प्रकाशन भी 1911 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी लेखक की व्यंग दृष्टि स्पष्ट है। यह कहानी एक प्रेम कथा है। इस कहानी में लेखक ने अपने आदर्शवादी चरित्रों की रचना की। कहानी का ढांचा उपन्यास का सा है, इसलिए वे रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी के पिता बाबूजी और इलाही का विस्तृत शब्द चित्र खींचते हैं। इस कहानी का एक अंश पनघट शीर्षक से अलग छपा बताया जाता है। रघुनाथ प्रयाग से पढ़कर आया है और जो गांव के तौर तरीकों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। भागवंती कुएं में पानी भरने वाली महिलाओं के दल में एक ही हंसोड़, चुलबुली और बड़बोली किशोरी है। वह रघुनाथ के बुद्धूपन पर फप्तियां कसती है क्योंकि वह कुएं से पानी का लोटा भी नहीं खींच सकता और औरतों से बात करते करते पसीना पसीना होने लगता है। मजाक और फप्तियां सीमा से कुछ और आगे बढ़ जाती हैं और रघुनाथ बुरी तरह परास्त होता है।
0: फिर वही लड़की नदी किनारे उसे मिलती है और उसकी हर बात की नकल उतारती है। इस पर वह उसे पकड़ने के लिए उठता है और पैर रपट जाने से नदी में गिर पड़ता है। अब भागवंती उसे डूबने से बचाती है। इस भागदौड़ में भागवंती के पैर में कांटा चुभता है, जिसे रघुनाथ निकालता है और अपनी जेब में रख लेता है। संयोग से इसी लड़की के साथ माता पिता द्वारा रघुनाथ का संबंध निश्चित किया गया होता है। विवाह के फेरों के बाद जब वे दुशाले की ओट में एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों हतप्रभ रह जाते हैं। बाद में मिलन के समय भागवंती अपनी उद्दंडता के लिए पति रघुनाथ से क्षमा मांगती है और रघुनाथ रखे हुए कांटे को दिखाकर अपनी मनोभावना को प्रकट करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह कहानी एक प्रेम कथा बन जाती है।
1: 1915 में प्रकाशित उसने कहा था, हिंदी की सर्वाधिक श्रेष्ठतम कहानी है। हिंदी में कहानी विधा का स्वतंत्र विकास इस कहानी से माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि कर्तव्य, त्याग, मानवता और वचन पालन की अनुपम कथा है। कहानी में प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ है। गुलेरी जी तांगे वाले के संवाद में तथा सिपाहियों के वार्तालाप में हास्य, विनोद और जीवन की ताजगी पर उतना ही बल देते हैं जितना प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति पर।
0: यथार्थ चित्रण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सरल भाषा, प्रभावशाली संवाद, मानवीय संवेदना, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट कथानक, इन्हीं गुणों के कारण ये कहानी आज भी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। अभी तक उसने कहा था को लहना सिंह के ही प्रेम और बलिदान त्याग की कहानी के रूप में देखा जाता रहा है। एक पक्षी प्रेम की दृष्टि से पाठ्यक्रमों में इसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसे सूबेदारनी के उदात्त गंभीर प्यार और अडिग विश्वास की कहानी के रूप में भी देखा गया है। इसी आधार पर इसका नामकरण भी हुआ है।
1: यह कहानी कालजयी रचना सिद्ध हो चुकी है क्योंकि इसी एक कहानी के बल पर गुलेरी जी एक शताब्दी से हिंदी जगत पर छाए रहे। विमल राय द्वारा इस कहानी पर फिल्म बनाए जाने के बाद इसकी लोकप्रियता में और भी विस्तार हुआ। यह कहानी प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति की है। आध्यात्मिक इस अर्थ में कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध की ऊष्मा नहीं है, बल्कि प्रेम एक ज्योति की तरह दोनों के हृदय में विद्यमान रहता है और वह अनुभूति इतनी सुखद, इतनी निर्मल है कि युद्ध की विभीषिका भी उसे भंग नहीं कर पाती।
0: अपनी पहली दो कहानियों में गुलेरी जी ने नायक और नायिका के बीच प्रेम की उत्पत्ति की सूचना स्पष्ट शब्दों में दे दी है, किंतु तीसरी कहानी में केवल संकेत दिए हैं, बाकी पाठक के अनुमान के लिए छोड़ दिया गया है। श्रेष्ठ कला होती भी सांकेतिकता में ही है। पहली दो कहानियों में घटनाओं को सीधे सादे कालानुक्रम में रखा गया है। उसने कहा था शीर्षक से ही पाठक के मन में जिज्ञासा क्रमशः तीव्रतर होती जाती है, किंतु इसका समाधान कहानी के अंत में जाकर होता है।
1: अपनी तीन कहानियों के आधार पर ही गुलेरी जी ने हिंदी के विशिष्ट कहानीकार के रूप में ख्याति पाई। पुरानी पीढ़ी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, अमर नाथ झा, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि से लेकर नई पीढ़ी के समर्थ आलोचकों तक उन्हें श्रेष्ठ कहानीकार स्वीकार किया है। जिस प्रकार गुलेरी जी की कहानियों में उनके अनुभव और जीवन दृष्टि में क्रमशः परिपक्वता आई है, उसी प्रकार उनकी कहानी कला में भी। उनकी कहानियों में संयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।
0: अपनी तीनों कहानियों में उन्होंने विकास के 3 सोपान पार किए हैं और हर सोपान पर इनकी कहानी कला परिपक्व होती गई। कथाकार गुलेरी जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कहानी उसने कहा था कि लोकप्रियता का सिक्का आज भी जमा हुआ है। गुलेरी जी विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता की झलक उनकी कहानियों में साफ दिखाई देती है, लेकिन इस विद्वत्ता को उन्होंने ना तो अपने ऊपर हावी होने दिया ना ही अपनी कहानियों के ऊपर। इसका कारण यह था कि वे यथार्थ जीवन और उसके अनुभव से निर्मित हुई हैं। उनकी कहानियों में जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित जो सकारात्मक कथन हमें मिलते हैं, वे उपदेश नहीं हैं, ये जीवन के अनुभव हैं।
1: गुलेरी जी ने न केवल 3 कहानियां ही लिखी बल्कि 1900 से 1922 तक प्रचुर साहित्य सृजन किया तथा अनेक हिंदी लेखकों का मार्गदर्शन भी किया, लेकिन अपनी केवल 1 कहानी उसने कहा था कि बल पर हिंदी साहित्यकाश के नक्षत्र बन गए। एक सर्वेक्षण के अनुसार उसने कहा था न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल है। हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गुलेरी जी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। आखिर ऐसा क्या था इस कहानी में जिसने इसके साथ साथ इसके लेखक को भी अमर कर दिया?
0: यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही प्रेम दिवस, ना गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और ना ही वादे किए जाने का, लेकिन इसके लिखे जाने के 100 साल बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो अनेक लोगों की स्मृति में सबसे पहले इसी कहानी का नाम याद आता है।
1: किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए अर्थ और संदर्भ खुले, हर बार यह लगे कि कुछ और समझने को शेष रह गया है। उसने कहा था इस कसौटी पर 100% खरी उतरती है।
0: सामान्य तौर पर देखा जाए तो 3 विशेषताएं हैं, इसका शीर्षक, फलक और चरित्रों का गठन, जो उसने कहा था को अमर और कालजयी बनाने में अपनी अपनी तरह से योगदान देती है। इसके शीर्षक के साथ ही इसे जानने समझने का रोमांच भरने वाला रहस्य जुड़ा हुआ था। शीर्षक सीधे सीधे पाठकों को खींचता है और उनसे पुकार कर कहता है कि पढ़ो किसने कहा था, किससे कहा था, कब कहा था, क्या कहा था। शीर्षक में वह नाटकीयता है जो पूरे संयोजन को मंच बना देती है।
1: युद्ध और प्रेम की इस कहानी के 2 सिरे हैं। यह कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। वहां के भारतीय सैनिकों, उनकी चूहलबाजियों, अपने वतन की याद और स्मृतियों के बीच
0: 5 खंडों और 25 वर्षों के लंबे अंतराल के युद्ध में सिमटती ये कहानी विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास सी है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के 3 मूल उद्देश्य से जुड़ती हुई उसे अपने विषय बनाती हुई शाब्दिक विवरणों से और अधिक मनोविज्ञान को पढ़ते पकड़ते और उसके चित्रण में रमती हुई यह कहानी कहीं भी अपने विषय से भटकती नहीं है। सोच कर देखें तो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं और उसके मूल में प्रेम ही है। कर्तव्य तो प्रेम का ही एक रूप होता है और देश प्रेम भी तो बड़े और वृहद अर्थों में प्रेम होता है, इसीलिए ये कहानी हर अर्थ में प्रेम कहानी है।
1: अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है, एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर्मन में फैलकर उसके जीवन को किस निर्णायक बिंदु पर ले जा सकती है, प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितने उच्च भूमि पर पहुंचा सकती है, यह इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना ऋजु मार्ग पर नहीं चलती, यह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पर नहीं मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है।
0: यही इस कहानी की अनन्य विशेषता और इसकी शाश्वत लोकप्रियता का कारण है। इसी संदर्भ में विजेंद्र स्नातक ने लिखा है, रचना शिल्प की दृष्टि से यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी।
1: जैनेन्द्र ने एक बार गुलेरी के विषय में कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान थे। उनकी प्रतिभा बहुर्मुखी थी, उनमें गजब की जिंदा दिली थी और उनकी बोली भी अनोखी थी। गुलेरी जी न केवल विद्वत्ता में अपने समकालीन साहित्यकारों से ऊंचे ठहरते थे, अपितु एक दृष्टि से वह प्रेमचंद से भी ऊंचे साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने समसामायिक स्थितियों का चित्रण तो बहुत बढ़िया किया है, पर व्यक्ति मानस के चितेरे के रूप में गुलेरी का जोड़ नहीं है।
0: गुलेरी जी की तीनों कहानियों के पात्र साधारण हैं, लेकिन इन साधारण पात्रों को लेकर उन्होंने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए, वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता ही है क्षण क्षण नए सौंदर्य को प्रकट करने में, और जो तत्व किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है वो है मौलिकता।
1: गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर अपनी इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। ये कहानियां हिंदी कथा साहित्य की अनमोल विरासत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन कालजयी कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यश ध्रुव तारे की तरह अटल रहेगा।
0: खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मान्यता वाले युग में गुलेरी जी खेल को शिक्षा का सशक्त माध्यम मानते थे। बाल विवाह के विरोध और स्त्री शिक्षा के समर्थन के साथ ही आज से 100 साल पहले उन्होंने बालक बालिकाओं के स्वस्थ चारित्र के विकास के लिए सहशिक्षा को आवश्यक माना था। ये सब आज हम शहरी जनों को इतिहास के रोचक प्रसंग लग सकते हैं, किंतु पूरे देश के संदर्भ में यहाँ फैले अशिक्षा और अंधविश्वास के माहौल में गुलेरी जी की बातें आज भी संगत और विचारणीय है। भारतवासियों की कमजोरियों का वे लगातार जिक्र करते रहते थे, विशेषकर सामाजिक राजनैतिक संदर्भों में। हमारे अधःपतन का एक कारण आपसी फूट है। जाति व्यवस्था भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। छुआछूत को वे सनातन धर्म के विरुद्ध मानते थे। उनके अनुसार उदारता, सौहार्द और मानवतावाद ही धर्म के प्राण तत्व होते हैं।
1: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान, ईमानदारी, संवेदनशीलता और उत्कृष्ट कर्म ही किसी व्यक्ति को अमर बनाते हैं। हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।
0: 12 सितंबर 1922 को काशी यानी वाराणसी में उनका निधन हो गया। वे मात्र 39 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, किंतु अपने अल्प जीवन में उन्होंने जो साहित्यिक विरासत छोड़ी वह अमूल्य है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य में महान बनने के लिए रचनाओं की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आज भी उनका नाम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में आदरपूर्वक लिया जाता है।
1: चंद्रधर शर्मा गुलेरी भारतीय साहित्य के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनकी रचनाएं समय की कसौटी पर सदैव खरी उतरी हैं। वे केवल कथाकार ही नहीं बल्कि महान विद्वान, इतिहासकार, भाषाविद और संस्कृति के संवाहक थे। उनकी अमर कहानी उसने कहा था आज भी पाठकों के हृदय को स्पर्श करती है और त्याग, प्रेम, वचन पालन तथा मानवता का संदेश देती है।
0: शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सरस्वती पुत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन विनीता जैन, वाचक स्वर मैं नूपुर शर्मा
1: और मैं वेणु बालन,
0: प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपको हमने बताया कि स्वामी जी अमेरिका से पेरिस होकर लंदन गए थे। लंदन में भी अमेरिका की तरह उनका भव्य स्वागत हुआ। लगभग एक महीने की अवधि में ही उन्होंने लंदन में यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली थी। इसी समय एक भाषण सभा में कुमारी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता से स्वामी जी का परिचय हुआ। ये असाधारण विदुषी महिला एक स्कूल में अध्यापिका थी और विद्वान समाज में उनकी बहुत ख्याति व प्रतिष्ठा थी। कुमारी नोबल स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी सहसा उनकी शिष्या नहीं बनी थी। प्रतिदिन वे स्वामी जी के भाषण व प्रश्नोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से आती थीं और चुपचाप इस अद्भुत सन्यासी को देखा करती थीं। अंत में उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण करने का संकल्प लिया।
1: स्वामी जी ने अमेरिका की तरह इंग्लैंड में भी प्रचार कार्य में यथेष्ट सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड छोड़कर पुनः अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपनी एक शिष्या को लिखा था,
2: इंग्लैंड में मेरे प्रचार कार्य को आशातीत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और ये सुनकर कि अगले सप्ताह मैं फिर अमेरिका जाऊंगा, कई व्यक्ति बड़े दुखी हुए। कई लोग तो इस प्रकार की आशंका प्रकट कर रही हैं कि मेरे चले जाते ही जो कार्य हुआ है उसका परिणाम अनेकांश में नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। मैं मनुष्य या किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता, प्रभु ही मेरी एकमात्र शरण है। वे ही मुझे यंत्र बनाकर कर्म करा रहे हैं।
1: 18 जनवरी सन 1896 को इंडियन मिरर नामक पत्रिका ने स्वामी जी के प्रचार कार्य के संबंध में लिखा था,
3: हमें ये लिखते हुए बड़ा आनंद होता है कि स्वामी विवेकानंद ने लंदन के अनेक विशिष्ट भद्र पुरुषों व महिलाओं की दृष्टि आकर्षित की है। उनकी हिंदू दर्शन व योग संबंधी कक्षाओं में अनेक उत्साही व श्रद्धा युक्त श्रोतागण उपस्थित होते हैं।
1: दूसरे पत्रकार ने लिखा,
4: लंदन नगर की कुछ ऐश्वर्यशालिनी विलासिनी उच्च घरानों की महिलाएं कुर्सियों के अभाव में फर्श पर पैर मोड़कर बैठ गुरु भक्त भारतीय शिष्यों की तरह भक्ति के साथ स्वामी जी के उपदेश सुन रही हैं। ये वास्तव में ही विरल दृश्य है।
1: तीसरे पत्रकार ने लिखा,
5: कैथरस विल्बरफोर्स हैस आदि विशिष्ट धर्म प्रचारकों ने भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ ग्रहण किया है। प्रथमोक्त महोदय के निवास स्थान पर स्वामी जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक पारिवारिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें लंदन के अनेक प्रतिष्ठित भद्र महोदय व महिलाएं उपस्थित थीं। स्वामी जी ने अंग्रेजी भाषी जनता के दिल में भारतवर्ष के प्रति जिस प्रेम व सहानुभूति को जागृत किया है, वो अवश्य ही भारतवर्ष की उन्नति की सहायक शक्तियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगी।
0: लंदन में रहते समय कई बार उन्हें आलोचना भी सुननी पड़ती थी, परंतु अगर कोई भारत की निंदा करता तो वे सहन नहीं करते थे। एक दिन सभा के बीच में स्वामी जी भारत के गौरव का वर्णन कर रहे थे। इसी समय एक समालोचक ने प्रश्न किया,
6: भारत के हिंदुओं ने क्या किया है? वे आज तक किसी जाति पर विजय प्राप्त नहीं कर सके।
2: नहीं कर सके नहीं, कहिए कि उन्होंने की नहीं, और यही हिंदू जाति का गौरव है कि उसने कभी दूसरी जाति के रक्त से पृथ्वी को रंजित नहीं किया। वे दूसरों के देश पर अधिकार क्यों करेंगे? तुच्छ धन की लालसा से भगवान ने हमेशा से भारत को दाता के महिमामय आसन पर प्रतिष्ठित किया है। भारतवंशी जगत के धर्मगुरु रहे हैं। वे दूसरे के धन को लूटने वाले रक्त पिपासु दस्यु न थे। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के गौरव से गर्व का अनुभव करता हूँ।
6: आपके पूर्वज यदि मानव समाज को धर्म दान देने के लिए इतने व्यग्र थे, तो वे इस देश में धर्म प्रचार करने के लिए क्यों ना आए?
2: उस समय तुम्हारे पूर्वज तो जंगली बर्बर थे। पत्तों के हरे रंग से अपने उलंग देहों को रंजित करके पर्वत की गुफाओं में निवास करते थे। क्या वे अरण्य में धर्म प्रचार करने आते?
6: स्वामी जी, आप तो ईसाई है नहीं, ईसाई धर्म के आदर्शों को आप क्या समझेंगे?
2: वे प्राच्य देशीय तथा सर्वत्यागी सन्यासी थे। मैं भी प्राच्य देशीय सन्यासी हूँ। मैं समझता हूँ पाश्चात्य जगत अभी उन्हें पहचान नहीं सका है, उनके प्रचारित धर्म को भली भांति समझ नहीं सका है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाओ तुम अपना सब कुछ बांट दो और उसके बाद आओ मेरा अनुसरण करो? तुम्हारे देश के कितने विलासी लोग ईसा की ये उक्ति कि धनी व्यक्ति के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने की तुलना में ऊंट को सुई के छेद से निकलना अधिक सरल है को सत्य मानकर सर्वत्यागी हुए हैं।
0: आलोचक चुप हो जाते। जब स्वामी जी इंग्लैंड में अपने प्रचार कार्य में व्यस्त थे तभी उनके पास अमेरिका से भक्तों तथा शिष्यों के बार बार लौटने के लिए अनुरोध पत्र आने लगे। इधर उनके मित्र और शिष्यगण लंदन में ही रह जाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगे। अतः ग्रीष्म काल में फिर लंदन लौट आने का आश्वासन देकर उन्होंने अमेरिका जाना ही उचित समझा। इसी बीच बोस्टन की एक धनी महिला ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का सारा व्यय उठाने का वचन देकर उन्हें एक पत्र लिखा जिससे स्वामी जी अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए।
1: इंग्लैंड की शिष्य मंडली को एक समिति का रूप देकर उन्हें गीता तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों की नियमित चर्चा करने का उपदेश देकर स्वामी जी अमेरिका के लिए रवाना हो गए।
0: स्वामी जी की अनुपस्थिति में अमेरिका में स्वामी कृपानंद, अभयानंद तथा भगिनी हरिदासी यानी कुमारी वाल्डो ने उत्साह से प्रचार कार्य चलाया था। न्यूयॉर्क के अलावा बफेलो और डिट्रॉयट नगर में दो प्रचार केंद्र की स्थापना हुई थी। 6 दिसंबर को स्वामी जी लंदन से न्यूयॉर्क आए। बोस्टन के भक्त महिला की सहायता से 29 नंबर स्ट्रीट में दो बड़े कमरे किराए पर लिए गए। स्वामी जी कृपानंद के साथ वहां रहते थे। दोनों कमरों में 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। यहां पर दिए गए व्याख्यानों का संकलन कर कर्म योग नामक भाषणों की पुस्तक प्रकाशित हुई।
1: शिष्य गणों ने उनके भाषणों को लिपिबद्ध करने के अथक प्रयास किए। फिर इंग्लैंड के जे गुडविन न्यूयॉर्क आए और ये दायित्व अपने कंधों पर लिया। वे स्वामी जी के साथ परछाई की भांति जुड़े रहे, हर जगह जाते रहे और भाषणों को लिपिबद्ध किया। बाद में उन्होंने शिष्यत्व भी ले लिया था। राजयोग पुस्तक के अलावा और सभी भाषणों के संकलन गुडविन महोदय के परिश्रम का फल है।
0: अमेरिका के प्रसिद्ध वक्ता श्री रॉबर्ट इंग्रसोल जैसे स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति भी स्वामी जी के अभिन्न मित्र बन गए थे। परंतु पहले उन दोनों में काफी मतभेद थे। फिर यह मित्रता कैसे हुई तो सुनिए। दर्शन व साहित्य में प्रवीण होते हुए भी श्री इंग्रसोल संदेहवादी व भोगवादी थे। धर्म, ईश्वर, उपासना आदि विषयों का वे सदैव ही उपहास करते थे। परंतु वे इतने लोकप्रिय वक्ता थे कि एकमात्र भाषण देकर ही लाखों रुपए कमा लेते थे। उधर दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद कठोर सन्यासी, प्रत्येक धर्म के समर्थक, वेदांत दर्शन के प्रचारक थे। इन दोनों में मेल मिलाप वास्तव में आश्चर्यजनक था।
1: स्वामी जी के स्पष्ट, सरल परंतु स्नेहपूर्ण भावों ने ही इंग्रसोल के दृढ़ हृदय पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतों की विभिन्नता होते हुए भी उस समय के अमेरिका के दो प्रसिद्ध वक्ताओं की मित्रता का ये दृश्य वास्तव में बड़ा मधुर था।

0: न्यूयॉर्क आकर रंग भेद के कारण उपयुक्त मोहल्ले में उचित मकान या परिवेश नहीं मिला था। एक दो दिन बाद उन्होंने कुमारी वाल्डो से कहा,
1: यहाँ का खाना बड़ा गंदा दीख पड़ता है, क्या तुम मेरे लिए पका सकोगी?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी मकान मालकिन से मिलकर रसोई में खाना पकाने की अनुमति लेकर आती हूँ।
1: और बर्तन भांडे?
2: आप चिंता ना करें, वो सब मैं घर से ले आऊंगी।
1: तुम्हारा घर क्या पास ही है?
2: नहीं स्वामी जी, पास तो नहीं है, वो ब्रुकलिन के दूसरी छोर पर है। पर आप चिंता ना करें, मैं सुबह 8 बजे तैयार होकर यहाँ 10 बजे तक आ जाऊंगी और आपका खाना समय पर दे दिया करूंगी।
1: तुम अकेले ही तकलीफ क्यों करोगी? सप्ताह के अंत में 2 दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, वहीं दोनों मिलकर खाना पका लेंगे, ठीक है?
0: कुमारी वाल्डो के साधारण से घर की शांति और स्वतंत्रता के बीच स्वामी जी को बड़ा आराम मिलता था। वे वहाँ नए नए प्रकार के भारतीय तथा पाश्चात्य व्यंजन बनाया करते, बहुत खुश नजर आते थे वहाँ। कुमारी वाल्डो ने संस्मरण में लिखा है,
2: इतने घनिष्ठ मेल जोल के बावजूद मेरे मन में एक बार भी संसार त्याग करने की बात नहीं उठी। यही बड़े आश्चर्य की बात है। उनके साथ भारत जाने के बारे में भी मैंने कभी गंभीरता से नहीं सोचा। मुझे लगता कि मेरा स्थान अमेरिका ही है, तथापि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं उनके लिए नहीं कर पाती। जब वे पहले बार न्यूयॉर्क में आए तब वे सर्वत्र ही अपने नारंगी रंग के वस्त्र पहने रहना चाहते थे। ब्रॉडवे पर ऐसे अग्नि के समान भड़कीले कोट पहनकर चलने के लिए बड़े साहस की जरूरत पड़ती थी। स्वामी जी जब किसी की भी परवाह किए बिना राजोचित मुद्रा में लंबे लंबे डग भरते मेरे आगे चलते और मैं हाफते हुए उनके साथ चलने का प्रयास करती, उस समय सभी लोगों का ध्यान हमारी ओर खिंच जाता और हर व्यक्ति पूछता, कौन है ये लोग? बाद में मैंने उन्हें समझा बुझाकर और भी हल्के रंग का कोट उपयोग करने को राजी कर लिया था।
3: एक दिन स्वामी जी ने वाल्डो की आंखों में आंसू देखकर पूछा,
1: क्या बात है एलन, कुछ हुआ है क्या?
2: क्योंकि जब दूसरे लोग आपको नाराज कर देते हैं तो आप आकर मुझे ही डांटते हैं।
1: देखो, मैं उन लोगों को ठीक से जानता नहीं कि उन्हें डांट सकूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। यदि अपने लोगों को भी ना डांट सकूं तो फिर डांटने के लिए और किसके पास जाऊंगा? चलो आंसू पोंछ डालो, अब तुम्हें नहीं डांटूंगा।
3: वाल्डो के आंसू सूख गए। इसके बाद से वे डांट फटकार का इंतजार करती थीं, क्योंकि वे समझ गई थीं कि यही स्वामी जी की आत्मीयता का द्योतक है। इसी तरह की एक घटना के बारे में रोमा रोला महोदय ने भी लिखा है। वो घटना भी कुमारी वाल्डो से ही संबंधित है। उन्होंने लिखा,
4: धर्माचार्यों के बारे में कुमारी वाल्डो को काफी अनुभव था। अपने दीर्घकालीन ज्ञानान्वेषण के दौरान उन्होंने अनेक शिक्षकों के चरण तले आश्रय लिया था, परंतु 2-4 दिन पहले या बाद में देखती कि सभी के स्वभाव में दोष है। अतः उन्हें सदा भय लगा रहता था कि कहीं इन हिंदू सन्यासी के स्वभाव में भी वैसा ही कोई दोष ना दिख जाए। ऐसे दोषों के लक्षण देखने के लिए वे बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी और वे लक्षण उनकी निगाह में आ भी गए। उस दिन स्वामी जी तथा वे न्यूयॉर्क के एक बैठक खाने में उपस्थित थे। आज के न्यूयॉर्क के साथ स्वामी जी के काल के न्यूयॉर्क का कोई साम्य न था। उन दिनों वहां सड़क के दोनों ओर बादामी रंग के पत्थरों से निर्मित एक ही प्रकार के मकानों की कतारें थी। मकानों के रूप रंग में इतनी समानता थी कि एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार ने प्रश्न किया, आप लोग कैसे समझ पाते हैं कि हम अपने ही घर में आए हैं? गलती से पड़ोसी के घर में भी तो प्रविष्ट हो जाने की संभावना है। इनमें से प्रत्येक संकरे परंतु लंबे मकान की दूसरी मंजिल पर एक लंबा और संकरा बैठक खाना होता था। इसके एक ओर ऊंचा मुड़ने वाला दरवाजा, दूसरे छोर पर 2 बड़ी खिड़कियां और दोनों के बीच में फर्श से छत तक पहुंचता हुआ एक बड़ा दर्पण लगा रहता था। दर्पण की ओर स्वामी जी का आकर्षण दिख पड़ा। वे बारंबार उसके सामने खड़े होकर बड़े ध्यानपूर्वक अपने को देखने लगे और बीच बीच में विचारों में डूबे चहलकदमी करते रहे। कुमारी वाल्डो की आंखें भी उनका अनुसरण कर रही थी। वे सोच रही थी अब इनका भांडा फूटने ही वाला है, ये अपने व्यक्तित्व के मद में चूर दिखते हैं। स्वामी जी सहसा उनकी ओर मुड़े और कहने लगे, एलेन ये बहुत ही विचित्र बात है कि मैं याद ही नहीं रख पाता कि मैं कैसा दिखता हूं। मैं बारंबार दर्पण में अपने को देखता हूं, परंतु वहां से मुड़ते ही याद नहीं रह जाता कि मैं कैसा दिखता हूं।
0: रोमा रोला साहब ने और कई घटनाओं का उल्लेख किया है, आइए उन घटनाओं के बारे में उन्हीं के मुख से सुने।
4: स्वामी जी की प्रथम अमेरिकी यात्रा के दौरान ही उनकी राजयोग पुस्तक तैयार हुई थी। इसका अधिकांश भाग उनके मुख से सुनकर कुमारी वाल्डो ने लिपिबद्ध किया था। उन्होंने इसे संकेत लिपि में नहीं अपितु सामान्य लिपि में ही लिखा था। इस कार्य में बीते आनंद पूर्ण समय की बातें उनके लिए विशेष रूप से स्मरणीय थी। वे प्रायः ही उस पर चर्चा किया करते। प्रतिदिन स्वामी जी का भोजन पक जाने तथा रसोई घर का कार्य समाप्त हो जाने पर वे मकान के पिछले हिस्से में स्थित स्वामी जी के कमरे में आते और मेज पर रखी दवात में कलम डुबाकर प्रतीक्षा में बैठी रहती। तब से लेकर उस दिन की कार्यावली समाप्त होने तक उनकी कलम की निब भीगी ही रहती थी, ताकि वे स्वामी जी के मुख से बीच बीच में निकल पड़ने वाली वाक्य धारा को पकड़ सके। कभी कभी किसी सूत्र के किसी संस्कृत शब्द का अंग्रेजी पर्याय सोचते हुए वे 15 से 20 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक मौन बैठी रहती, परंतु कलम को सूखने नहीं दिया जाता था, क्योंकि किसी भी क्षण बोलने का प्रभाव प्रारंभ हो जाने की संभावना बनी रहती। पांडुलिपि तैयार हो जाने पर उसके मुद्रण का उत्तरदायित्व कुमारी वाल्डो को सौंप दिया गया, परंतु पुस्तक निकलने के पूर्व उन्हें बड़े कष्ट तथा मर्मांतिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ा था। स्वामी जी के एक अन्य विशिष्ट अनुरागी ने पांडुलिपि को उनसे देखने के लिए लिया और उसे लंदन में ले जाकर प्रकाशित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इसके लंदन में प्रकाशित हो जाने से स्वामी जी के कार्य में सुविधा होगी, परंतु इसके फलस्वरूप अमेरिकी संस्करण निकलना संभव न हो सका। अप्रचलित शब्दों की तालिका तथा कुछ अन्य सामग्री जोड़ने के बाद ही उसे प्रकाशित किया जा सका।

0: स्वामी जी ने स्टर्डी महोदय को फरवरी 1896 ईस्वी में जो पत्र लिखा था उससे भी उनकी न्यूयॉर्क के उन दिनों की कार्य प्रणाली के बारे में अच्छी धारणा हो जाती है। उन्होंने लिखा था,
1: यहाँ प्रति सप्ताह मेरी 6 कक्षाएं चलती हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्नोत्तर कक्षा भी है। श्रोताओं की संख्या 70 से 120 तक होती है। साथ ही प्रति रविवार को मैं एक सार्वजनिक भाषण भी देता हूँ। पिछले माह जिस सभागार में मेरे व्याख्यान हुए उसमें 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, परंतु प्रायः आते थे 900 लोग। कुछ तो खड़े रहकर सुनते थे और कुछ को स्थानाभाव के कारण वापस लौट जाना पड़ता था। अतः इस सप्ताह मैंने एक बड़ा सभागार ठीक किया है जिसमें 1200 लोग बैठ सकेंगे। इन व्याख्यानों में प्रवेश पाने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं मांगा जाता, परंतु सभा के समय जो चंदा एकत्र होता है उससे मकान का किराया चुक जाता है। इस सप्ताह संवाद पत्रों की दृष्टि भी मुझ पर पड़ी है और इस वर्ष मैंने न्यूयॉर्क में काफी हलचल मचा रखी है। भय होता है कि निरंतर कार्य के बोझ से मेरा स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। मैंने भक्ति पर लेख लिखना आरंभ कर दिया है। यहां के कुछ मित्र मेरे रविवार के भाषणों को छाप रहे हैं। पहले की कुछ प्रतियां मैंने तुम्हें भेजी हैं। अगली डाक से परवर्ती 2 व्याख्यानों की कुछ प्रतियां तुम्हें भेजूंगा।
2: इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका में स्वामी जी प्रदत्त भाषण संरक्षित हो गए। इसका श्रेय श्री गुडविन और कुमारी वाल्डो को जाता है। दोनों ने दिन रात जुटकर स्वामी जी के श्रीमुख से निकले एक एक शब्द को सहेज कर रखा। हम उन दोनों के प्रति आभारी हैं, क्योंकि उन दोनों के परिश्रम के फलस्वरूप आज हमें स्वामी जी का साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक ले आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।